सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून सन 2026। प्रातः के ठीक 5:59 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रीनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रीनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में

0: स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। समय हुआ है 6:05। अब सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं ज्ञान ज्योति। परमात्मा की कृपा ही परम कल्याणकारी है। परमात्मा कहते हैं कि यदि तुम मेरे निर्देशन के अनुसार कर्म करोगे तो सब संकटों से पार हो जाओगे, परंतु यदि कभी अहंकारवश तुम अपनी मत चलाओगे तो कुमार्ग पर जाओगे। अतः हमें ईश्वर द्वारा दर्शाए गए कर्म करने चाहिए, क्योंकि वे सर्वज्ञाता है। हमारा अच्छा बुरा परमात्मा से अच्छा कोई नहीं जानता। इसलिए परमात्मा द्वारा दर्शाए मार्ग पर ही हमें चलना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा उद्धार होगा। ज्ञान ज्योति। ईश्वर की शरण ग्रहण करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए सब बातों को छोड़ परमात्मा की भक्ति में मन लगाएं और अपने पापों से मुक्ति पाएं।

अगर हम शांत, प्रेमपूर्ण और प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हमें अपने मन के भीतर भी वैसे ही विचार जगाने की आवश्यकता होती है, और ये विचार सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति से ही उत्पन्न होते हैं।

नित्य प्रति हमारी आध्यात्मिक प्रगति ही हमें प्रभु के दर तक पहुंचाती है। आवश्यकता होती है तो हमें अपने व्यवहारों और विचारों में ऊंचाई लाने की।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से FM बैंड 101.8 MHz पर।

जीवन में सबसे पहले चाहिए होता है नियम, उसके पश्चात मर्यादा तथा सबसे महत्वपूर्ण दृढ़ता। और ये चीजें हमें प्राप्त होती हैं मात्र ईश्वर भक्ति से।

रामचरित मानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर का रूपक रूप दिया है, जिसके चार मनोहर घाट हैं। घाट की संज्ञा उन संवादों को दी है जिनकी रचना काक भुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज तथा स्वयं तुलसी सरीखे अन्य संतों ने की है। रामायण के सात कांड इस सरोवर की सात सीढ़ियां हैं तथा श्री राम की महिमा उसकी अतल गहराई है। श्री राम और सीता का सुयश इसका निर्मल जल है और उपमा अलंकार उसकी मनोहर तरंगे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों में कमलिनी का विस्तार है और उसके छंद सूरठे तथा दोहे कमल के बहुरंगे फूलों की सुषमा लिए हुए हैं। इनमें वर्णित ज्ञान वैराग्य और विचारों की तुलना हंसों से की गई है। काव्य की ध्वनि वक्रोक्ति तथा प्रभावशाली गुण मानस सरोवर की मछलियां हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान विज्ञान का विचार वर्णन काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य अन्य जलचर प्राणी हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे अनूप जलोटा और संगीत था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 6:50। अब प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद यानी 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत समाचार और 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 7:05 का समय रहेगा हमारे दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर का। प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। हिमाचल डायरी का आज का अंक सुनिएगा सुबह 8:30 पर। 8:35 पर सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 8:45 पर सुनिएगा कानून की बात। सुबह 9 बजे सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 9:20 पर प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी शिमला से। 9:30 का सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम और सुबह 10 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। दस बजकर 5 मिनट का समय रहेगा कार्यक्रम लघु वार्ता का। 10:15 पर सुनिएगा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कार्यक्रम कुछ तुम चलो कुछ हम चलें। 10:45 का समय रहेगा कार्यक्रम लोक रंग का। सुबह 11 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। 11:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। दिन के 12 बजे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता मंडल लेकर हाजिर होंगे। 12:30 पर सैनिकों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 1 बजे विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 2:30 पर सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम। दोपहर 3 बजे प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से। 3:10 पर सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। शाम 5 बजे हिंदी समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। भजन संध्या कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे शाम 5:05 पर। युवाओं का कार्यक्रम युव मंच आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। शाम 6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती बाड़ी। शाम 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 7:05 पर सुनिएगा देश कान। 7:10 पर सुनिएगा भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से। 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 9:15 पर सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे सुनिएगा एक ही फिल्म से। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम चांदनी रातें। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। तो ये तो थी जानकारी आज हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में सुनिए संस्कृत समाचार और 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य आरभ्यमाणस्य 25वें G7 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनाय सज्जः अस्ति। आल्पस पर्वतश्रेण्याः लेमनाख्य सरोवरस्य च मध्ये स्थितं सुरम्यं लेक्सेंड नगरं वैश्विक कूटनीतेः केन्द्ररूपेण परिवर्तितमस्ति, यत्र नेतारः प्रतिनिधयश्च त्रिदिवसीयेऽस्मिन् कार्यक्रमे आगच्छन्ति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों अद्य अपराह्णे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादीनां G7 राष्ट्राणां नेतृणां यूरोपीय परिषदः यूरोपीय आयोगस्य च अध्यक्षैः सह औपचारिकरूपेण स्वागतं करिष्यति। अयं शिखरसम्मेलनं तस्मिन् समये भवति यदा विश्वं भूराजनैतिकसङ्कटैः आर्थिक अनिश्चिततया नूतनप्रौद्योगिकीनां द्रुतविकासेन च ग्रसितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः आउटरीच इत्येतेषु सत्रेषु भागं ग्रहीष्यति। शिखर सम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुख वैश्विक विषयेषु चर्चासु योगदानं कुर्वन् वैश्विक दक्षिणस्य प्राथमिकताः चिन्ताः च प्रकाशयितुम् अवसराः प्राप्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह विस्तृत चर्चां विधाय भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं चर्चासु भागम् अगृह्णन् फ्रांस देशस्य नीस नगरस्य स्वयात्रा समापिता। विदेशमन्त्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः फ्रांस देशस्य यात्रायाः परिणामे विशेषसूचनाः प्रदत्ताः। सूचनायां विदेशसचिवः विक्रममिश्री फ्रांस भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रं 30,000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखं परिणामम् इति वर्णितवान्, यस्योद्देश्यं महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिमबुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगं सुदृढं कर्तुमस्ति। उत्तरप्रदेशस्य गौतमबुद्धनगरस्य जेवरनगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रियविमानस्थानकात् वाणिज्यविमानसेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इण्डिगो एयरलाइन्स् संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः प्रातः 5:07 प्रचालयिष्यते। नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके प्रातः 5:08 तद्विमानम् आगमिष्यति। तदनन्तरं नोएडा नगरात् बेंगलुरु नगरं प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानम् अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊ नगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य एमएलए धीरेन्द्र सिंहेन सह प्रथमे विमाने 20 महिलाभिः सह 270,000 यावत् कृषकाः भविष्यन्ति। एते कृषकाः ते सन्ति येषां भूमिः विमानस्थानकस्य कृते अधिगृहीता आसीत्। लखनऊनगरं प्राप्य एते कृषकाः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह मिलित्वा कार्तज्ञतां प्रकटयिष्यन्ति। अद्य विश्ववायुदिवसः आचर्यते। पवनशक्तेः जलवायुपरिवर्तनं प्रतिरोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जूनमासस्य 15 दिनाङ्के अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवाराज्ये 26,000 वैश्विकवायुदिवससम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानां ICC 20x20 विश्वचषकक्रीडायां बर्मिंघम नगरस्य एज्वेस्टन नगरे ग्रूपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तानदलं 64 धावनाङ्कैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियोन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। समय हुआ है 7:07। अब सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को अस्मिता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हर रोज की तरह आज भी हाजिर है लेकर कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। जानकारियों और मनोरंजन का ये कार्यक्रम होता है, तो बिल्कुल देर ना करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एक खूबसूरत से विचार के साथ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिन की शुरुआत अगर अच्छी अच्छी बातों के साथ, अच्छे विचारों के साथ हो तो अब हमारा दिन अपने आप ही अच्छा हो जाता है। तो चलिए, आज का विचार कुछ इस तरह है कि रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पक्षियों के पास कहां होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। जी हाँ श्रोताओं, देखिए, खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करते तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो खुद पर एतबार होना बहुत जरूरी है। अगर कुछ पाने की लगन है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। अब देखिए ना, पक्षियों के पास भी नक्शे कहाँ होते हैं, लेकिन फिर भी वो रास्ते अपने ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन होता है। उसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए भी हमें खुद पर यकीन होना बहुत जरूरी है। तो श्रोताओं, ये था आज का खूबसूरत सा विचार। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
6: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
7: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: जी, इस खूबसूरत से गीत और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर में। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और आज के इतिहास की बात करेंगे। सबसे पहले बात करें 1667 की, तो पहली बार इंसान का ब्लड ट्रांसफ्यूजन डॉक्टर जीन बैप्टिसाइट डेनी ने किया था आज ही के दिन। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साबित किया था कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। और 1762 में ऑस्ट्रिया में कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। 1775 की बात करें तो अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम में जॉर्ज वॉशिंगटन को महाद्वीपीय सेना का सेना प्रमुख बनाया गया था। ১৮৩৬ की बात करें तो अरकासस अमेरिका का 25वां राज्य बना था। 1844 में चार्ल्स गुटियर ने रबड़ के बाल्किनाइजेशन की प्रक्रिया का पेटेंट कराया था। 1846 में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा विवाद को लेकर एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और 1908 की अगर बात की जाए तो कलकत्ता शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी आज ही के दिन। 1914 में IBM की स्थापना हुई थी। चौवन में यूरोप के फुटबॉल संगठन यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का गठन हुआ था आज ही के दिन। 1960 में बर्दवान विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था और हेग में हुए दूसरे विश्व शांति सम्मेलन में 44 देशों ने हिस्सा लिया था आज ही के दिन सन 1960 में। 1977 में स्पेन में 40 साल बाद स्वतंत्र चुनाव हुए थे। 1988 में नासा ने स्पेस व्हीकल S-213 लॉन्च किया था आज ही के दिन।

1997 की बात की जाए तो 8 मुस्लिम देशों द्वारा इस्तांबुल में D8 नामक संगठन का गठन हुआ था आज ही के दिन, और 2002 में कनाडा के हैलिफैक्स में G8 देशों का वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी आज ही के दिन। 2005 में जमैका के आसफा पावेल का एथेंस में 8.77 सेकंड का समय लेकर 100 मीटर फर्राटे दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था 2005 आज के दिन यानी 15 जून को। 2006 में भारत और चीन ने पुराना सिल्क रूट खोलने का निर्णय लिया था, और 2008 की अगर बात की जाए तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार अल्ट्रावायलेट प्रकाश का विस्फोट कर बड़े सितारों की अंतिम स्थिति देखी थी। अब बात करें आज के दिन जन्मे व्यक्तियों की, तो 1912 में प्रसिद्ध साहित्यकार श्री मन्नायण अग्रवाल का जन्म हुआ था, और 1937 में गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले एक समाज सेवक अन्ना हजारे का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। 1884 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक तारकनाथ दास का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, और 1899 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। अब बात करें आज के दिन हुए निधन की, तो 1989 में प्रसिद्ध कवि लेखक और संपादक उर एस परमेश्वर अय्यर का निधन हुआ था आज ही के दिन। तो ये तो हमने बात की आज के इतिहास की, अब रुख करेंगे वर्तमान की ओर, और एक खूबसूरत सा गीत आपका कर रहा है इंतजार, तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: कर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं, किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल।

0: प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जी, इस खूबसूरत से गीत के बाद और इस विज्ञापन के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर में। अब बात करेंगे कार्यक्रम में आगे और अब बात की जाएगी योगा के फायदों के बारे में और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जो आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है और वो है योग के माध्यम से जीवन शैली संबंधी रोगों का प्रबंधन। वर्तमान समय में हमारी जीवन शैली तेजी से बदल रही है। काम का बढ़ता दबाव, अनियमित दिनचर्या, जंक फूड का अधिक सेवन, शारीरिक गतिविधियों की कमी और बढ़ता तनाव कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है। इन्हीं जीवन शैली संबंधी रोगों या लाइफस्टाइल डिजीज हम कह सकते हैं। इनमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, हृदय रोग, तनाव, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्याएं प्रमुख हैं। ऐसे में योग एक प्रभावी और प्राकृतिक उपाय के रूप में सामने आता है। योग केवल शरीर के स्वस्थ रहने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावात्मक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रोताओं, योग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये शरीर और मन दोनों पर एक साथ काम करता है। जब हम नियमित रूप से योग करते हैं तो शरीर की कार्य क्षमता बेहतर होती है, रक्त संचार सुचारू रहता है। और मानसिक तनाव कम होता है। यदि हम मधुमेह की बात करें तो कई शोध बताते हैं कि नियमित योगाभ्यास रक्त में शर्करा की स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होता है। इसी प्रकार उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों के लिए प्राणायाम और ध्यान बहुत लाभकारी माने जाते हैं। ये मन को शांत करते हैं और तनाव को कम करके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। मोटापा आज एक बड़ी समस्या बन चुका है। बढ़ता वजन कई अन्य बीमारियों को भी जन्म देता है। सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन और भुजंगासन जैसे योगासन शरीर की अतिरिक्त कैलोरी को कम करने में और वजन नियंत्रण करने में सहायता करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी योग अत्यंत लाभकारी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता आम हो गए हैं। ऐसे में ध्यान, भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम मन को शांत करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। योग विशेषज्ञों का ये मानना है कि प्रतिदिन केवल 30 मिनट योग करने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और व्यक्ति स्वयं को अधिक स्वस्थ एवं प्रसन्न महसूस करता है। हालांकि केवल योग करना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ साथ संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच भी आवश्यक है। जब योग और स्वस्थ आदतें साथ मिलती हैं तभी जीवन शैली संबंधी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाता है। श्रोताओं, अंत में यही कहा जा सकता है कि योग एक ऐसी जीवन शैली है जो हमें स्वस्थ शरीर, शांत मन और बेहतर जीवन प्रदान करती है। इसलिए आइए हम सभी योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और जीवन शैली संबंधी रोगों से बचाव की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाएं। क्योंकि योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार भी है। तो श्रोताओं, ये हमने बात की योग के फायदों के बारे में और अब वक्त है एक और गीत का।
1: हर दिल में एक ही

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुप्रभात। हमीरपुर कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रुक करेंगे आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। सबसे पहली खबर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नवाचार भारत के DNA में है। गणित हो या खगोल विज्ञान, चिकित्सा हो या योग, भारत हजारों वर्षों से अपने ज्ञान और नवाचार से दुनिया को नई दिशा देता रहा है। एक दशक पहले दुनिया भारत को प्रौद्योगिकी अपनाने वाले देश के तौर पर देखती थी, अब यह प्रौद्योगिकी प्रदाता के तौर पर उभर रहा है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ रविवार को नीस शहर में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन के मौके पर PM मोदी ने कहा कि भारत अब समाधानों का उपभोक्ता नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया को समाधान देने वाला बन चुका है। समाधान का फायदा मानवता के बड़े हिस्सों को मिलता है। 3 दिवसीय ये आयोजन भारत और फ्रांस का साझा कार्यक्रम है, जो 16 जून तक चलेगा। राष्ट्रपति मैक्रों ने नवाचार समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति की सराहना की है। वहीं अगली खबर की बात करें तो होमुर्ज जल डमरू मध्य की अमेरिकी नाकेबंदी के बीच ओमान के समुद्र तट के पास भारतीय ध्वज वाला मालवाहक जहाज विराट 1 डूब गया। जहाज पर सवार सभी 14 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। वे मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। बचाव में अमेरिकी सेना ने भी मदद की। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि बचाए गए भारतीय नाविक अब मालवाहक जहाज MV जबल अली 9 पर सवार हैं। ये जहाज मुंबई की ओर बढ़ रहा है। सभी सुरक्षित हैं और सेहत अच्छी है।

अगली खबर की बात करें तो जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें सोमवार यानी आज शुरू होंगी। इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अपनी जमीन देने वाले जेवर क्षेत्र के 170 किसान सोमवार को एयरपोर्ट से विशेष उद्घाटन उड़ान से लखनऊ जाएंगे। इनमें 20 महिलाएं भी शामिल हैं। प्रतिनिधि मंडल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त करेंगे। वहीं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग और लेबल पर भ्रामक हेल्दी दावे करने के आरोप में 8 कंपनियों को नोटिस जारी किया है। इनमें इमामी, हेल्दी एंड टेस्टी, हेल्थ एंड ट्रूवी, द हेल्दी फैक्ट्री, हेल्दी मास्टर, हेल्दी चॉइस, प्लान बी और न्यू हर्ब्स शामिल हैं। अगली खबर की बात करें तो श्रीलंका के कोलंबो स्थित गॉल फेज प्रोमिनेट में अद्भुत सांस्कृतिक नज़ारा देखने को मिला। यहां 5,000 से अधिक नृतकों ने एक साथ नृत्य कर दुनिया के सबसे बड़े भरतनाट्यम डांस लेसन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये आयोजन भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा को जीवंत रखने और भारत श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। इन 5,000 से ज़्यादा नर्तकों ने अपने थिरकते कदमों से पुराने रिकॉर्ड को एक विशाल अंतर से तोड़ दिया है। इससे पहले यह विश्व रिकॉर्ड भारत के ही नाम था, जिसे 2 फरवरी 2020 को चेन्नई में त्यागन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट ने 416 प्रतिभागियों के साथ स्थापित किया था। आज की ताज़ातरीन खबरों में बस इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ।

जी श्रोताओ, अब रुख करेंगे आज की ताज़ा तरीन खेल खबरों की ओर। तो सबसे पहली खबर है कि न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में 75,000 दर्शकों के सामने खेले गए फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप सी मुकाबले में 5 बार की चैंपियन ब्राजील और मोरक्को का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस परिणाम के साथ ब्राजील ने वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में ना हारने का अपना 92 साल पुराना रिकॉर्ड कायम रखा है। ब्राजीलियनाई टीम 1934 के बाद से लगातार 21 ओपनिंग मैचों में अजेय है। ब्राजील ने चौथी बार वर्ल्ड कप का अपना ओपनिंग मैच ड्रॉ खेला है। इससे पहले 1974, 1978 और 2018 में ऐसा हो चुका है। इन चारों मौकों पर टीम खिताबी मुकाबले में नहीं पहुंची थी। 23 ओपनिंग मैचों में सिर्फ छठी बार ऐसा हुआ जब यह टीम जीत नहीं सकी है। वहीं दूसरी खबर की बात की जाए तो भारतीय तीरंदाजी के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। ओलंपियन धीरज बोम्मा देवरा और 17 वर्षीय कुमकुम मोहोड़ ने जोड़ी ने आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 की रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। साल 2022 के बाद पहली बार भारत ने रिजर्व मिक्स्ड टीम वर्क में वर्ल्ड कप गोल्ड जीता है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया की ओलंपिक चैंपियन जोड़ी ओ एजिन और किम जे डेओक को 5-1 से एक तरफा हराया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश पर 1 विकेट की जीत के साथ 3 वनडे की सीरीज में क्लीन स्वीप टाला। हालांकि बांग्लादेश ने 2-1 से सीरीज जीत ली। अंतिम मैच में 275 के चेज में कंगारू टीम एक समय 266 पे 5 से अचानक 271 पर 9 हो गई थी। हालांकि जंपा ने 3 गेंद शेष रहते चौका लगाया। इससे पहले कपूर कोनोली ने करियर बेस्ट पारी खेली। बांग्लादेश ने 274 पर 5 का स्कोर बनाया था। वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में शनिवार को 6 फुट 5 इंच लंबे तेज गेंदबाज गुरनूर बराड ने भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया। वे भारतीय टीम के लिए खेलने वाले तीसरे सबसे लंबे खिलाड़ी बन गए हैं। अपने पहले ही मैच में गुरनूर ने 145 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, तेज उछाल और सटीक लाइन लेंथ से प्रभावित किया। उन्होंने 4.5 ओवर में महज 27 रन देकर 3 विकेट झटके। गुरनूर के टीम इंडिया तक पहुंचने का सफर किसी फिल्मी कहानी जैसा है। उनके पिता सुखवीर सिंह बराड़ पंजाब पुलिस में ASI हैं और खुद राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। वहीं अगली खबर की बात करें तो श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। दूसरे T20 में श्रीलंका ने 37 रन से जीत दर्ज की। मुकाबले में श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 194 पर 6 का स्कोर बनाया। प्लेयर ऑफ द मैच कप्तान दासुन शनाका ने 24 गेंदों में 58 रन 242 के स्ट्राइक रेट से लगाए। इस पारी में 5 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 18.1 ओवर में 157 रन पर सिमट गई।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का ये सुप्रभात हमीरपुर का कार्यक्रम भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो अब आपसे लेंगे इजाजत और एक बार फिर से कहेंगे सुप्रभात हमीरपुर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बजने को है, थोड़ी देर में सुनिए समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
6: हॉर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
5: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
7: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
5: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
9: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
10: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
11: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
12: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
11: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
13: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
11: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
14: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
5: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियो शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
15: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। यूएस एंड ईरान रीच अग्रीमेंट टू एंड मिलिट्री ऑपरेशंस, ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड लिफ्ट यूएस नेवल ब्लॉकेड ऑफ इरानियन पोर्ट्स। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
16: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon, will end permanently starting tonight. Oil prices fell on the news. Brent crude futures fell 4% in early trading today, while U.S. West Texas Intermediate slid more than 4.6%. Stock markets in Asia jumped. Komudi Parekh for Akashwani News, Delhi.
15: Leaders across the world have welcomed the peace deal announced between the United States and Iran, describing it as a major diplomatic breakthrough that could help restore stability in West Asia. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava, the capital of Slovakia, today. He will also meet Slovak President Peter Pellegrini. Prime Minister Modi arrived in Bratislava last night on a two-day official visit to Slovakia after completing the first leg of his visit to Nice in France. Mr. Modi said that this visit provides an opportunity to deepen India-Slovakia relations and explore new avenues of cooperation between the two countries. In a social media post, Mr. Modi also said that he is looking forward to productive meetings with Slovakia's President Peter Pellegrini and Prime Minister Robert Fico. This is the first ever visit by an Indian Prime Minister to Slovakia since its independence in 1993. The visit by Mr. Modi follows President Draupadi Murmu's state visit to Slovakia in April last year and Slovak President Peter Pellegrini's visit to India for the AI Impact Summit in February this year. The visit reaffirms India's commitment towards strengthening its bilateral relationship with Slovakia in various sectors, including trade, investment, and automobile and railway manufacturing. Our correspondent reports that upon his arrival in Bratislava, Mr. Modi was given a warm welcome and accorded a traditional Slovak hospitality.
17: Prime Minister Narendra Modi was received by Slovak Foreign Minister Jure Blanar upon his arrival in Bratislava last night. Members of the Indian diaspora gathered in Bratislava welcomed him with slogans upon his arrival. Slovak musicians of the Lutnica ensemble performed Vande Mataram on the Prime Minister's arrival. Sri Narendra Modi will be accorded a ceremonial welcome today in Bratislava. Vidhi M. Palluruthi, Akashvani News from Bratislava.
15: The 52nd G7 summit will begin at Evian in France today. The three-day event is being attended by G7 members, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, US and European Union. In addition to the members, France has invited India, Brazil, Egypt, Kenya, South Korea, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Ukraine and UAE as outreach partner countries. This will be the 13th time that India will participate in the G7 summit as a partner country. Prime Minister Narendra Modi will participate in outreach sessions tomorrow. His participation in the G7 summit underscores India's important role in global geopolitics. India is important for the G7 as a premier economic powerhouse, a diplomatic bridge to the developing world and a strategic anchor in the Indo-Pacific. A report from our correspondent.
8: As the summit gets underway, reducing global imbalances has emerged as the central priority of the host nation's G7 presidency. According to the official summit framework, leaders will deliberate on geopolitical challenges, international peace and security, balanced economic growth and key global crises during the closed-door sessions beginning today. Prime Minister Narendra Modi will participate in the outreach sessions tomorrow. India's participation in the summit will provide an opportunity to highlight the priorities and concerns of the Global South while contributing to deliberations on key global issues. Ankit Kumar, Akashwani News, Evian, France.
15: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Commercial flight services from the Noida International Airport, located at Jewar in Gautam Buddh Nagar of Uttar Pradesh, began this morning. Our correspondent has filed this report.
10: Built in Jewar along the Yamuna Expressway Industrial Development Authority region, the airport was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on March 28 this year. The land acquisition for the airport spans around 1,334 hectares, which is nearly 3,300 acres. The airport, which has been developed as a major aviation hub, will have initial passenger handling capacity of 1.2 crore travelers in its first phase. In the future, it is expected to become a global aviation hub with the capacity of 22.5 crore passengers. In its final phase, the airport will have 5 runways, placing it among the largest airports in the world. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
15: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal, Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the steps taken by the government for building modern infrastructure with the vision of making India Viksit Bharat by 2047.
11: A strong and modern nation is built on the foundations of world-class infrastructure. Over the past 12 years, India has embarked on an unprecedented journey of transformation, making infrastructure-led development the cornerstone of its growth story. This commitment is reflected in a six-fold increase in government expenditure on infrastructure, rising from 2 lakh crore rupees in 2014-15 to 12.2 lakh crore rupees in the current financial year. India's metro rail network has expanded nearly fivefold from 248 kilometers to 1100 kilometers today, making cities more connected, efficient and commuter friendly. Talking to Akashwani News, a Delhi resident, Alisha, who commutes with Delhi Metro daily, has shared her experience.
12: Metro to hamari lifeline ban chuki hai.
18: Metro has really become our lifeline. I have to go to Gurugram every day

0: cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 8:30 हुए हैं, अब सुनिए हिमाचल डायरी का आज का अंक। हिमाचल डायरी के आज के संक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहली खबर, बात करेंगे आज मौसम की। तो हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से गर्मी की मार झेल रहे लोगों को बीते 2-3 दिनों में ठंडक का सुखद एहसास हो रहा है। इसमें भी यदि मौसम विभाग की माने तो ये सप्ताह भर मौसम नासाज रहेगा और प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि के साथ ही बिजली की गर्जन व तेज अंधड़ चलने का अनुमान है। इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी दिनों में येलो अलर्ट तक जारी किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश में 19 जून तक यहां मौसम खराब रहेगा। इस दौरान 15 व 16 जून को प्रदेश भर में रुक रुक कर बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन व सिरमौर जिले के लिए है। इस दौरान गरज व चमक के साथ बिजली चमकने और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। 17 जून को भी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला में येलो अलर्ट रहेगा, जबकि 18 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी में फिर से मौसम खराब रहने का येलो अलर्ट है। निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान प्रदेश भर के अधिकतम तापमान में 3 से 8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। वहीं देश के विभिन्न राज्यों सहित विदेशों तक में धूम मचाने वाले औषधीय गुणों से भरपूर हिमाचली लहसुन की इस बार भारत के दक्षिणी क्षेत्र में भारी डिमांड है। गर्मियों के इस दौर में पहाड़ी लहसुन का सीजन पीक पर है और प्रदेश में अच्छी क्वालिटी के लहसुन को मंडी में रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। इन दोनों सोलन मंडी में अच्छे क्वालिटी के लहसुन को 140 रुपये प्रति किलो का थोक रेट मिल रहा है। यहां पर साथ लगते सिरमौर जिले के शिलाई, रेणुका, टिम्बी, रोनहाट व अन्य क्षेत्रों से लहसुन आ रहा है। मंडी में क्वालिटी के हिसाब से किसानों को 50 रुपये से लेकर 140 रुपये प्रति किलो तक के दाम मिल रहे हैं। हिमाचल से एक जमीन में करीब 700 बड़े ट्राले बाहर के राज्यों की मंडी में जाते हैं। इनमें से सोलन मंडी से ही अकेले 300 ट्राले के जरिए लगभग 80 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। वहीं अगली खबर की बात करें तो बिलासपुर के अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी शब्द गौतम ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। रियाणा निवासी शब्द गौतम का चयन भारतीय अंडर 18 वॉलीबॉल टीम में हुआ है। वे चीन में 1 से 10 जुलाई तक आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्कूल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। शब्द गौतम इससे पहले भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। उन्होंने अंडर 16 वॉलीबॉल इंडिया कैंप में शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं थाईलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में उन्हें बेस्ट लिब्रो के खिताब से सम्मानित किया गया था। एशियन चैंपियनशिप में भी उन्होंने भारतीय टीम को कांस्य पदक दिलाने की में अहम भूमिका निभाई थी। शब्द गौतम ने संगरूर स्थित मस्ताना साहिब स्पोर्ट्स हॉस्टल में वॉलीबॉल की बारीकियाँ सीखी हैं। वर्तमान में वे आगामी विश्व स्तरीय प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2026-28 के लिए होने वाली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा 17 जून को होगी। इस परीक्षा के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश भर में 67 परीक्षा केंद्रों में होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि परीक्षा के लिए कुल 11,164 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से जांच के बाद 9,984 आवेदन सही पाए गए हैं। पात्र अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर DLED CET 2026 लिंक के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो हिमाचल डायरी के आज के संक में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। 8:35 हुए हैं, अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

दोस्तों आज है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, यानी कि विश्व बुज़ुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। हर साल 15 जून को ये दिन मनाया जाता है और ये दिन बुज़ुर्गों के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए समर्पित है। वृद्ध लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उनकी उपेक्षा जो होती है उसको समाज में उजागर करना और उनको सम्मान देना, उनकी गरिमा को सुनिश्चित करना, ये इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है। कुछ और बातें हम आगे करेंगे, अभी आपको सुनवाते हैं MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस फिल्म का गाना पलक मुच्छाल की आवाज़ में, मनोज मुंतशिर के बोल, संगीत है अमाल मलिक का।

मीत ब्रदर्स जुबिन नौटियाल और ध्वनि भानुशाली की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए कुमार का लिखा हुआ गाना, मीत ब्रदर्स का संगीत और फिल्म का नाम मर जावां।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 8:45 होने को है। थोड़ी देर में सुनिए कानून की बात आकाशवाणी शिमला से।

हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडिया वेब पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कानून की बात। विषय है परिवीक्षा से संबंधित कानून। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश परिवार, न्यायालय कांगड़ा स्थित धर्मशाला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुना जा सकता है।

0: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम कानून की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। कानून केवल नियमों का संग्रह नहीं है, बल्कि समाज में न्याय, संतुलन और मानवीय मूल्यों को बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम भी है। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो दंड के साथ साथ सुधार और पुनर्वास की भावना को भी महत्व देता है, परिवीक्षा से संबंधित कानून। परिवीक्षा क्या है, इसका लाभ किन परिस्थितियों में मिलता है, न्यायालय इस संबंध में क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं और ये व्यवस्था किसी व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने में किस प्रकार सहायक होती है, इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कांगड़ा धर्मशाला। माननीय महोदय का कार्यक्रम कानून की बात में हार्दिक स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में बताइए कि परिवीक्षा क्या होती है।
1: परिवीक्षा, जिसे हम इंग्लिश में प्रोबेशन कहते हैं, ये सर शब्दों में कहें तो अदालत किसी व्यक्ति को अपराध सिद्ध होने पर जेल भेजने के बजाय उसे एक सुधार का अवसर देती है, इसी को हम प्रोबेशन कहते हैं। अदालत ये उम्मीद करती है कि वो भविष्य में अच्छा व्यवहार करेगा, कानून का पालन करेगा और दोबारा कोई अपराध नहीं करेगा, तो उसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में उसको बेनिफिट मिलता है।
0: भारतीय न्याय व्यवस्था में परिवीक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस की गई?
1: देखिए, इंसान से गलती हो जाती है, हर गलती करने वाला व्यक्ति आदतन अपराधी नहीं होता, ना हम ऐसा मानते हैं। कई बार व्यक्ति आवेश में आकर गलत संगत में या किसी विशेष परिस्थिति में अपराध कर बैठता है, ऐसे लोगों को जेल भेजना जरूरी नहीं माना गया है। इसलिए कानून में सुधार और पुनर्वास की सोच को महत्व देते हुए परिवीक्षा प्रोबेशन की व्यवस्था की गई है।
0: न्यायाधीश महोदय, क्या परिवीक्षा का उद्देश्य केवल सजा से राहत देना है या सुधार का अवसर भी प्रदान करना है?
1: देखिए, परिवीक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को सुधार का अवसर प्रदान करना है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। परिवीक्षा की व्यवस्था बीसी मानवीय सोच को लेकर बनी है, लेकिन एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि अपराध को नजरअंदाज नहीं किया जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि क्या व्यक्ति को समाज का जिम्मेदार नागरिक बनने का एक अवसर दिया जा सकता है या नहीं।
0: परिवीक्षा अधिनियम 1958 की मुख्य विशेषताएं क्या है?
1: परिवीक्षा अधिनियम 1958 यानी कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, ये एक महत्वपूर्ण जो है वो अधिनियम है। धारा 6 जो है इसकी, वो ये कहती है कि यदि कुछ कम गंभीर मामलों में किसी व्यक्ति को दोषी पाया गया है तो अदालत उसे समझाकर, उसकी भर्त्सना करके या उसे चेतावनी देकर भी छोड़ सकती है, उसे हम जेल में नहीं भेजेंगे। जो धारा 4 है, अदालत को ये अधिकार देती है कि यदि उसे लगे कि व्यक्ति के सुधरने की संभावना है तो उसे जेल भेजने के बजाय अच्छे आचरण की शर्त पर, कि वो अच्छा आचरण करेगा, इस शर्त पर उसे छोड़ सकती है। और धारा 6 बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये कहती है कि यदि दोष सिद्ध जो व्यक्ति, जिसको दोषी पाया गया है, वो 21 वर्ष से कम

0: आयु का है, तो उसे जेल भेजने से पहले अदालत को ये विचार अवश्य करना चाहिए और करना पड़ेगा कि उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाना है या नहीं। इन प्रावधानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि कानून केवल दंड पर नहीं बल्कि सुधार पर जोर देता है।
1: आपने धारा 3 का उल्लेख किया, ये चेतावनी देकर छोड़ना क्या होता है?
0: देखिए, कुछ कम गंभीर मामले जहां व्यक्ति पहली बार अपराध करता है और परिस्थितियां भी अनुकूल होती हैं, अदालत उसे केवल चेतावनी देकर या समझाकर उस व्यक्ति को, उस दोषी को छोड़ सकता है। सिंपल शब्दों में मैं ये कहूंगा कि अदालत उस व्यक्ति से कहती है कि उसने अपराध किया है, अपराध सिद्ध हुआ है, भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करना, और उसे अवसर देती है कि वो अपना सुधार कर सके। समझाकर छोड़ना उसको जो है हम धारा 3 में करते हैं।
1: न्यायाधीश महोदय, किन परिस्थितियों में अदालत किसी व्यक्ति को परिवीक्षा का लाभ दे सकती है?
0: अदालत जब परिवीक्षा देने की बात करती है तो इन विचारों पर जरूर ध्यान रखती है कि अपराध की प्रकृति क्या है, क्या कोई बहुत सीरियस ऑफेंस किया है, हीनियस ऑफेंस किया है, उस व्यक्ति का पूर्वाचरण कैसा था, क्या पहले भी वो ऑफेंसेस करता रहा है, क्या उसने पहली बार अपराध किया है, उसकी आयु क्या है, उसकी पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियां क्या रही हैं, तथा क्या वो व्यक्ति उसमें सुधार की संभावना है। यदि ऐसी बातें हों तो हम परिवीक्षा का लाभ जो है वो दोषी को प्रदान करते हैं।
1: क्या हर व्यक्ति परिवीक्षा का लाभ पाने का पात्र होता है?
0: नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, हर मामले में परिवीक्षा नहीं दी जा सकती। ये अदालत के विवेक और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। गंभीर और जघन्य अपराध, इन अपराधों में सामान्यतः इसका लाभ नहीं दिया जाता।
1: न्यायाधीश महोदय, किन प्रकार के मामलों में सामान्यतः परिवीक्षा का लाभ दिया जा सकता है और किन मामलों में सामान्यतः नहीं दिया जाता?
0: ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की धारा 4 सामान्यतः उन अपराधों में लागू होती है जिनमें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास का प्रावधान नहीं है, और जहां न्यायालय को लगता है कि व्यक्ति जो है उसमें सुधरने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर, जैसे पहली बार कुछ कम गंभीर किया गया अपराध, साधारण मारपीट का मामला, साधारण चोट पहुंचा देने का, या छोटे मोटे झगड़े, या जैसे चेक बाउंस का केस है, उनमें भी किन्हीं परिस्थितियों में जो है अगर वो गंभीर नहीं है अपराध, तो उसमें परिवीक्षा का जो है वो बेनिफिट दिया जा सकता है। और धारा 3 में जैसे मैंने पहले कहा, उसमें चेतावनी देकर भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर मामला संगीन है, कोई संगीन अपराध किया है, जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, आतंकवादी गतिविधियों में वो व्यक्ति जो है वो संलिप्त रहा है, तो उन अपराधों में ये बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जा सकता। जो बार बार अपराध करते हैं, रिपीट ऑफेंडर्स हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उनको भी जो है प्रोबेशन का हम बेनिफिट नहीं देते।
1: क्या महिलाओं और किशोरों के मामलों में परिवीक्षा का विशेष कोई प्रावधान है?
0: ये थोड़ा सा समझने वाला विषय है। इसमें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, इसमें महिलाओं के लिए अलग से कोई विशेष जो है वो धारा नहीं है इनको बेनिफिट देने की, लेकिन उनका, महिलाओं का जो मामला है वो भी परिवीक्षा के लिए उपयुक्त है। उनको धारा 4 की अगर बाकी जो है कंडीशंस उसमें फुलफिल होती हैं, तो अच्छे आचरण पर महिला को भी जो है, महिला अपराधी को भी छोड़ा जा सकता है। पुरानी जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थी 1973 की, उसमें धारा 360 थी, और अब जो नई भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है उसका धारा 401 महिलाओं को जो है उसमें महिलाओं के लिए विशेष जो है उल्लेख है, और उपयुक्त मामलों में उन्हें अच्छे आचरण पर छोड़ा जा सकता है।
1: आम लोगों में ये धारणा है कि परिवीक्षा का मतलब अपराध को माफ कर देना है, क्या ये सही है?
0: नहीं, अपराध की माफी ऐसे नहीं होती, अपराध माफ नहीं किया जाता, लेकिन उस व्यक्ति में जब सुधार की संभावना है तो उसे जेल नहीं भेजा जाता, उसे अच्छे आचरण पर या चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है।
1: परिवीक्षा पर छोड़े गए व्यक्ति को किन नियमों और शर्तों का पालन करना होता है?
0: बेसिकली तो उसे अपना आगे को व्यवहार अच्छा रखना होता है, कानून का पालन करना होता है, और भविष्य में वो कोई अपराध नहीं करेगा, ऐसी शर्तें उस पर लगाई जाती हैं, और उन शर्तों का पालन करना उसके लिए आवश्यक होता है।
1: न्यायाधीश महोदय, यदि कोई व्यक्ति परिवीक्षा की शर्तों का उल्लंघन करे तो उसके क्या कानूनी परिणाम हो सकते हैं?
0: वो तो सीधी सी बात है, अगर वो पालन नहीं करता है, अदालत जो है उसकी प्रोबेशन को खत्म कर देगी, उस बेनिफिट को समाप्त कर देगी, और उसे फिर जो है वो जो उसको सजा होनी है वो सजा जो उसको हुई है या जो सजा करनी है उसके लिए उसको जेल भेज देगी।
1: परिवीक्षा अधिकारी यानी प्रोबेशन ऑफिसर की क्या भूमिका होती है?
0: इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कई बार कोर्ट इनसे इंफॉर्मेशन गेन करता है कि ये कैसा व्यक्ति है, इसका पहले आचरण कैसा रहा है, ये रिपीट ऑफेंडर या हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, और जो अगर प्रोबेशन का बेनिफिट अगर उसको दे दिया जाए तो जो परिवीक्षा अधिकारी होता है ये उसके व्यवहार पर भी नजर रखता है, उस दोषी के, उसे मार्गदर्शन देता है और उसकी प्रगति के बारे में कोर्ट को जानकारी देता रहता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो सुधार के मार्ग पर चल रहा है।
1: क्या परिवीक्षा व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने का प्रभावी माध्यम है?
0: ये डेफिनेटली उसको तो जो है वो एक मौका इसीलिए

0: जा रहा है कि वो अपराध ना करे, वो अपना सुधार करे और उसको मुख्य धारा में जो है दोबारा उसको भेजा जा सके, वो सामान्य जीवन जी सके, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके।
1: परिवार और समाज पुनर्वास में किस तरह सहयोग कर सकते हैं?
0: परिवार की बड़ी अहम भूमिका रहती है।
1: जी
0: परिवार तो ऐसा है कि पहले उसको बचपन से ही अगर अच्छे संस्कार दे दिए गए हैं तो अपराध से रोक सकता है, अपराध के मार्ग पे जाने पे। लेकिन अगर हो गया है किसी कारणवश और उसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में ये बेनिफिट मिला है प्रोबेशन का, तो उसको जो है हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। उसको कोई ताने देने की जरूरत नहीं है, उसको ताने नहीं मारने हैं, बल्कि उसका सहयोग करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए कि हो गया, अब आप अच्छे इंसान बनिए, आगे को जो है कोई अपराध नहीं करिए और अपना सुधार करिए।
1: क्या परिवीक्षा से जेलों पर बढ़ते बोझ को कम करने में भी मदद मिलती है? जी
0: बहुत सी जेलें भरी पड़ी हैं अपराधियों से, तो ऑब्वियसली अगर हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में या प्रोबेशन का बेनिफिट देते हैं तो जेल में तो ऑब्वियसली वो संख्या जो है वो कम रहेगी, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगी।
1: और किन गलतफहमियों के कारण लोग परिवीक्षा के बारे में सही जानकारी नहीं रख पाते?
0: गलत फहमियां प्रोबेशन को लेकर अक्सर ये रहते हैं कि लोग समझते हैं कि ये अपराध की माफी है, लेकिन अपराध की माफी नहीं है, वो तो उसको एक मौका दिया गया है कि वो अपना सुधार कर सके। एक गलत फहमी ये भी होती है कि अगर प्रोबेशन मिल गई तो हम बिल्कुल फ्री हो गए, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, जो अपनी मर्जी आएगी वो करेंगे, वैसा नहीं होता है। उस पर जो अदालत ने शर्तें लगाई हैं प्रोबेशन में छोड़ने के लिए, उनको उसको जो है आवश्यक रूप से उसका पालन करना होता है, भविष्य में अच्छा आचरण करना होता है। कई लोग ये मान लेते हैं अपराध कर दिया अब हमें प्रोबेशन मिल जाएगी, वैसा भी नहीं है। प्रोबेशन तभी मिलेगी जब अदालत को लगता है परिस्थितियों से कि ये व्यक्ति में सुधार हो सकता है, मामला बहुत संगीन नहीं है, इससे पहली बार गलती हुई है, तो इन चीजों को देखते हुए उसको जो है छोड़ा जा सकता
1: क्या परिवीक्षा की व्यवस्था केवल परिवीक्षा अधिनियम में ही है?
0: है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थी 1973 की, उसकी सेक्शन 3360 में
1: जी
0: ये प्रोविजन थी अच्छे आचरण पर छोड़ने की। अभी वो जो धारा जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 401 में भी ऐसी प्रोविजन है कि अदालत कुछ उपयुक्त मामलों में व्यक्ति को अच्छे आचरण की शर्त पर छोड़ सकती है। तो 402 जो है वो अब धारा BNSS की, वो ये मैंडेट करती है कि हर मामले में पहले जो है वो ये देखा जाए कि क्या ये बेनिफिट दिया जा सकता है प्रोबेशन का या नहीं दिया जा सकता। अगर नहीं दिया जा सकता उसके कारण दर्ज करने पड़ेंगे, रीजन लिखने पड़ेंगे कि क्यों नहीं बेनिफिट उसको दिया जा रहा। तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट एक स्पेशल एक्ट है, इसकी जो है एनफोर्समेंट ऑब्वियसली जो इसके एम्बिट में आते हैं उनमें होगी, और ये एक विशेष कानून है, तो इस वजह से इसका भी जो है वो ध्यान में अदालतें रखती हैं बेनिफिट देते समय।
1: न्यायाधीश महोदय, हमारे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: देखिए, युवा पीढ़ी तो देश का भविष्य है।
1: जी
0: मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं है सक्सेस के लिए। तो हमारे युवा हैं वो मेहनत करें, ईमानदारी से कार्य करें, अपने जीवन में अनुशासन रखें, अच्छे संस्कार रखें, तो ये चीजें उनको जो है वो बेनिफिट करती हैं। कई बार एक क्षण का गुस्सा होता है, आदमी लड़ पड़ता है, कहते ना कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। तो वो थोड़ा ध्यान रखें, अपने आप पर जो है वो कंट्रोल रखें, गलत संगति में ना जाएं, ये नशे आजकल जो चल रहे हैं इनसे दूर रहें, जल्दबाजी में किसी को एकदम ऐसे रिएक्ट नहीं करें, जो है अपना विवेक से कार्य करें जीवन में, अपना माता पिता अपने उनसे जो गुरुएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनके मुताबिक चलने का प्रयत्न करें, तो उनका जीवन जो अच्छा रहेगा। और सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव रहें और समाज के लिए कुछ करने का प्रयत्न करें, कम से कम अच्छे इंसान बने तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
1: अंत में परिवीक्षा संबंधी कानूनों के बारे में आम नागरिकों को कौन सी महत्वपूर्ण बातें अवश्य जाननी चाहिए?
0: जहां तक हो सके अपराध की दुनिया से जो है दूर रहें,
1: जी
0: अपने आप पर कंट्रोल रखें, लेकिन यदि किसी कारणवश ऐसी कोई गलती हो गई है जो जघन्य या बहुत गंभीर अपराध नहीं है, तो उसमें उसको ये बेनिफिट मिलेगा, और इस बेनिफिट को जो है उसको प्रॉपर वे में उसको यूज करना है। वो गलत अपराध आगे ना करे, जो शर्तें उस पर लगाई गई हैं उनका पालन करे, तो दोषी व्यक्ति जो है वो सुधर सकता है। ये सब व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, हम अपने जीवन के जो है स्वयं ही निर्माण करता है और अपने ही विनाश करता है।
1: बिल्कुल
0: जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेत आत्मन आत्मानम नात्मानम वसा दयेत, अर्थात कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को ऊंचा उठा सकता है या स्वयं को नीचे गिरा सकता है। तो हम अपने ही मित्र हैं, और हम अपना ही जो है हमारा मन जो है वो अगर गलत धारणाओं में या गलत भावनाओं में चले जाएगा तो हम अपना पतन कर सकते हैं। और एक शेर भी है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो सब हम पे निर्भर करता है हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस यही कहूंगा, सोच विचार करके जीवन में इंसान आगे बढ़े और युवा पीढ़ी अपना ध्यान रखे।
1: डॉक्टर अरविंद मल्होत्रा, आपने परिवीक्षा कानून से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अत्यंत सरल और उपयोगी जानकारी देकर हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन किया। इसके लिए आकाशवाणी परिवार और सभी श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आज की चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुरूप सुधार और पुनर्वास के अवसर प्रदान करना भी है। परिवीक्षा की व्यवस्था इसी सकारात्मक सोच का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी आशा के साथ कि आप भविष्य में भी कानून की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते रहेंगे, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9 बजे हैं। अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए एक विलेन, इस फिल्म का गाना अंकित तिवारी की आवाज में, मनोज मुंतशिर के बोल, संगीत है अंकित तिवारी का।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए,
3: कहिए,
0: सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना,
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

ब्रेक के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं स्त्री फिल्म का गाना, आस्था गिल, सचिन संघवी, जिगर सरैया और दिव्य कुमार की आवाज़ से वायु को लिखा हुआ गाना, सचिन जिगर का संगीत है।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 9:20 होने को हैं, थोड़ी देर में सुनिए प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधान उप प्रधान आज लेंगे शपथ। कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। प्रदेश के सभी जिलों में आज आपदा प्रबंधन को लेकर होगा मेगा मॉकड्रिल का आयोजन। प्रदेश में यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान युवाओं के लिए हो रहे मददगार साबित। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में आज से 18 जून तक बारिश व अंधड़ चलने का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। कांगड़ा जिलों को छोड़कर प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधानों व उपप्रधानों का आज शपथ दिलाई जाएगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार कांगड़ा जिले में 18 जून को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानों व उपप्रधानों को शपथ दिलाएंगे। आज शपथ समारोह जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, चंबा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सोलन और कृषि मंत्री चंद्र कुमार कुल्लू में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसी तरह उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सिरमौर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मंडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर, जबकि आयुष मंत्री यादविंदर गोमा हमीरपुर में शपथ दिलाएंगे। इस बीच प्रदेश के 4 नगर निगमों के चुनाव में निर्वाचित पार्षद 29 जून को शपथ लेंगे। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन नगर निगम की 29 जून की पहली बैठक आयोजित होगी। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इन चारों नगर निगमों में नए महापौर और उपमहापौर का चुनाव भी इसी दिन होगा। उल्लेखनीय है कि 17 मई को मतदान और 31 मई को चुनाव नतीजे आए थे। प्रदेश के सभी जिलों में आज आपदा प्रबंधन को लेकर मेगा मॉकड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से ये मॉकड्रिल करवाई जाएगी। इसके लिए भूकंप, भूस्खलन, बादल फटने से आने वाली बाढ़ और वनों की आग जैसी घटनाओं के परिदृश्य दिए गए हैं। पूर्वाभ्यास के दौरान इन्हीं परिदृश्यों के अनुसार राहत और बचाव कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल होंगे, जो आपदा तैयारियों में मौजूद कर्मियों की पहचान करने और उनके समाधान के सुझाव देंगे। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार है। वे कल शिमला में एक निजी विद्यालय में आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के समय में ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत और जीवन मूल्यों को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाए। इस दौरान सुरेश कश्यप ने छात्राओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा योजना के तहत टैली लॉ पहल पर क्षेत्रीय कार्यशाला और रिफॉर्म्स उत्सव का आयोजन आज राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में किया जाएगा। यह आयोजन पिछले 12 वर्षों में न्याय क्षेत्र में किए गए परिवर्तनकारी सुधारों को प्रदर्शित करने की दिशा में न्याय विभाग की सतत प्रतिबद्धता का हिस्सा है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नामक वर्ष भर चलने वाले विधिक जागरूकता अभियान का शुभारंभ होगा। इस अभियान के तहत नागरिक केंद्रित कई गतिविधियां शुरू की जाएंगी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा

0: रहे सुविधाओं के अभाव पर पर्यटकों ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं।
1: बिहार से आए हुए हैं, यहाँ डलहौजी घूमने आए थे। इस खजियार में हम 4 घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं जो भी टूरिस्ट आए वो ना फंसे, इसके लिए यहाँ का प्रशासन को, यहाँ की सरकार को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। बिहार से आया हूँ और हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। प्रशासन से और सत्ता में बैठे हुए लोगों से आग्रह पूर्वक कहना है, टूरिस्ट को अगर बुलाना है यहाँ पे तो यहाँ कानून व्यवस्था अच्छा करे, ट्रैफिक सिस्टम को सुधारे यहाँ की सरकार।
2: बहुत देर से हम लोग ट्रैफिक में फंसे हैं, न वॉशरूम की व्यवस्था है यहाँ पे, लिटरली 3 घंटे से हम ट्रैफिक में, न पानी का कोई सुविधा है, मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट करे, इतनी ज्यादा ट्रैफिक लग रही है, एटलीस्ट पुलिस यहाँ पे रखे जिससे हम 3-3 घंटे तक ना फंसे टूरिस्ट।
0: प्रदेश में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान युवाओं के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। इन संस्थानों में युवाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण निःशुल्क दिए जा रहे हैं, जिसके बाद युवाओं को स्वरोजगार में मदद मिल रही है। यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सिरमौर में पिछले 3 वर्षों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सिरमौर जिला संवाददाता।
3: यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सिरमौर जिला में पिछले 3 सालों में ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग के 7 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 166 युवतियों व महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। गत 3 वर्षों में 72 महिलाओं ने अपना स्वयं का रोजगार सृजित किया है, जबकि अन्य 94 प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं रोजगार के लिए प्रयासरत है। निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम महिलाओं को स्वावलंबन दिशा की तरफ बढ़ा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार, जिनकी अदाओं में नजाकत, जिनकी गायकी में नफासत है, जिन्होंने अपने हुस्न और हुनर के जरिए फिल्मी पर्दे पर एक नई इबारत लिखी है, वो हैं आज की फनकार।

0: पास रहें या दूर रहें, उनकी आवाज जब हो पास तो बस मन सुकून और चैन से भर जाता है।
1: दिल नादान तुझे हुआ क्या है?
0: गम की दवा बन जाती है उनकी आवाज और उनकी अदायगी। आज के फनकार कार्यक्रम में चर्चा गायिका और अदाकारा सुरैया की।

सुरैया बचपन में बड़े नाज नखरे के साथ पली बढ़ी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मी थी। बचपन में उनका नाम था सुरैया जमाल शेख। बाद में अभिनय और गायन की दुनिया में वे सुरैया के नाम से मशहूर हुई।

सुरैया के फिल्मी करियर के शुरू होने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज़ सुनी तो उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया।

एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया थी हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। देवानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को देवानंद ने कॉपी की और देवानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने देवानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे देवानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक डोर बंध गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे, मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी जीती रहीं।

फिल्म जीत के सेट पर देवानंद ने सुरैया से अपनी मोहब्बत का इजहार हीरे की अंगूठी देकर किया था। सुरैया के लिए भी ये फिल्म याद

कहा जाता है देवानंद ने सुरैया को टूटकर प्रेम किया था। रोमांसिक विद लाइफ संस्मरण में देवानंद ने लिखा था, सुरैया की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। हाँ, मैंने उन्हें प्यार किया था, इसे मैं अपने जीवन का मासूम प्यार कहना चाहूंगा।

सुरैया की आवाज में जहाँ एक तरफ दर्द है वहीं दूसरी तरफ खुशी की तरंग भी सुनाई पड़ती है। फिल्म अफसर के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये गीत उन्होंने किस अदा के साथ गाया है सुनिए।

जब देवानंद की फिल्म अफसर बन रही थी तो सचिन देव बर्मन ने सुरैया के लिए एक गीत तैयार किया, जबकि एस डी बर्मन साहब खुद बड़ा अच्छा गाना गाते थे। सुरैया ने देवानंद से कहा कि सिचुएशन बदल कर ये गीत बर्मन साहब से ही गवाया जाए, लेकिन बर्मन साहब राजी नहीं हुए। वे बोले, ये गीत खास तौर पर सुरैया के लिए ही बनाया गया है, सो ये गाना सुरैया ही गाएंगी। और फिर ये गीत सुरैया ने गाया और हम सब के लिए वो गाना मन का मोर बन गया।

0: सुरैया विदेशी एक्टर ग्रेगरी पैक की दीवानी थी, ये बात उनके चाहने वालों को बखूबी मालूम है, लेकिन इस बात को वे किस खास अंदाज में कहती थी, सुनिए।
1: 1952 के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक कापरा आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, ग्रेगरी पैक की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, आप उनसे ये जरूर कह दीजिएगा। और फिर मिस्टर कापरा ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पैक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे। फिर करीब 2 साल बाद एक दिन फिल्म बिल्वा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी, उठो उठो देखो बाहर कौन आया है, ग्रेगरी पैक तुमसे मिलने आए हैं। पहले मैं ख्वाब समझी, मगर जब नींद टूटी तो ये हकीकत थी।

सुरैया गायिका और अभिनेत्रियों की आखिरी पीढ़ी थी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नूरजहां और खुर्शीद सरहद के उस पार चली गईं, पर सुरैया हिंदुस्तान में ही रहीं। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। अपने गाने उन्होंने खुद गाए। उन्होंने मोहम्मद रफी, तलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों के साथ गाने गाए।

50 के दशक में एक दौर ऐसा आया जब सुरैया की फिल्में चल नहीं रही थीं। इसी दौर में सोहराब मोदी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी। कमाल की बात यह है, मधुबाला और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। ये उनके गायन के सफर के लिए खूबसूरत तोहफा था। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल पाने वाली ये पहली

0: दोस्तों, क्या आपको मोती महल फिल्म का ये गाना याद है, मोटर बिगड़ने का?
1: कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, खड़े रहो बस बेबस होकर रस्ते में, कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते।

सन 1958 फिल्म मालिक में आया सुरैया का एक नायाब गाना, साथ में तलत महमूद की आवाज़।

सुरैया ने उस समय फिल्मों को अलविदा कहा जब वे और फिल्में कर सकती थीं। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन के साये में गुजरी और फिर 31 जनवरी सन 2004 में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें और जिंदगी का उनका दर्द।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी गायिका और अदाकारा सुरैया पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने को हैं, थोड़ी देर में सुनिए हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफेन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लोचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियोन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजारपु राम मोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। श्री नायडू ने कहा कि हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति की अलग सोच और अलग सृजनात्मक दृष्टिकोण होता है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विविधता ही नई संभावनाओं को जन्म देती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:05 हुए हैं। अब सुनिए

लघु वार्ता। लघु वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज का लघु वार्ता का विषय है भारत सरकार के विगत 12 वर्षों में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। सामाजिक सुरक्षा किसी भी कल्याणकारी राज्य की पहचान होती है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर, गरीब, वृद्ध, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक एवं सामाजिक संरक्षण प्रदान करना है। पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार ने ऐसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ है कि सरकार अपने नागरिकों को जीवन की विभिन्न चुनौतियों जैसे बीमारी, बेरोजगारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था, गरीबी आदि से बचने के लिए सहायता प्रदान करे। भारत जैसे विशाल देश में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। वर्ष 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम थी। इस योजना के तहत हर परिवार को बैंक खाता उपलब्ध कराया गया, शून्य बैलेंस पर खाता खोलने की सुविधा दी गई, रुपए डेबिट कार्ड उपलब्ध कराया गया, दुर्घटना बीमा और ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की गई। इस योजना ने करोड़ों लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर सरकारी लाभ सीधे अपने खातों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह एक जीवन बीमा योजना है। मुख्य विशेषताएं इसकी थी 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल हो सकते थे। कम प्रीमियम पर जीवन बीमा सुरक्षा मिलती है। मृत्यु की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हुई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यह दुर्घटना बीमा योजना है। इसके अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर बीमा राशि प्रदान की जाती है। बहुत कम वार्षिक प्रीमियम पर सुरक्षा उपलब्ध है। इस योजना ने लाखों लोगों को दुर्घटना संबंधी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान की है। अटल पेंशन योजना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई यह योजना वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना की विशेषताएं, नियमित अंशदान के आधार पर पेंशन की व्यवस्था, 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विशेष लाभ। आज बड़ी संख्या में श्रमिक इस योजना से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ग्रामीण और गरीब परिवारों की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने वाली यह महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत गरीब परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आई, महिलाओं का समय और श्रम बचा। इस योजना ने महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान दोनों को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हर परिवार के पास अपना घर हो, इस लक्ष्य के साथ ये योजना शुरू की गई। योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पक्के मकानों का निर्माण हुआ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता मिली, महिलाओं के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व को प्रोत्साहन दिया गया। लाखों परिवारों का घर का सपना इस योजना से पूरा हुआ है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी योजना मानी जाती है। इसके लाभ थे पात्र परिवारों को निशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा देना, गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था करना, सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार करवाना। इस योजना ने गरीब परिवारों को महंगे इलाज के आर्थिक बोझ से राहत दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना,
किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। कृषि कार्यों में सहायता मिलती है। यह योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया गया। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहायता मिली। निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक आदि को पहचान मिली। यह श्रमिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पीएम स्वनिधि योजना। कोविड-19 महामारी के बाद छोटे रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की सहायता के लिए ये योजना शुरू की गई। इसके तहत बिना गारंटी के ऋण सुविधा, छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता, डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन, इस योजना से लाखों छोटे व्यापारियों को लाभ मिला। जल जीवन मिशन। हालांकि यह केवल सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है, लेकिन सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर यह लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता हुई, महिलाओं और बच्चों की कठिनाइयों में कमी आई। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी पहले। पिछले वर्षों में महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई गईं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृत्व लाभ योजनाएं, महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन। इन पहलुओं ने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभाव। इन योजनाओं के परिणाम स्वरूप वित्तीय समावेशन बढ़ा है, गरीब परिवारों को सुरक्षा मिली है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है, किसानों और श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, ग्रामीण विकास को गति मिली है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं केवल आर्थिक सहायता ही नहीं देती, बल्कि नागरिकों के आत्मविश्वास और सम्मान को भी बढ़ाती हैं। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में शुरू की गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं देश के समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। जब गरीब, किसान, महिला, श्रमिक, बुजुर्ग और युवा सुरक्षित और सशक्त होंगे, तभी एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव होगा। आज की लघु वार्ता में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 10:15 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कुछ तुम चलो कुछ हम चलें।

कार्यक्रम कुछ तुम चलो कुछ हम चले लेकर हाजिर हूं आपकी रेडियो दोस्त अस्मिता। श्रोताओं, ये कार्यक्रम होता है सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और जीवन के लक्ष्य पर आधारित। ये कार्यक्रम होता है जिसमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन से जुड़ी बातें हम करते हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में हमारी बहुत मदद करते हैं।

श्रोताओ, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कभी धूप होती है, कभी छांव होती है, कभी सफलता हमारे कदम चूमती है तो कभी असफलताएं हमें नए सबक सिखा जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस रखता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। कल्पना कीजिए कि कोई यात्री बिना मंजिल तय किए यात्रा पर निकल पड़ा है। वह कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन वहां नहीं जहां वह वास्तव में जाना चाहता था। ठीक इसी तरह जीवन में लक्ष्य ना हो तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। लक्ष्य हमें दिशा देते हैं, प्रेरणा देते हैं और आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। लक्ष्य बड़े हों या छोटे, वे जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। एक विद्यार्थी का लक्ष्य अच्छी शिक्षा प्राप्त करना हो सकता है, किसान का लक्ष्य अच्छी फसल उगाना, खिलाड़ी का लक्ष्य पदक जीतना और एक सामान्य व्यक्ति का लक्ष्य अपने परिवार को खुशहाल जीवन देना हो सकता है। कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यदि हम हर समय ये सोचते रहे कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, तो हमारी ऊर्जा कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन यदि हम ये सोचें कि मैं प्रयास करूँगा, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो हमारी क्षमताएं बढ़ने लगती हैं। सकारात्मक सोच का अर्थ ये नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। इसका अर्थ ये है कि समस्याओं के बीच भी हम समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी असफल होता है, लेकिन असफलता अंत ही नहीं। असफलता हमें ये बताती है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। महान वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों और नेताओं ने भी अनेक बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यदि आज कोई प्रयास सफल नहीं हुआ तो इसका अर्थ ये नहीं कि कल भी सफलता नहीं मिलेगी। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है आत्मविश्वास। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं तब कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं। आत्मविश्वास हमें जोखिम उठाने की शक्ति देता है और नई चुनौतियों का सामना करने का साहस भी। याद रखिए, यदि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होगा तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। जीवन में बड़े बदलाव एक दिन में नहीं आते, वे छोटी छोटी अच्छी आदतों से आते हैं। सुबह समय पर उठना, नियमित व्यायाम करना, योग और ध्यान करना, समय का सही उपयोग करना, सकारात्मक लोगों के साथ रहना और प्रतिदिन कुछ नया सीखना, ये सभी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। हर दिन केवल एक कदम आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे यही कदम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। आज के समय में लोग अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। ये आदत कई बार निराशा का कारण भी बन जाती है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं, उसकी क्षमताएं अलग हैं और उसकी यात्रा भी अलग है। इसलिए तुलना करने की बजाय दूसरों से प्रेरणा लें। यदि कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है तो हम भी अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, कहा जाता है कि हमारा व्यक्तित्व उन लोगों से प्रभावित होता है जिनके साथ हम समय बिताते हैं। यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहे जो हर समय शिकायत करते हैं, निराशा फैलाते हैं, तो हमारी सोच भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन यदि हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो हमारी ऊर्जा भी सकारात्मक बनी रहती है।

श्रोताओं, सकारात्मक जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण तरीका है कृतज्ञता। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप आभारी हैं। अपना परिवार, अपने मित्र, अपना स्वास्थ्य, अपनी शिक्षा, प्रकृति और जीवन के अवसर। जब हम कृतज्ञ होते हैं तब हमारा ध्यान अभाव पर नहीं बल्कि उपलब्धियों पर जाता है। इससे मन में संतोष और प्रसन्नता आती है। श्रोताओं, यदि जीवन में चुनौतियां ना हों तो हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को कभी नहीं पहचान पाएंगे। मुश्किल परिस्थितियां हमें धैर्य, साहस और संघर्ष का महत्व सिखाती हैं। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही व्यक्ति संघर्षों से गुजरकर मजबूत बनता है। इसलिए चुनौतियों से घबराइए नहीं, उनका सामना करिए। सिर्फ सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कुछ न कुछ कार्य अवश्य कीजिए। छोटे प्रयास भी समय के साथ बड़े परिणाम देते हैं। जीवन केवल सफलता प्राप्त करने का नाम नहीं है। जीवन का अर्थ होता है सीखना, आगे बढ़ना, दूसरों की मदद करना और स्वयं को बेहतर बनाते रहना। जब हम अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी खुशियां बांटते हैं तभी जीवन वास्तव में सार्थक बनता है। श्रोताओं, बातें और होंगी लेकिन फिलहाल यहाँ पे समय है एक म्यूजिकल ब्रेक का, तो सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत और लौटेंगे इस गीत के बाद।

श्रोताओं, जीवन एक किताब की तरह है। इसमें कुछ पन्ने खुशियों के होते हैं, कुछ संघर्ष के, कुछ सफलता के और कुछ असफलता के। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल एक पन्ना, एक कठिन पन्ना देखकर पूरी किताब पढ़ना छोड़ दे तो वह जीवन की सुंदर कहानियों से वंचित रह जाता है। श्रोताओं, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, कभी हार नहीं माननी चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? धन? बिल्कुल नहीं। पद? बिल्कुल भी नहीं। शक्ति? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी ताकत होती है खुद पर विश्वास। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है तो वह ऐसे कार्य भी कर जाता है जिन्हें लोग असंभव समझते हैं। यदि आपको अपनी क्षमता पर भरोसा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कई बार लोग हमें कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम सफल नहीं हो सकते। लेकिन याद रखिए, दूसरों की राय आपकी पहचान नहीं होती। आपकी पहचान आपके कर्म और आपका आत्मविश्वास तय करता है। हम अक्सर सफलता की बातें करते हैं, लेकिन सफलता की राह असफलताओं से होकर गुजरती है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। यदि वह पहली बार गिरकर बैठ जाए और कहे कि मैं अब नहीं चलूंगा, तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह जीवन में असफलता गिरना है, लेकिन हार मान लेना बैठ जाना है। असफलता हमें रोकना नहीं बल्कि सिखाना आती है। हर असफलता के पीछे एक सीख छुपी होती है। जो व्यक्ति उस सीख को समझ लेता है वह आगे चलकर सफलता प्राप्त करता है। श्रोताओं, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज है समय। पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। आज जो लोग सफल हैं उनके पास भी दिन के 24 घंटे ही थे। अंतर केवल इतना था कि उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया। यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो समय की कीमत समझिए। हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कुछ कदम अवश्य बढ़ाइए। सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल सपने देखना काफी नहीं। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पढ़ाई करनी होगी। यदि आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो अभ्यास करना होगा। यदि आप सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं तो संघर्ष करना होगा। सपने तभी पूरे होते हैं जब उनके साथ मेहनत जुड़ जाती है। एक ही परिस्थिति के दो अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक व्यक्ति कहता है रास्ता कठिन है, दूसरा व्यक्ति कहता है ये रास्ता मुझे मजबूत बनाएगा। ये सोच का अंतर है। सकारात्मक सोच का अर्थ ये नहीं कि समस्याएं नहीं हैं। सकारात्मक सोच का अर्थ है कि समस्याओं के बावजूद हम समाधान खोजते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में अवसर देखना सीख जाएं तो जीवन बदल सकता है। आज की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है तुलना। हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं। वह मुझसे आगे है, उसकी सफलता अधिक है।

लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। एक फूल को खिलने में जितना समय लगता है, उतना ही समय दूसरे फूल को नहीं लगता। इस प्रकार हर व्यक्ति की सफलता का समय अलग होता है, इसलिए दूसरों से तुलना मत कीजिए। कल आप जहां थे, आज उससे बेहतर बनाइए। बस यही आपकी प्रतियोगिता होनी चाहिए। श्रोताओं, यदि जीवन में संघर्ष नहीं होगा तो हम मजबूत कैसे बनेंगे? तितली को कोकून से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यदि कोई उसकी मदद कर दे तो उसके पंख मजबूत नहीं बन पाते। इसी प्रकार जीवन के संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। मुश्किल समय हमें धैर्य सिखाता है। विफलता हमें सीख देती है। चुनौतियां हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। इसलिए संघर्ष से मत घबराइए। जिस व्यक्ति के पास लक्ष्य नहीं होता, वे अक्सर भटक जाता है। इसलिए अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कीजिए। लक्ष्य बड़ा हो सकता है या छोटा, लेकिन होना चाहिए। फिर उस लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटिए। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाएंगे। बहाने बनाना आसान है, परिस्थितियां कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होती। यदि हम हर काम के लिए सही समय का इंतजार करेंगे तो शायद शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। सफल लोग बहाने नहीं बनाते, वे उपलब्ध संसाधनों के साथ शुरुआत करते हैं। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। अपने जीवन में जो कुछ भी है, उसके लिए आभारी रहिए। जब हम कृतज्ञ होते हैं, तब हम जीवन की सकारात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं। हमारी खुशियां बढ़ती हैं, मन शांत रहता है और हम अधिक ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाते हैं।

श्रोताओं, कुछ बातों का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे खुद पर विश्वास रखना, असफलता से सीख लेना, समय का सम्मान करना, सकारात्मक सोच रखना, लक्ष्य निर्धारित करना, निरंतर प्रयास करते रहना, किसी से तुलना नहीं करना और हमेशा कृतज्ञ बने रहना। जब भी आपको लगे कि रास्ता कठिन है तो ये बात जरूर याद रखिए कि सूरज हर शाम ढलता है लेकिन अगली सुबह फिर निकलता है। नदी रास्ते में आने वाली चट्टानों से नहीं रुकती बल्कि अपना रास्ता बना लेती है। बीज मिट्टी के अंदर अंधेरे में रहता है लेकिन एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों ना आएं, यदि हम धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम जरूर चूमेगी।

जी श्रोताओं, इस बहुत ही खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम कुछ तुम चलो कुछ हम चले में। श्रोताओं, जीवन कभी भी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कभी खुशियां मिलती हैं, कभी चुनौतियां, कभी लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो कभी आलोचना करते हैं, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता भी मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आगे बढ़ना सीख जाता है वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। समुद्र की लहरें हमेशा किनारे से टकराती हैं लेकिन वे रुकती नहीं हैं, वे बार बार लौटती हैं। हमें भी जीवन में ऐसा ही बनना है। बहुत से लोग अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते, वे सोचते हैं कि मैं साधारण हूँ, मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन सच ये है कि ईश्वर ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई विशेषता ज़रूर दी है। किसी के पास अच्छा बोलने की कला है, किसी के पास नेतृत्व करने की क्षमता है, किसी के पास रचनात्मक सोच है, किसी के पास मेहनत करने की अद्भुत शक्ति है। ज़रूरत केवल उस शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा देने की होती है। जब हम आप पर स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है, आत्मविश्वास का अर्थ ये है कि यदि नहीं आता तो सीख सकता हूँ, यदि गिर जाऊँगा तो उठ सकता हूँ, यदि असफल हो जाऊँगा तो दोबारा प्रयास कर सकता हूँ। यही सोच व्यक्ति को महान बनाती है। हम में से अधिकांश लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता हमें जितना नहीं सिखाती उससे कहीं अधिक असफलता सिखाती है। असफलता बताती है कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है। असफलता हमें धैर्य सिखाती है, असफलता हमें मजबूत बनाती है। इसलिए जब भी जीवन में असफलता मिले तो निराश होने की बजाय खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यही प्रश्न आपकी जिंदगी बदल सकता है। श्रोताओं, कल्पना कीजिए कि एक जहाज समुद्र में निकल पड़ा लेकिन उसकी कोई मंजिल नहीं है, क्या वह सही जगह पहुंच पाएगा? शायद नहीं। ठीक इसी प्रकार लक्ष्य के बिना जीवन भी भटक जाता है, इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कीजिए। लक्ष्य ऐसा हो जो आपको हर सुबह उत्साह के साथ जगाए, जो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करे। कई लोग सोचते हैं कि सफलता एक ही दिन में मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफलता छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। एक ईंट से घर नहीं बनता लेकिन हजारों ईंटें मिलकर एक मजबूत भवन तैयार करती हैं। ठीक वैसे ही रोज का छोटा प्रयास जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है।

श्रोताओं, दुनिया की हर चीज वापस मिल सकती है, धन वापस मिल सकता है, खोई हुई वस्तु वापस मिल सकती है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। आज का दिन ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए समय का सही उपयोग कीजिए। हर दिन कुछ नया सीखिए, अपने लक्ष्य की दिशा में कुछ ना कुछ अवश्य कीजिए। सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो समस्याओं में भी अवसर दिखाई देते हैं, जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो अवसरों में भी समस्याएं दिखाई देती हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखिए। हर सुबह उठकर स्वयं से कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये छोटे छोटे वाक्य हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी राय होती है। कुछ लोग आपको प्रोत्साहित करेंगे, कुछ लोग आपको हस्तोत्साहित करेंगे, लेकिन अंत में निर्णय आपको लेना है। यदि हर बार हम दूसरों की राय के अनुसार चलेंगे तो अपनी पहचान खो देंगे। अपनी क्षमता पर विश्वास रखिए और अपने रास्ते पर चलते रहिए। तो श्रोताओं, इन्हीं बातों के साथ हमारे कार्यक्रम का समय भी अब यहाँ पर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ कि अपने जीवन के लक्ष्य को हमेशा निर्धारित करके रखिए और असफलताओं से बिल्कुल नहीं डरिए, क्योंकि जो व्यक्ति असफलताओं से डरते हैं वह अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा पाते। इन्हीं बातों के साथ दीजिए अपनी रेडियो दोस्त अस्मिता को इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर कार्यक्रम कुछ तुम चलो कुछ हम चलें। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग।

लोक रंग कार्यक्रम सुनने वाले अपने सारे श्रोतियों का कार्यक्रम च यह बड़ा बड़ा स्वागत करते हैं। लोक रंग यानी लोक संस्कृति दे रंग, हिमाचल की लोक संस्कृति दे रंग, एक बड़ी बड़ी समृद्ध विरासत खुच समेटे आंदा छैल वांका हिमाचल प्रदेश। हर जिले च तुंजो दिखने जो मिली जानी है संस्कृति की अलग अलग झलक। अनेक

0: एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
4: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
3: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दो।

0: गए, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर वाई एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर वाई एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर वाई एस परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी दे हमीरपुर केंद्र ते इस वक्त सुना दे अन कार्यक्रम लोक रंग। लोक रंग यानी लोक संस्कृति दे रंग। इना लोक गीतां दे माध्यम ते असे विखेर दे अन संस्कृति दी एक खूबसूरत छटा। ये मिठड़े मिठड़े लोक गीत हर किसी दा मन मोही लैंदे अन। तपे श्रोताओं आओ मिलने सुन दे अन कार्यक्रम च एक और मिठड़ा जिहा लोक गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के 11 जिलों में नवनिर्वाचित प्रधानों और उप प्रधानों को आज शपथ दिलाई जा रही है। शपथ समारोह जिला स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। उधर कांगड़ा जिले में 18 जून को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया चंबा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल सोलन और कृषि मंत्री चंद्र कुमार कुल्लू में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसी तरह उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सिरमौर, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी किन्नौर, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर शिमला, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मंडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा हमीरपुर में शपथ दिलाएंगे। इस बीच प्रदेश के 4 नगर निगमों के चुनाव में नवनिर्वाचित पार्षद 29 जून को शपथ लेंगे। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन नगर निगम की 29 जून को पहली बैठक आयोजित होगी। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इन चारों नगर निगमों में नए महापौर और उप महापौर का चुनाव भी इसी दिन होगा। गौरतलब है कि नगर निगम के लिए 17 मई को मतदान हुआ था और 31 मई को चुनाव नतीजे आए थे। प्रदेश सरकार ने पशुपालकों की आजीविका सुधारने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चराई नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: सरकार की नई चराई नीति समावेशी, टिकाऊ और सशक्त पशुपालन अर्थव्यवस्था की नींव रखेगी। इस नीति में चराई प्रबंधन को पर्यावरण संतुलन और आर्थिक सशक्तिकरण के अनुरूप बनाया गया है। पशुपालन विभाग के सहयोग से वन विभाग एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा। इसमें पशुपालकों को 6 महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा। इस जानकारी को हिम परिवार और भारत पशुधन पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे पहचान और विवरण का सत्यापन आसानी से हो सकेगा। नीति की खास बात यह है कि बिना औपचारिक अनुमति के वर्षों से चराई कर रहे पारंपरिक पशुपालकों को भी मान्यता मिलेगी। पंजीकरण के साथ स्थानीय चराई सलाहकार समितियां मामलों की समीक्षा कर नए परमिट जारी करेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: प्रदेश के सभी जिलों में आज आपदा प्रबंधन को लेकर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सहयोग से ये मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। इसके लिए भूकंप

0: भूस्खलन, बादल फटने से आने वाली बाढ़ और वनों की आग जैसी घटनाओं के परिदृश्य दिए गए हैं। पूर्वाभ्यास के दौरान इन्हीं परिदृश्यों के अनुसार राहत व बचाव कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल होंगे, जो आपदा तैयारी में मौजूद कमियों की पहचान करने और उनके समाधान के सुझाव देंगे। भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा दिशा योजना के तहत टैली लॉ पहल पर क्षेत्रीय कार्यशाला और रिफॉर्म्स उत्सव का आयोजन आज राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में किया जाएगा। ये आयोजन पिछले 12 वर्षों में न्याय क्षेत्र में किए गए परिवर्तनकारी सुधारों को प्रदर्शित करने की दिशा में न्याय विभाग की सतत प्रतिबद्धता का हिस्सा है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण न्याय प्रबोध अवेकनिंग टू जस्टिस नामक वर्ष भर चलने वाले विधिक जागरूकता अभियान का शुभारंभ होगा। इस अभियान के तहत नागरिक केंद्रित कई गतिविधियां शुरू की जाएंगी। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता और केंद्रीय विधि व न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल होंगे। बाहरी राज्यों में पड़ रही प्रचंड गर्मी के चलते पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में चंबा जिला में भी पिछले कुछ दिनों से पर्यटकों का ग्राफ बढ़ा है और पर्यटक जिला के पर्यटन स्थलों खजियार, डलहौजी व चंबा जिला मुख्यालय में पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पर्यटन स्थलों में पुख्ता ट्रैफिक प्लान न होने की वजह से पर्यटकों को वाहन जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। सुविधाओं के अभाव पर पर्यटकों ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं।
1: बिहार से आए हुए हैं, यहाँ डलहौजी घूमने आए थे। इस खजियार में हम 4 घंटों से जाम में फंसे हुए हैं। हम चाहते हैं जो भी टूरिस्ट आए वो ना फंसे, इसके लिए यहाँ का प्रशासन को, यहाँ की सरकार को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। बिहार से आया हूँ और हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। प्रशासन से और सत्ता में बैठे हुए लोगों से आग्रह पूर्वक कहना है, टूरिस्ट को अगर बुलाना है यहाँ पे तो यहाँ कानून व्यवस्था अच्छा करे, ट्रैफिक सिस्टम को सुधारे यहाँ की सरकार।
2: बहुत देर से हम लोग ट्रैफिक में फंसे हैं, न वॉशरूम की व्यवस्था है यहाँ पे, लिटरली 3 घंटे से हम ट्रैफिक में, न पानी का कोई सुविधा है, मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट करे, इतनी ज्यादा ट्रैफिक लग रही है, एटलीस्ट पुलिस यहाँ पे रखे जिससे हम 3-3 घंटे तक ना फंसे टूरिस्ट।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11:05 हुए हैं। अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

आप जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में ये गज़ल। एल्बम का नाम प्यार का पहला खत। इस गज़ल को लिखा है हस्ती ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में। एल्बम का नाम दिल झूम झूम नाचे। गीत और संगीत ललित सेन का।

देखा है तेरी आंखों को, इस एल्बम का गीत अभी आपने सुना, आवाज और शब्द रचना साधु की, और इस गीत को सुरों में ढाला ललित ने।

शान का गाया और लिखा गीत आपने सुना तन्हा दिल। इस एल्बम से राम संपत ने इसे संगीतबद्ध किया था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर का लिखा ये गीत। संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने और एल्बम का नाम दीवाना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में

घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

लकी अली का गाया गीत आपने सुना, उन्हीं के संगीत निर्देशन में सईद असलम के बोल थे और सिफर था एल्बम का नाम। और आइए अब आपको सुनवाते हैं तू ही मेरे रब की तरह है, इस एल्बम से गीत सईद कादरी के बोल हैं और गोल्डी का संगीत।

0: आज का मिश्र संगीत का ये कार्यक्रम रंग तरंग अब यहीं पर संपन्न होता है। नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
1: रंग तरंग।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। दोपहर के 12 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे।
1: अब तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के ठीक 12 बज चुके हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है सखियों का पसंदीदा कार्यक्रम वनिता मंडल।
2: वनिता मंडल, वनिता मंडल।
1: वनिता मंडल कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों का कार्यक्रम में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का ये कार्यक्रम लेकर स्टूडियोज में हाजिर हो चुकी हैं आपकी अपनी रेडियो सखियां। मैं हूं प्रीति और मेरे साथ हैं
3: आपकी रेडियो सखी अस्मिता।
1: तो हम दोनों सखियों का हमारी सभी प्यारी प्यारी सी सखियों को प्यार भरा नमस्कार। और अस्मिता, कैसी हैं आप?
3: जी बिल्कुल प्रीति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हम आशा करते हैं कि हमारी बहनें भी बिल्कुल स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और हष्ट पुष्ट होंगी।
1: जी बिल्कुल, और इस वक्त अपने कामों के साथ साथ अपने रेडियो सेट्स ऑन करके बैठी होंगी, क्योंकि काम के साथ साथ जानकारियाँ भी हासिल करनी हैं, खुद को अपडेट भी रखना है।
3: बिल्कुल,
1: तो हम भी आज की जानकारियों का पिटारा खोलते हैं और अपनी सखियों को बताते हैं कि आज के इस पिटारे में क्या क्या नई जानकारियाँ हैं।
3: जी हाँ,
1: देखिए आज है 15 जून और सबसे पहले बात करेंगे इसी के बारे में कि आज हम कौन सा दिन मना रहे हैं। आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, जो कि हर वर्ष आज के दिन 15 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि समाज में बुजुर्गों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण, हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, उनके सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करना है।
3: जी हाँ, देखिए प्रीति, बुजुर्ग हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, ज्ञान और मेहनत से परिवार और समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है।
1: जी,
3: लेकिन इसे हम दुर्भाग्य बोल सकते हैं कि आज अनेक बुजुर्ग जो है वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण का सामना कर रहे हैं, और इस गंभीर समस्या की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिन दिवस जो है वो मनाया जाता है, ताकि हम इनके प्रति जागरूक हों और इन दुर्व्यवहारों को करने से अपने आप को रोक सके।
1: देखिए, इस दिन को मनाने की शुरुआत जो थी वो 15 जून सन 2006 को इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज़ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाई गई थी, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2011 में इसे आधिकारिक तौर पर जो थी वो मान्यता दी थी।
3: जी,
1: और ये दिन हमें याद दिलाता है कि बुजुर्ग हमारे समाज की पूंजी हैं और उनके साथ होने वाला कोई भी दुर्व्यवहार एक गंभीर मानवाधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
3: जी,
1: तो हर दिन के पीछे उद्देश्य छुपा होता है, लोगों को जागरूक करना, और उस दिन को मनाने के उद्देश्य की पूर्ति तभी होती है जब हम जागरूक होते हैं और उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं हमारे समाज में, हमारे घर परिवार की एक विशेष पूंजी हैं। उन्होंने एक उम्र का दौर देखा होता है, हमें हर तरह से गाइड करते हैं, और एक बट वृक्ष की छांव की तरह बुजुर्ग जो है हमारे जीवन में अपनी भूमिका जो है वो अदा करते हैं।
3: जी हाँ जी, बिल्कुल। और देखिए प्रीति, वृद्ध दुर्व्यवहार के अगर अर्थ की हम बात करें तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना जिससे उसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक नुकसान पहुंचे, ये होते हैं वृद्ध दुर्व्यवहार। और इनके अंतर्गत शामिल होते हैं कोई शारीरिक हिंसा या मानसिक या भावनात्मक उत्पीड़न, आर्थिक शोषण, उपेक्षा या अनदेखी, सामाजिक अलगाव और संपत्ति या धन का गलत उपयोग।
1: जी बिल्कुल, देखिए एक समाज में हम रहते हैं, कई तरह की घटनाएं घटती हैं और कई बार इस तरह के मामले भी देखे जाते हैं जिसमें बुज़ुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, चाहे वो मानसिक या भावनात्मक उत्पीड़न हो या फिर आर्थिक शोषण हो, कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और आज की बदलती जीवन शैली, संयुक्त परिवारों के टूटने और बढ़ती व्यस्तता के कारण कई बुज़ुर्ग अकेलेपन का सामना करना उन्हें पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना, आर्थिक सुरक्षा की बात करें या फिर उनके देखभाल की बात करें या फिर आजकल जो डिजिटल युग है, नई तकनीकों से कई बार वो इतनी दूरी उनकी होती है, नहीं जुड़ पाते, तो कई चुनौतियों का सामना बुजुर्गों को भी करना पड़ता है। तो इन्हीं सारी समस्याओं का समाधान हमें ढूंढना है, क्योंकि समाज में बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी भूमिका है और बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल परिवार की ही नहीं बल्कि एक पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है।
3: बिल्कुल,
1: बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? बुजुर्गों का सम्मान करना, खुद भी और अपने छोटे बच्चों को भी सिखाना
3: जी।
1: उनके जो पुराने अनुभव हैं उनको अधिक महत्व देना, उनसे सीख लेनी और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना।
3: बिल्कुल,
1: क्योंकि जीवन है एक पहिए की तरह घूमता है, ये दौर हर किसी को आता है
3: जी।
1: तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, एक परिवार की जिम्मेदारी है। परिवार जो है बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा सहारा होता है, तो हर सदस्य को चाहिए कि बुज़ुर्गों के साथ, जो आपके घर परिवार के बड़े हैं, उनके साथ समय बिताएं, उनकी भावनाओं को समझें, उन्हें प्यार दें, सम्मान दें
3: जी। और देखिए, परिवार की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है कि बुज़ुर्गों के लिए जो परिवार है वो एक बहुत बड़ा सहारा होता है
1: जी।
3: और ज़रूरी है कि परिवार के सदस्य भी बुज़ुर्गों के साथ समय ज़रूर बिताएं, क्योंकि आज के दौर में देखिए प्रीति, हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है और वो कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों के साथ समय जो है वो नहीं बिता पाता। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने बड़े बुज़ुर्गों की बातें सुने, उनके साथ समय व्यतीत करें और ताकि उन्हें भी मतलब अकेलापन महसूस ना हो। और दूसरा, उनकी भावनाओं को भी समझा जाए, उनके साथ प्रेम और सम्मान की भावना रखना, उनके स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों का ध्यान रखना और निर्णयों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना
1: जी।
3: ये कुछ बातें अगर ध्यान रखी जाए तो बुज़ुर्गों को कभी भी ऐसी स्थिति का सामना जो है वो नहीं करना होगा
1: जी। और बात भी करें तो 2019 और 2030 के बीच जो है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या में 38% की वृद्धि होने का अनुमान है, जो कि 1 अरब से बढ़कर 1.4 अरब हो जाएगी। और वैश्विक स्तर पर युवाओं की तुलना में इनकी संख्या अधिक होगी, जो कि ये वृद्धि है, चाहे विकासशील देश हैं या विकसित देश हैं, दोनों में इस तरह की रहेगी। तो इनका ध्यान रखना, वृद्ध व्यक्तियों का ध्यान रखना, क्योंकि ये विशिष्ट चुनौतियों का सामना करते हैं, तो किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना हो, इनका खासा ख्याल रखा जाए, इस बात का ख्याल रखने के लिए ही ये विशेष दिन मनाए होते हैं, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि ये बुज़ुर्ग व्यक्ति हमारे परिवार की पूंजी हैं। और इनकी सुरक्षा के लिए कई तरह के हेल्पलाइन नंबर भी चलाए हैं, जो बुज़ुर्ग इस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं, अहिंसा का शिकार होना पड़ता है, तो वो एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। अगर कोई पेंशन संबंधी उन्हें समस्या आ रही है तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 1800117788 पर भी कॉल कर सकते हैं और अपनी पेंशन से संबंधित बातचीत जो है वो कर सकते हैं। तो इस दिन को हम सब मिलजुल कर बना रहे हैं और इस बात का खासा ख्याल रखें, जो कि हमारे परिवार में, हमारे आसपास बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, उनका खासा ख्याल रखा जाए और उनके साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जाए
3: जी।
1: तो कार्यक्रम में और भी जानकारियां हम अपनी सखियों के साथ साझा करेंगे, लेकिन जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन भी ज़रूरी है। तो कार्यक्रम में सुनते हैं गीत और बाकी की जानकारी फिर इस गीत के बाद
3: जी। हाँ,

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: एक बार फिर से अपने सभी सखियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम वनिता मंडल में। और कार्यक्रम में पहले हमने बात करी आज के विशेष दिन के बारे में, जैसे कि आज हम मना रहे हैं विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस
4: जी।
3: और अब अपनी सखियों से बात करेंगे उन्हीं के बारे में, भारत सरकार द्वारा विगत वर्षों में महिलाओं के लिए चलाई गई विशेष योजनाओं के बारे में
4: जी। हाँ,
3: कि किस किस तरह की योजनाएं उनके उत्थान के लिए चलाई गई हैं ताकि इन योजनाओं का लाभ जो है महिलाओं के लिए मिले। कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और इसका उद्देश्य महिलाओं को केवल लाभार्थी ना रखकर उनका विकास करना है, उनको नेतृत्वकर्ता बनाना है
4: जी। हाँ,
3: और आज के दौर में हम देख ही रहे हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएँ बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं।
4: बिल्कुल,
3: तो बात करते हैं भारत सरकार द्वारा चलाई गई कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे सुरक्षा और पुनर्वास के बारे में, वन स्टॉप सेंटर के बारे में
4: जी।
3: हिंसा के मामले हों, उत्पीड़न से संबंधित प्रभावित जो महिलाएं हैं उनको चिकित्सा या कानूनी सहायता परामर्श के लिए आश्रय जैसी सभी सेवाएं एक ही छत के नीचे प्रदान की जाती हैं वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत। और स्वधार गृह, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही महिलाएं, जैसे तस्करी से बचाई गई महिलाएं या निराश्रित महिलाएं जो हैं उन्हें संस्थागत सहायता और सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था जो है इस योजना के तहत जो है वो की जाती है
4: जी। और देखिए, महिला हेल्पलाइन संकट में फंसी महिलाओं को 24 घंटे तत्काल सहायता, काउंसलिंग और बचाव वाहन जैसी सेवाएँ प्रदान करने के लिए 1-8-1
3: पे लिखिए वो
4: कार्यशील है। और ये इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी और आवेदन जो है वो आप इंटरनेट के माध्यम से और भी विस्तार से ले सकते हैं
3: जी। ये देखिए, राष्ट्रीय आपातकालीन जो आपातकालीन नंबर हैं 112 और 181 महिला हेल्पलाइन नंबर, इन पर सहायता जो है प्राप्त की जा सकती है। और 24 घंटे चलने वाली एक टोल फ्री सेवा है 181। तो किसी भी तरह का घरेलू हिंसा, उत्पीड़न या संकट पर फंसी महिला जो है इस नंबर पर कॉल कर सकती है। यह पुलिस सहायता, एम्बुलेंस, चिकित्सा सुविधा या कानूनी परामर्श जो है आपको वन स्टॉप सेंटर से जोड़ती है
4: जी। हाँ, और दूसरी कि ये पूरे भारत में किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए सिंगल नंबर है, जैसे पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, इन सब के लिए ये सिंगल नंबर है 112
3: जी।
4: और इसका लाभ कि अगर बात करें तो संकट के समय में पुलिस की त्वरित सहायता प्राप्त करने के लिए ये सबसे बेहतरीन नंबर है
3: जी।
4: और महिला, राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन नंबर है 1440। ये सुविधा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं को सुरक्षा, मार्गदर्शन और तत्काल सहायता देने के लिए 24 घंटे और 7 दिन संचालित है। और इसके जरिए महिलाएं हिंसा से जुड़ी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं, जिन्हें डिजिटल माध्यम से ट्रैक भी किया जा सकता है।
3: और महिला पुलिस हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो ये है 1091। और यह नंबर भी सीधे महिला पुलिस थानों या स्थानीय पुलिस स्टेशन में महिला सेल में कॉल को कनेक्ट करता है और पुलिस जो है त्वरित आपको सहायता प्रदान करती है। इसे सीधे 112 से भी लिंक किया जा सकता है। और बच्चों की बात करें तो उनके लिए भी विशेष हेल्पलाइन नंबर चलाए गए हैं 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं और बच्चों के बचाव के लिए 1098 जो नंबर है वो टोल फ्री चाइल्ड लाइन नंबर है, जो भी 24 घंटे चलने वाला एक नंबर है। तो होता क्या है कि ये योजनाएं जो हैं सरकार के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई गई हैं, इस तरह के नंबर बनाए गए हैं, इनका उद्देश्य यही है कि महिलाओं का विकास किया जाए, उन्हें एक नेतृत्वकर्ता बनाया जाए। अगर किसी मुसीबत में वो फंस गई हैं तो वो अपना बचाव कर पाएं। इस तरह के नंबर हैं कि कहीं से वो ये नंबर डायल करके जो है एकदम से सहायता जो है वो ले सकती हैं
4: जी हाँ,
3: बदलते दौर में बहुत कुछ बदला है और हम आए दिन देख रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो अपना बचाव करना जो है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और सरकार जो है कई इस तरह के कदम उठा रही है जिससे महिलाओं का उत्थान और सशक्तिकरण हो सके
4: जी, और वो मतलब निडर हो के अपने कार्य को कर सके। और देखिए किसी भी तरीके की जब महिलाओं की बात आती है तो एक मन में डर सा भी रहता है, लेकिन सरकार द्वारा चलाई गई ये योजनाएं इसीलिए हैं ताकि महिलाएं अपना काम जो है वो निडर होके कर सकें। और
3: अगर कुछ इस तरह की घटना का वो शिकार हो रही हैं तो तुरंत इन हेल्पलाइन नंबर्स पे वो
4: मदद ले सकती
3: जी कर सकती हैं और मदद ले सकती हैं। तो यही चीज़ें हैं जो हमारी सखियों को जागरूक बनाती हैं, हमें इन नंबरों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। या कोई आपके आसपास ऐसी कोई सखी है जो इस तरह की समस्याओं का शिकार हो रही है तो उन्हें उनके साथ भी ये जानकारी साझा करें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने, क्योंकि 21वीं सदी की आप नारी हैं। तो इन सारी जो सरकार द्वारा योजनाएँ चलाई गई हैं, जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उनका लाभ लें
4: जी।
3: जी तो कार्यक्रम में अस्मिता और भी बातें और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हम अपनी सखियों के साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां साझा कर रहे हैं कार्यक्रम में एक और गीत।
4: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी हमीरपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं सखियों का पसंदीदा कार्यक्रम वनिता मंडल, और कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम अपने सखियों के साथ साझा कर रहे हैं। अब बात करेंगे अस्मिता ट्रैकिंग के बारे में, क्योंकि इस तरह का अब महीना शुरू हो गया है, बहुत सारे लोग ट्रैकिंग पे निकल रहे हैं और हिमाचल की खूबसूरत वादियों में बहुत सारे लोग घूमने आ रहे हैं। ट्रैकिंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रैकिंग पर जाते समय अपनी सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप किसी भी अनहोनी से बच सकें।
4: जी हाँ, देखिए ट्रैकिंग की बात करें प्रीति, तो ट्रैकिंग क्या होती है? ट्रैकिंग होती है कोई प्राकृतिक मार्ग हो गया, पहाड़ी क्षेत्र जैसे जंगल
3: जी,
4: या ऐसे रास्तों पर पैदल यात्रा करने को हम ट्रैकिंग कहते हैं। और ये केवल घूमना फिरना नहीं होता, बल्कि धैर्य, शारीरिक क्षमता और मानसिक दृढ़ता की भी परीक्षा होती है।
3: जी, ये बहुत ही सही बात अस्मिता जी आपने कही कि देखिए बहुत सारी चीजों अनुभवों को, ये नहीं कि हम एक बार रोमांचित हो जाते हैं कि ट्रैकिंग पर जा रहे हैं, इसमें आप शारीरिक तौर पर कितने फिट हैं, मानसिक दृढ़ता कितनी है उस ट्रैक को पूरा करने की, सारी ही बातें जो हैं इन चीज़ों में आती हैं। कई बार हम एकदम से कुछ चीज़ ऐसी देखते हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और
4: एकदम से निकल जाते
3: हैं कि नहीं जाना है हमने, तो देखिए जोश के साथ थोड़ा सा उस चीज के बारे में होश भी रखना है कि उस चीज के बारे में स्टीक जानकारी आपको हो, वहां का स्थानीय मौसम कैसा रहता है, स्थानीय गाइड अपने साथ में लेकर जाएं, अपनी मेडिकल किट को ले जाना ना भूलें, इसके अलावा उस ट्रैक के बारे में आपको पूरी जानकारी जो है उसके बारे में हासिल करें, और साथ ही साथ अपने परिवार को भी उस रूट की जानकारी दें, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं भी इस ट्रैकिंग के दौरान हो जाती हैं। तो पहाड़ों में सुरक्षित और यादगार ट्रैकिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ख्याल रखना जो है वो बहुत जरूरी है।
4: जी हाँ, सबसे पहले देखिए प्रीति, ट्रैकिंग पर जाने से पहले पूरी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी भी ट्रैक पर जाने से पहले उस स्थान के बारे में जानकारी जुटाना ज़रूरी है, वहाँ का मौसम कैसा है, रास्ता कितना कठिन है, कितनी ऊंचाई पर जाना है और कितना समय लगेगा, इन सभी बातों की जानकारी पहले से रखनी चाहिए
3: जी।
4: और अचानक मौसम बदलने की स्थिति में क्या करना है इसकी भी योजना बनाकर रखनी चाहिए।
3: बिल्कुल, देखिए लोकल अपडेट आप ले सकते हैं ट्रैक शुरू करने से पहले, स्थानीय लोगों या फिर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उससे आप मौसम या रास्ते के हाल के बारे में जानकारी ले सकते हैं, बर्फबारी या भूस्खलन की जानकारी हासिल की जा सकती है। जब भी आप किसी नए या कठिन ट्रैक पर जा रहे हैं तो हमेशा एक रजिस्टर्ड और एक स्थानीय गाइड अपने साथ ज़रूर लें
4: जी। और साथ ही साथ ट्रैकिंग में सबसे ज़रूरी होता है जूतों का होना
3: जी।
4: फिसलन वाले या सामान्य जूते पहनकर ट्रैक पर जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए मजबूत ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज़ ही पहनने चाहिए, और नए जूतों को सीधे ट्रैक पर कभी ना पहने। अतिरिक्त जो जैसे सॉक्स होते हैं उनके पेयर्स भी अपने साथ ज़रूर रखें, और ये भी ध्यान रखना है प्रीति कि हल्का लेकिन ज़रूरी सामान रखें
3: जी।

0: कोट, जैकेट, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ और हमारा पहचान पत्र ज़रूर रखें।
1: जी, और अपनी रेगुलर दवाइयाँ जो अगर कोई आप खा रहे हैं वो
0: जी
1: भी अपने फर्स्ट एड किट में रखें। हाइपरथर्मिया से बचें चाहे मौसम कैसा भी हो, लेकिन जब आप ट्रैकिंग करने निकलते हैं पहाड़ों पर तो हमेशा पर्याप्त गर्म कपड़े लेयर्स में रख लें ताकि ठंड से जो है आपका बचाव हो सके।
0: जी
1: और खान पान की बात करें तो हाइड्रेट रहें, पानी हमेशा पर्याप्त मात्रा में पीते रहें, एनर्जी फूड अपने साथ रख सकते हैं, नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए जैसे आपने
0: जी
1: बात करी, और शूज़ की बात करी उनका भी सही चुनाव करना है क्योंकि पैर टांगे आपकी आपने चढ़ना है लेकिन नीचे आपने किस तरह
0: ग्रिप, ऐसी शूज़
1: के।
0: लेने हैं
1: जी
0: जिनकी ग्रिप अच्छी हो, क्योंकि जब पहाड़ नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो पूरा सपोर्ट पीछे की तरफ होता है, तो
1: जी
0: ऐसे शूज़ हमें ग्रिप देने में हेल्पफुल होते हैं ना।
1: जी और पहाड़ ऐसी जगह है जहाँ जब आप ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं कई बार होता है कम्युनिकेशन की समस्या होती है, नेटवर्क नहीं होता है, तो अपने फ़ोन को पूरा चार्ज रखें, पावर बैंक साथ में रखें, और जब भी आप घर से निकलते हैं तो उसके बारे में पूरा अपने परिवार को बता के जाएं। और ट्रैकिंग पे जाने के लिए वही बेस्ट होता है कि आप एक ग्रुप साथ में जाए,
0: जी
1: तो अगर किसी भी तरह की समस्या है, किसी को कोई समस्या हो जाती है तो एक दूसरे को देखा जा सकता है, अगर आप अकेले हैं तो फिर थोड़ी समस्या हो
0: हाँ,
1: जाती है।
0: और साथ ही साथ प्रीति, कई बार लोग दूसरों को देखकर कठिन ट्रैक चुन तो लेते हैं जिससे उन्हें परेशानी का सामना भी कई बार करना पड़ता है।
1: जी बिल्कुल,
0: और
1: क्योंकि देखिए वही
0: हाँ
1: बात है ना सुमिता कि ट्रैक हैं,
0: हाँ
1: पहाड़ी रास्ते हैं, ऊपर खाबड़ होते हैं, चढ़ाई होती है, बेहद मुश्किल होती है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहले आसान से एक छोटा
0: हाँ
1: सा ट्रैक करें, फिर अगर आपको लगता है आप
0: नहीं कर सकते हैं तो
1: तो फिर
0: धीरे
1: अगली बार
0: धीरे,
1: आप तो
0: हाँ
1: किसी कठिन ट्रैक पर जा
0: मतलब
1: सकते हैं।
0: शुरुआत आसान ट्रैक से करनी है, ना कि कठिन ट्रैक से।
1: जी
0: और साथ ही साथ जैसे कि आपने कहा, अकेले ट्रैकिंग से भी बचना है क्योंकि कई बार परिस्थिति ऐसी हमारे अनुकूल नहीं रहती, तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे साथ हमारा ग्रुप होगा या साथ के कोई होगा तो ऐसी स्थिति में वो हमारा मतलब ध्यान जो है वो ऐसी चीज सिचुएशंस पे रख लेते हैं।
1: जी जी
0: और ऊंचाई पर होने वाली समस्याओं से भी सावधान रहना
1: जी जी जी
0: है ना।
1: हाँ जी
0: और जैसे कि आपने कहा, मोबाइल नेटवर्क का और स्थानीय लोगों की गाइडलाइन भी ज़रूर साथ में लेनी है। और देखिए प्रीति, बातें अभी बहुत सारी हैं लेकिन अब घड़ी की सुइयां भी हमें इशारा कर रही हैं कि अपनी बातों को यहाँ पर हमें विराम देना
1: जी
0: चाहिए।
1: बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी, अगर सच में आप घूमने का सोच रहे हैं तो घूमिए, ये पहाड़ घूमने के लिए ही बने हैं, लेकिन वो है कि अपनी सुरक्षा सबसे पहले है, इस चीज़ का ख्याल रखिए और इन सब जानकारियों को आप अपने जीवन में अपनाइए, आपके काम आएंगी। तो सखियों, इन्हीं जानकारियों के साथ अब आज का एक कार्यक्रम वनिता मंडल अब यहीं सम्पन्न होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: वनिता मंडल।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के ठीक 12:30 हो चुके हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हमसफर प्रीति, लेकर आई हूं आपके मनोरंजन के लिए कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सत्यमेव जयते फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है बी प्राक ने। आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे।

आकाशवाणी हमीरपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म यारियां 2 से, और इस गीत को गाया है स्टेट टंडन ने।

जहां तक तुम हो वहीं तक है सफर मेरा। तू बस कह दे मिलेंगे कभी, इंतजार तो हम सारी उम्र कर लेंगे।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पुष्पा द राइज से, और इस गीत को गाया है जावेद अली ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बज चुका है। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

सुरीला सफर ये कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आज आपके साथ नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, आज के सुरीला सफर इस कार्यक्रम की पोस्ट फेसबुक पर काफी पहले आ चुकी है।

आप सभी के कमेंट्स भी आना शुरू हो ही गए हैं। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। आज की इबारत को आपने पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साथियों, एक बार आज की जो इबारत है उसे फिर पढ़ देते हैं। हो सकता है कि आज हमारे कुछ साथी हैं जो फेसबुक पर नहीं जुड़ पाए हों, तो उनके लिए हम एक बार इबारत पढ़ देते हैं। आज की इबारत है, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है, पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती हैं। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारे रोजमर्रा के बीच ही छुपी होती है। बस थोड़ा रुककर उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो साथियों, आज की ये इबारत थी। आप सभी ने जिन्होंने इस इबारत को पढ़ा है पसंद किया है, और कई श्रोताओं ने हमें उनके गाने भी लिख भेजे हैं। तो चलिए देखते हैं, सफ़र शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी पसंद के और आपने पहचाने हुए कितने गाने आज की इस लिस्ट में बजने वाले हैं। तो आइए आगाज़ कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है अमित खन्ना ने, बप्पी लाहिड़ी का संगीत, फिल्म का नाम चलते चलते।

तो साथियों, इस गीत में जो शब्द था वो था कभी कभी, आपने पहचान ही लिया होगा। और हमारे एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत मेरी ज़िंदगी के बहुत करीब है। इसे इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ फिल्मों के संवाद मेरे दिल में घर कर गए हैं और मेरी ज़िंदगी की दिशा और दशा निर्देशित करते हैं। पहला संवाद फिल्म आनंद का ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। दूसरा फिल्म बावर्ची का, अक्सर हम बड़ी बड़ी खुशियों की खोज में छोटी छोटी खुशियों के पल जो बहुत ज़्यादा होते हैं उन्हें गंवा देते हैं। मैं लोगों से प्यार से मिलता हूँ और जहाँ तक हो सके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करता हूँ। फिल्म बावर्ची का एक और संवाद, अपना काम तो सभी करते हैं, कभी दूसरों का काम करके देखिए कितनी खुशी मिलती है। साथ ही एक साथी ने लिखा है, सच कहें आज की इबारत हमें बिल्कुल अपनी सी लगी, क्योंकि छोटी खुशियों को लेकर आई है। छोटी छोटी खुशियों के मायने बहुत बड़े होते हैं, बस हम इन्हें देख नहीं पाते। हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, बस शायद दिखावा करना चाहते हैं, पर हम तो छोटी छोटी सादगी भरी बातों से ही खुश रहते हैं, बस उसमें अपनापन हो। अब देखो ना, कल थोड़ी बारिश हुई, हमने उसे बड़े ध्यान से देखा। जब पानी की बूंदें पौधों पर पड़ी तो पौधों की धूल साफ हो गई, ये देखकर हम खुश हो गए। फिर हम ये भूल गए कि बारिश से बाकी पूरा सब जगह खराब भी तो हो गया। बात तो सही है, बारिश जब आती है तो खुशियों की फुहार लेकर आती है। चलिए इसी के साथ सुनते हैं भूपिंदर सिंह और अनुराधा का गाया ये गीत दूरियां, इस फिल्म से सुदर्शन फकीर की रचना और जयदेव का संगीत।

हमारी इबारत से लिया गया इस गीत में जो शब्द था वो था जिंदगी। एक साथी ने लिखा है, जब कभी सुबह की सैर के वक्त किसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी सांसों को आता जाता महसूस करना, पक्षियों की चहचहाट को सुनना असीम खुशी और शांति दे जाता है। प्रकृति कितना कुछ सिखा जाती है कि खुशी किसी के पीछे भागने में नहीं बल्कि ठहराव में है, हर पल को महसूस करने में है। एक साथी ने लिखा है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि कमेंट करूं या ना करूं, ऐसा क्यों भाई? अब इसका जवाब भी आप दे ही दीजिए अगले कमेंट में। खैर आगे बढ़ते हैं। एक साथी ने, उन्हें 12 बजे का कार्यक्रम पसंद आया उसके बारे में लिखा है। एक साथी ने लिखा है, हमारे भोपाल में 2-3 दिन से बादल और सूरज की लुका छिपी चल रही है। हल्का फुल्का पानी भी आ जाता है लेकिन सूरज की तपिश से कुछ तो राहत मिल गई है। अब देखिए किस तरह समय बदलता है और जज्बात भी उसके साथ बदल जाते हैं। आज जब सूरज की गर्मी के बीच हल्का फुल्का पानी आता है तो वो ठंडक अच्छी लगती है। यही हल्का फुल्का पानी जब भारी भरकम भरकम बारिश में बदल जाता है और जब कई दिनों तक गहरे बादल छाए रहते हैं, घने बादल छाए रहते हैं, तब जब हल्की सी वो धूप की एक किरण आती है ना, वो भी खुशी दे जाती है और तब हमें लगता है कि अरे सूरज दादा दर्शन तो दे दो। बिल्कुल सही कहा ना, ऐसा ही लगता है ना। तो चलिए इसी के साथ अगला गीत आपको सुनवाते हैं, देखते हैं कितने हमारे आज के श्रोताओं ने इसे सही पहचाना है। ये गीत है फिल्म शबनम से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, जावेद अख्तर के, जावेद अनवर के बोल और उषा खन्ना का संगीत।

0: शिकन तावा शिकन तावा शिकन।
1: तो सादगी शब्द था इस गीत में जो हमारी इबारत में भी शामिल था और कई साथियों ने सही भी पहचाना। एक साथी लिखते हैं, जीवन का फलसफा बताती क्या खूबसूरत इबारत है आज की। मराठी में कहते हैं, तुझे आहे तुझ पाशी परी तू जागा चुकलासी। हमें मालूम ही नहीं होता कि जीवन के बहुत सारे सुनहरे पल छोटी छोटी बातों में हमारे पास ही छिपे रहते हैं और हम कस्तूरी मृग की तरह कस्तूर की तलाश में दूर दूर भागते रहते हैं। असली खुशी तो आत्मिक समाधान में है जो चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कुराहट ले आती है। इसी के साथ इन्होंने कुछ गीतों की लिस्ट भी लिखी है, बताइएगा यदि इसमें से कोई गीत आता है तो। एक साथी ने लिखा है, अक्सर हम बड़ी खुशियों की प्रतीक्षा में छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन का अधिकांश हिस्सा इन्हीं छोटे सुखद पलों से बना होता है। सुबह की ताज़ी हवा, किसी अपने की मुस्कान, दोस्तों से बातचीत, बारिश की फुहार, चाय की प्याली या किसी की सच्ची प्रशंसा, ये छोटे छोटे पल मन को सुकून और आनंद से भर देते हैं। और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है वो जीवन का वास्तविक आनंद उठा पाता है। एक साथी ने लिखा है, मेरी हर सुबह ईश्वर की प्रार्थना के बाद विविध भारती न्यूज़पेपर और अदरक इलायची दालचीनी वाली चाय के साथ होती है। दिल में खुशी, होठों पर मुस्कान और मीठी जुबान, सभी के लिए प्यार हमेशा मेरे साथ रहता है। और हाँ, जानवरों और पक्षियों को दाना पानी रखना नहीं भूलता। अच्छी बात है, ये हमेशा ही होना चाहिए। अभी तो गर्मी इतनी है कि पक्षियों के लिए पानी दाना रखना एक अच्छी आदत है, ये हम कहेंगे। आइए इसी के साथ, इस जीवन की सफ़र वाली इबारत के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कभी धूप कभी छांव, इस फिल्म का गीत प्रदीप की आवाज़ में। इस गीत की रचना की है प्रदीप ने, चित्रगुप्त का संगीत।

जी हाँ, तो पल वो शब्द था जो इस गीत में चुना गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है, ऊपर वाला पांसा फेंके नीचे चलते दांव, पंक्ति भाग्य और कर्म के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। भगवान या नियति जीवन की परिस्थितियां तय करती हैं। पांसा फेंकना, इंसान धरती पर जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धि और कर्मों से फैसले लेता है। एक साथी ने लिखा है, कभी धूप कभी छांव, आज बादलों की ओट में सूरज भी अटखेलियां सी कर रहा है। कभी धूप खिलखिला रही है तो कभी छांव अपना आंचल लहरा रही है। जी हाँ, यही तो बारिश की धीमी धीमी शुरुआत हो रही है। जब कभी लगता है कि बस अब तो बरसात आने ही वाली है कि जल्दी से सूरज दादा आकर अपने दर्शन दे देते हैं, और जब चिलमिलाती धूप पड़ने लगती है तो कहीं बीच में से ही हल्की सी फुहार आ जाती है। बहरहाल कार्यक्रम का आधा समय हो गया है, और चलिए एक बार हम अपनी जो इबारत है उसे फिर से पढ़ देते हैं। यदि कोई साथी हैं जो फेसबुक पर नहीं है, एक बार फिर अगर सुनना चाहते हैं तो हमारी जो इबारत थी, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती हैं। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारी रोजमर्रा के बीच ही छिपी होती है। बस थोड़ा रुक कर उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो आइए इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में ये गीत फिल्म एहसास।

0: तो ये जो गीत था इसमें छोटे शब्द लिया गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है कि नेहा जी आप सवाल इस तरह से पूछें कि हम बिजी रहें, फिल्म का नाम पूछ सकती हैं, गीतकार पूछ सकती हैं, किस सन में ये फिल्म आई ये पूछ सकती हैं, हम बिजी रहेंगे। आपको लगता है इतने आसान सवाल हम पूछेंगे आपसे? क्योंकि ये सवाल तो कोई भी गूगल बाबा से देखकर, सोशल मीडिया की किसी भी साइट से देखकर जवाब दे सकता है। हमें वो बातें जानने में अच्छा लगता है जो हमें आपसे जानने को मिलती हैं, जो बातें यूनिक होती है आपके बारे में। जैसे कि देखिए, हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि हमारी जो मेड है वो भी आपका प्रोग्राम सुन रही है, उसे जो समझ आया आपका सवाल तो उसका जवाब सुनो। अभी कुछ दिन पहले घर से आते समय उसका मंगलसूत्र कहीं गिर गया, वो बहुत उदास हो गई, पर उसने सबका काम किया और वो वापस गई तो उसका वो मंगलसूत्र मिल गया। उसे जाते समय हमने कहा, एक तो आज तेरा फास्ट है और दूसरा तू हम सबका काम करके जा रही है और तीसरा तुमने किसी का कुछ गलत नहीं किया, तो पक्का तुम्हारी चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। क्या बात है, हमें हमेशा ये लगता है कि देखिए जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। और देखिए आपके साथ हुआ भी, मंगलसूत्र जैसी चीज़ गिरना ना सिर्फ मतलब हमें एक मानसिक पीड़ा देता है, ये हमारे एक संपदा का भी नुकसान होता है, लेकिन देखिए आपको मिल भी गया। तो कभी-कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, सोचते हैं, मगर जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जितना समय हमने चिंता में व्यस्त किया, चिंता में मतलब गवाया, उतना अगर हम उसका जवाब ढूंढने में या हल ढूंढने में निकालते तो शायद परिणाम बेहतर होते। एक साथी ने लिखा है, सुबह की सैर पर जाते हुए और लौटते हुए सब्जी और फलों से भरे ठेले, कहीं फूलों की दुकान, किसी जानवर की अजब गजब हरकतें, फुदकते तरह तरह की चिड़ियाओं को देख कर भी मन बहुत हल्का महसूस करता है। कुछ समय प्रकृति के साथ गुजारना चाहिए, बहुत से दुख दर्द भूल जाते हैं, किसी से हल्की फुल्की बातें करके भी मन हल्का सा हो जाता है। वहीं पर एक साथी लिखते हैं, मराठी लेखक हैं पुल देश पांडे, कहते हैं हमारी उम्र तब तक है जब तक हम लोगों को याद रहते हैं। बस यही बात है, हम पल दो पल के मेहमान हैं फिर भी दिल में जीते रहेंगे। और चलिए इसी के साथ सुनिए बातों बातों में इस फिल्म का गीत अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। अमित खन्ना ने इसे लिखा है, राजेश रोशन का संगीत।
1: उठे सबके कंधे।

0: रम पम पम हंसो और हंसाया करो
1: उठे सबके कदम देखो रम पम पम आज ऐसे गीत गाया करो कभी।

एक साथी लिखते हैं, साधारण जीवन शैली का मतलब पीछे रह जाना नहीं होता, इसका मतलब है शोर कम करके असली आवाज़ को ही सुनना। जब प्लान कम होंगे तो पल ज़्यादा मिलेंगे। छोटी छोटी खुशियाँ वही हैं जिन्हें जिनकी कोई डिमांड नहीं होती। चाय की पहली चुस्की से लेकर पहली बारिश में मिट्टी की वो सौंध ही खुशबू वाली खुशियाँ हम इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर की इच्छा तो बड़ी बड़ी खुशियों के इंतज़ाम में लगी रहती है, पर जिंदगी की बड़ी खुशियों की किश्तों में नहीं आती। जिंदगी की बड़ी खुशियां किश्तों में नहीं आती, वो हर रोज छोटी छोटी खुशियों में ही निहित होती है। और एक साथी ने पहले जो गीत हमने बजाया उसे लेकर लिखा है, जो छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में हैं वो। यही सही है, जिस घर में बीच का भाई या बहन हो उसकी यही मुसीबत होती है। अब आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि आपके इस कमेंट से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप भी घर में बीच वाले भाई हैं या बहन हैं। तो चलिए बताइए, क्या मुसीबत ऐसी होती है जब आप बीच वाले भाई या बहन होते हैं? तब तक सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज़ है, आनंद फिल्म का ये गीत है, योगेश ने इसे लिखा है और सलील चौधरी का संगीत। पिछले गीत का शब्द था खुशी और इस गीत का कहीं दूर।

जैसे कि हमने पूछा था अपने एक साथी से कि बीच के भाई बहनों की क्या समस्या होती है, तो उसके जवाब में साथ एक साथी ने लिखा है, छोटे छोटे कामों के लिए हम बड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े कामों के लिए हम छोटे होते हैं। जैसा जी चाहे घर वाले हमारा उपयोग कर लेते हैं। आपकी ये बात पढ़कर बड़ी हंसी आई मुझे, और सही कहा आपने कि होता है ऐसा। इवन एक उम्र ऐसी आती भी है जब हम अगर कुछ बच्चों जैसी हरकत करें तो डांट पड़ जाती है कि अब इतने छोटे हो क्या, और अगर कोई बड़ों के बीच में कोई बात कर ले तो तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि बड़ों में बात करो, ये भी हो जाता है। तो ये तो सब बातें होनी ही है। एक साथी ने लिखा है, हमने कई बार ऐसे कई काम देखे हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। एक बार हम गुरुजी के प्रोग्राम में नागपुर जा रहे थे और इतनी तेज बारिश की गाड़ी से जाना मुश्किल था स्टेशन तक। उधर ट्रेन राइट टाइम, जो हमारी दोस्त स्टेशन पहुंच गई थी उसने कहा ट्रेन चलने वाली है, हम अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि अब आप ही हमें पहुंचाएंगे। वो हम कैसे पहुंचे नहीं पता, हम अंदर गए, हमारे सामने ही ट्रेन का डिब्बा और हम ऊपर चढ़े और ट्रेन चल दी। अब इसे क्या कहेंगे नहीं पता। जी हाँ, कभी कभी होता है कि हमें लगता है अब तो ये काम संभव ही नहीं है, लेकिन किसी तरह कोई चमत्कार हो जाता है और असंभव काम संभव हो जाता है। एक साथी ने लिखा है, किसी भी काम और परेशानी में चिंतन करना करना ही समझदारी है। चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। बिल्कुल सही आपने कहा। और लीजिए अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की, गुलजार के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, बीच वाले भाई या बहन को बड़ा भाई या बहन दोनों की सुननी पड़ती है। सब कहते हैं वो बड़ा है और वो तुमसे छोटा है, बेचारा चक्की में पिस जाता है। एक साथी ने लिखा, बचपन में एक कहानी या वाकया सुना था कि एक व्यक्ति बहुत टाइट जूते पहनकर बाहर जाया करते थे। घर आकर जब जूते उतारते थे तो उनको बहुत आराम महसूस तब वो बहुत आराम महसूस करते थे। लोगों ने सलाह दी कि थोड़े ढीले जूते पहने, तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि जीवन में कोई सुख नहीं है, जब मैं जूते उतारता हूँ तो बहुत सुख महसूस करता हूँ। देखिए, किसी के लिए कोई बात कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। शायद हमारे लिए वो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो किसी के लिए कितना सुकून देने वाली बात हो सकती है। आज का जो सुरीला सफ़र का कार्यक्रम है, हमें संपन्न करना होगा क्योंकि समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा। बस इतना ही कहेंगे कि आज की इस संगीत यात्रा में हमने उन छोटे छोटे एहसासों को छूने की कोशिश की जो अक्सर भागती दौड़ती ज़िंदगी में नज़रअंदाज हो जाते हैं। उम्मीद है कि इन गीतों ने आपके मन में कुछ मीठी यादें और कुछ सुकून भरे पल ज़रूर जगाए होंगे। चलते चलते बस इतना याद रखिए, ज़िंदगी की असली रौनक बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उन लम्हों में होती है जिन्हें हम दिल से जीते हैं। दीजिए इजाज़त नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

0: और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियान पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियान, फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
4: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
1: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
5: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
1: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
6: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में पांचवा गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना

0: गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान। तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
2: कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुरैया के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम दिल लगी, शकील बदायूनी की रचना है, नौशाद अली का संगीत।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विद्यार्थी फिल्म का गीत अब सुनिए मोहम्मद रफी और उषा तिमोथी की आवाज में। मधुकर बिहारी ने इसे लिखा है और बाबू सिंह का संगीत।

जिंदगी और मौत इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे महेंद्र कपूर की आवाज में, शकील बदायूनी की रचना और सी रामचंद्र का संगीत। आज के सदाबहार नगमे से इस गीत के साथ ही इजाजत दीजिए नेहा गरकर देसाई को, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है फिल्म बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एनडीए सरकार को उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करने का सौभाग्य प्राप्त है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अवसरों की सुगम पहुंच, बेहतर बुनियादी ढांचा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहर सहित सार्वजनिक सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आज नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को आज पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कांगड़ा जिला को छोड़कर सभी 11 जिलों में शपथ समारोह आयोजित किए गए। कांगड़ा में 18 जून को शपथ दिलाई जाएगी। शिमला में 441 पंचायतों के प्रधानों व उप प्रधानों को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विशेष रूप से मौजूद रहकर नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान के तहत विशेष शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों से अपने अपने क्षेत्रों में नशे के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाते हुए युवाओं को जागरूक करने और नशीली दवाओं की बिक्री व सेवन पर रोक लगाने में सहयोग देने का आह्वान किया। प्रदेश के अन्य जिलों में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाई। सोलन में हुए समारोह में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जन प्रतिनिधियों से ईमानदारी से सभी कार्य पूरा करने का आह्वान किया। नाहन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा और विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी।
1: हमने प्रधानों को कहा है कि जिस जिम्मेवारी और विश्वास से वहाँ की आपके पंचायत की जनता ने आपको चुना है, उस पे आप खरे उतरेंगे और जो विकास का पैसा आपकी पंचायतों में आएगा उसका एक एक नए पैसे का सदुपयोग होगा और जो पात्र व्यक्ति है, जो हमारा गांव में सबसे निम्न स्तर पे जो व्यक्ति है जिसको सबसे अधिक जरूरत है उसका ख्याल रखा जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
0: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना, कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कुल्लू, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रिकांगपियो, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मंडी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर, जबकि आयुष मंत्री यादविंदर गोमा ने हमीरपुर में शपथ दिलाई। प्रदेश भर में संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए आज मॉक ड्रिल करवाई गई। इस मेगा मॉक ड्रिल के दौरान आपदा प्रबंधन के लिए प्रशासनिक व राहत एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लिया गया। सभी जिलों में स्थानीय प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड और अन्य आपदा प्रबंधन एजेंसियों के सहयोग से मॉक ड्रिल हुई। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा के 7 उपमंडलों में मॉक ड्रिल करवाई गई। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी शिल्पी बेगटा ने बताया कि ऐसे अभ्यासों से विभिन्न एजेंसियों के बीच मौजूद कमियों और समन्वय संबंधी चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलती है, जिससे भविष्य में आपदा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
2: मॉक ड्रिल हम इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी एजेंसीज कितनी क्विक हैं रिएक्ट करने में और रिस्पांस करने में। सबसे जरूरी इस बात का आंकलन रहता है कि हमारी लोकल पुलिस फोर्स, होमगार्ड और सब डिवीजन लेवल प्रशासन कितने जल्दी उसमें रिस्पांस देते हैं। जब हम असल में ये ड्रिल्स करते हैं हमें पता चलता है कि क्या गैप्स हैं, कोऑर्डिनेशन में क्या क्या कमियां हैं और उसको कैसे पूरा किया जाए।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने की सलाह दी है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने का परामर्श दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवा पीढ़ी से नशे से दूर रहकर खेल गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया है। शिमला में कल शाम क्रिकेट कार्निवाल 2026 के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि नशा छोड़ो खेल खेलो का नारा वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को चिट्टे व अन्य नशों से दूर रहने और खेलों को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की शपथ दिलाई।
3: मैं सभी डिप्टी कमिश्नर्स एसपीज को और जिला के अधिकारी है उनको ये निर्देश दिए हैं कि वो स्कूलों में जाएं और जागरूक करें ताकि चिट्टे के जो सप्लायर है जो इसमें लत में डालना चाहते हैं उससे युवा पीढ़ी को जागरूक किया जाए। मेरा ये विश्वास है कि हम जल्दी ही प्रदेश में इस प्रकार के जो चिट्टे के सप्लायर है उनको तो ध्वस्त करेंगे ही और अपने समाज को भी चिट्टा मुक्त समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचार के बाद आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है मोदी सरकार के 12 साल, वैश्विक संकटों के बीच खाद्य उत्पादन में भारत ने गढ़े सफलता के कीर्तिमान। वाचक स्वर है प्रभाष शर्मा का।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के उर्वरक क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति आई है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय का उर्वरक विभाग भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ प्रभावी कदम उठा रहा है। इन्हीं कदमों ने वैश्विक स्तर पर आए बड़े संकटों से हमारे अन्नदाताओं को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों और हमलों के कारण पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चरमरा गई। प्राकृतिक गैस और अमोनिया जैसे कच्चे माल की भारी किल्लत हो गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद के दाम आसमान छूने लगे। लेकिन भारत सरकार ने शुरुआत से ही युद्ध स्तर पर काम करते हुए हॉर्मुज जल डमरू मध्य के वैकल्पिक रास्ते तलाशे और दुनिया भर के उत्पादकों से सीधा संपर्क बनाकर देश में खाद की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की। वर्ष 2014 में सरकार बनने के बाद से विदेशी निर्भरता को कम करने और घरेलू उद्योगों को मजबूत करने के लिए ठोस नीतियां बनाई गई। पिछले 12 वर्षों में देश के भीतर 6 नए आधुनिक यूरिया प्लांट्स स्थापित किए गए हैं जिससे हर साल उत्पादन में 76.2 लाख मीट्रिक टन की शानदार बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में 25.4 लाख मीट्रिक टन सालाना क्षमता वाले दो और नए यूरिया प्लांट्स चालू होने के लिए तैयार हैं। वर्ष 2014-15 में जहां देश का यूरिया उत्पादन केवल 225 लाख मीट्रिक टन था, वहीं वर्ष 2023-24 में ये बढ़कर 314.7 लाख मीट्रिक टन के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। साल 2024-25 में भी देश ने 306.67 लाख मीट्रिक टन का मजबूत उत्पादन दर्ज किया है। फास्फोरस और पोटेशियम उर्वरकों का उत्पादन साल 2014-15 के 159.54 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 211.22 लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां लगातार नए और अत्याधुनिक प्लांट लगाने की दिशा में काम कर रही हैं। खाद्य उत्पादन और खपत के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी देशों में से एक है। यूरिया और अन्य खादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निरंतर प्रयास किए गए हैं जिससे भारत खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित कर सका है। भारत उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए देश में 6 नई बड़ी यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनसे उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि हुई है। यूरिया के अलावा डीएपी, एनपीके और एसएसपी जैसी खादों का उत्पादन भी देश में रिकॉर्ड स्तर पर किया जा रहा है। भारत में पोटाश के ज्ञात प्राकृतिक भंडार लगभग ना के बराबर है और कच्चे माल की उपलब्धता के लिए देश काफी हद तक आयात पर निर्भर रहता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए विदेशों में दीर्घकालिक समझौते किए गए हैं। आगामी खरीफ सीजन के लिए केंद्र सरकार ने पहले से ही चाक चौबंद तैयारियां कर ली हैं। कृषि व किसान कल्याण विभाग ने खरीफ 2026 के लिए कुल 383.9 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। इसके मुकाबले सरकार के पास मौजूदा वक्त में लगभग 195.79 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक मौजूद है। आमतौर पर सिर्फ 33% स्टॉक बफर के रूप में रहता था, जहां आज भारत 51% से अधिक के अग्रिम भंडार के साथ मजबूत स्थिति में है। वैश्विक संकट के बाद भी देश का घरेलू उत्पादन 118.15 लाख मीट्रिक टन रहा। अगर इसमें आयात को भी जोड़ दिया जाए तो संकट के बाद से अब तक देश में खाद की कुल उपलब्धता में लगभग 153.79 लाख मीट्रिक टन की भारी बढ़ोतरी हुई है।
6: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
7: कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
8: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना
9: मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी।

0: खाद की कुल उपलब्धता में लगभग 153.79 लाख मीट्रिक टन की भारी बढ़ोतरी हुई है।
1: विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
2: कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना
4: मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है, पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। शीतला ने उसे रोका नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
1: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग।
4: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानी और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट ही से चला करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप, 4 प्राणियों का खर्च था। नाथित भी आते ही रहते थे। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। प्रातःकाल से कलह आरंभ हो जाता। समदिन समदिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत ना आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सुहाती करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों ही के हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन। शीतला की माँ कहती, 4 दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं। सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी और पीसते क्यों जान निकलती है। विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते।

0: सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती हैं। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। मां और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था। पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने ही द्वार पर खड़ा हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वो इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। मुसीबत में, चित्त की उद्विग्नता में, इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गईं। वो झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिया। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी।
1: ओ शीतला, शीतला, क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वो अब संसार में ही ना हो।
0: किंतु वो इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हूं। अंत को लालसा की कपटलीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए। मन में तर्क किया,
1: ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। ओ शीतला, आ ये मनोहर छवि, ये अनुपम सौंदर्य। शीतला, ये प्राण और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा, हंसे, महापाप है, हो, कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता, वो मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल सिंह मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है पता नहीं। शीतला, ओ शीतला।
0: अकस्मात वो ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानी से उनकी आंखें भर आईं। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे, फिर विजय ध्वनि से कह उठे,
2: कितना सरल है, इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही यह सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला, बहन, मैं तेरा भाई हूं।
0: उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
1: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी, मैं कोई गैर न था। मुझे इसका दुख

0: खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट ना होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं।
1: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
2: कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी के

0: अरे बेटा, तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे क्या पर्दा है? ये महारानी तो बस देखने की ही गुलाब की फूल है, अंदर सब काटे हैं। अरे अपने बनाव सिंगार के आगे विमल की बात ही ना पूछती थी ये। बेचारा वो तो इस पे जान छिड़कता था, पर इसका मुंह ही सीधा नहीं होता था। और प्रेम, प्रेम तो इससे छू ही नहीं गया। अंत को उसे देश से निकाल कर ही दम लिया इसने। हाँ,
1: क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना तो मर्दों का काम ही है।
2: यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहर से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो।
1: जिनके भाग्य में लिखा है वो यही सोने में लदी हुई है। मेरी तरह सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं।
3: सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला के मुख कांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायित है। बोले,
2: अच्छा बाबा, मैं बनवा दूंगा गहने तुम्हें।
3: ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूं।
4: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है इसके लिए सुनिए अगले सोमवार को कथा सुधा का अगला अंक।
5: सोनाली जी, कमेंट्स पढ़कर पता चल रहा है कि कथा सुधा की आज की कहानी सभी को पसंद आई है।
6: हमको भी पसंद आई, आपको भी पसंद
5: और
6: आई।
5: और इंतजार रहेगा इसके अगले भाग का
6: जी।
5: लेकिन बीच में गीत सुन लिया जाए
6: तो सुनते हैं एक गाना।

0: नेहा, प्यार कुछ ऐसी ही चीज़ है ना, प्यार कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, कि जो हम देते हैं ना तो सामने से हमें बिल्कुल मिलता ही है वो प्यार,
1: हाँ,
0: है ना?
1: और दुगना होके मिलता है।
0: बिल्कुल दुगना क्या, चौगुना, आठ गुना होके मिलता है, क्योंकि हर इंसान को सिर्फ प्यार की, स्नेह की, यानी अच्छी बातों की इच्छा होती है ना।
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, अब कार्यक्रम में एक अंतराल ले लें।
0: बिल्कुल लेते हैं।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है
1: सखी
0: सहेली।
1: सहेली।
0: और जैसे प्रेम स्नेह की बात चली थी, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए।
1: बिल्कुल, प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए।
0: उन्हें वक्त दिया जाए,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि उस उम्र में आके उन्हें ना नए कपड़े, या फिर ना घूमना फिरना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे हम लोगों को, जैसे घड़ियाँ या बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें, उन्हें किसी चीज़ से लगाव नहीं होता है। उन्हें सिर्फ इच्छा होती है कि उनके साथ में 2-4 पल सुकून के साथ कोई बैठे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि उनके कानों से कम सुनाई देता है, आँखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
1: जी,
0: तो
1: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा दिए। हम देखते हैं ना सोनाली जी, कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। वो हमें तब समझ नहीं आता, हम जब छोटे होते हैं तब हमें वो उतना जान नहीं पड़ता, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और आज वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें हमारी जरूरत है। बुजुर्ग परिवार की वो मजबूत नींव होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी रहती है। उनके पास जीवन का लंबा अनुभव, संघर्षों की कहानियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल सीख होती है।
0: लेकिन क्या होता है ना नेहा, कि बदलती जीवन शैली, व्यस्तता और कई सामाजिक कारणों से कुछ बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं। और इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर आप
1: बिल्कुल
0: जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाएं, तो ये भी एक दुर्व्यवहार में ही गिना जाएगा।
1: अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी, कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज, हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं, तो तीसरी चौथी बार में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम छोटे थे और उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी, तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं
0: या
1: उनकी।
0: फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन्हें

0: प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना, उस वक्त हम थोड़ी देर अपना काम कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ वक्त बिताएंगे, तो उस वक्त आप फिर सवाल ना पूछे या फिर क्योंकि क्या होता, उन्हें नहीं पता होता, वो अपने बच्चों को अपने छोटे बच्चों जैसे ही समझते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे तो क्या मूवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं। तो उन्हें प्यार से भी समझा के परिस्थिति को संभाला जा सकता है।
1: और सोनाली जी, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही, ये ना सिर्फ बुजुर्गों के साथ होता है बल्कि ये हमारे साथ भी होता है। कभी अगर हम मोबाइल लेकर बैठे हैं तो हमारे मम्मी पापा को भी लगता है कि गेम खेल रही है या पढ़ाई कर रही है, पता नहीं। अब उन्हें पता नहीं है, हो सकता है वो बेचारे सोचेंगे कि नहीं अभी अभी इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पढ़ रही है फोन पर, पता चलता है गेम खेल रही। तो वही बुजुर्गों के साथ भी होता है, उन्हें नहीं समझ आता होगा कि अब फोन लेकर या लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या
0: ये
1: कुछ काम
0: सचमुच
1: का कर
0: काम कर
1: रहे
0: रहे
1: हैं।
0: हैं।
1: ऐसा हो जाता है। उनकी बुजुर्गों की जो जरूरतें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और भावनाओं को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका अपमान करना, कठोर शब्द बोलना या फिर उन्हें अकेला महसूस कराना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है।
0: बिल्कुल सही नहीं है कि कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा परिवार जो है हंस रहा है, खिलखिला रहा है, और अम्मा को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई है। ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है नेहा,

0: बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है, कभी तो वो जो अकेलापन होता है वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है। तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अब हमें क्या करना चाहिए नेहा?
1: एक गीत सुनना चाहिए,
0: हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारी दादी अम्मा तो उन्हें गाना गा के मना भी लेना चाहिए।
1: बिल्कुल मना लेते हैं।

0: दादी को तो मनाना ही पड़ता है, क्योंकि पहले हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, फिर बुरा लग जाता है, तो मनाना पड़ता है।
1: और ऐसे अगर गा के दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से
0: खुश
1: मान
0: हो
1: भी जाएंगी, है
0: जाएंगी। हाँ।
1: ना।
0: एक साथी लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज की व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रेम पूर्ण शब्द, थोड़ी सी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है।
1: एक साथी लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है। उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहाँ थका हुआ मन सुकून पाता है। उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है और दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है।
0: और एक साथ ही

0: लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में समाज में वो आदरणीय है, उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती, बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, बड़े भाई, उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है।
1: क्या बात
0: ये तो
1: है।
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे माँ पिता हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है, या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते
1: और
0: हैं।
1: है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं
0: बुरा नहीं
1: चाहिए। वो भर भर
0: चाहेंगे,
1: के आशीर्वाद देते। एक साथ ही
0: बिल्कुल
1: लिखते हैं कि बुजुर्गों की दुआएं उस दीपक की तरह होती है जो बिना शोर के जीवन की राहों को रोशन करती है। उनके साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है। और एक साथ ही लिखते हैं, वृद्धजनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए परिवार और समाज दोनों को संवेदनशील बनना अति आवश्यक है। यदि वृद्धजनों के प्रति किसी प्रकार का शोषण या उपेक्षा दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और संबंधित यानी लोगों तक पहुंचाने चाहिए। प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण ही वृद्धजनों को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है। और इस दिन

0: नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज द्वारा की गई थी और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे आधिकारिक मान्यता दी थी।
1: सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियां सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। बुजुर्ग परिवार परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आश्रय में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह के संस्कारों की बौछार होती
0: वो
1: है,
0: बच्चे अलग ही संस्कारी नजर आते हैं।
1: नजर आते हैं। चूंकि माता पिता अपनी व्यस्तताओं के चलते उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन दादा दादी अपने समय का पूरा सदुपयोग उस बच्चे की परवरिश में करते हैं और वो बच्चा अलग ही जान पड़ता है।
0: तो सचमुच जिनके घर में दादा दादी नाना नानी है वो सचमुच वो बच्चे नसीब वाले होते हैं ना।
1: जी हाँ, और इसी के साथ हमारे एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और अनुभवों का समृद्ध दस्तावेज हैं। बुजुर्ग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज वही है जो अपने वृद्धों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और प्रेमपूर्ण जीवन दे सके। इसके अलावा सोनाली जी, कभी कभी ये भी लगता है जब हम अभी अब चलन हो गया है कि सिर्फ पति पत्नी अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं तब एक बात और जानने को मिलती है कि बुजुर्गों का जो सहयोग हमें मिलता है, घर में बच्चे कभी अकेले नहीं पड़ते, वो
0: बिल्कुल।
1: कभी अवसाद का सामना नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई ना कोई उन्हें देखने के लिए होता है
0: और
1: कि नहीं?
0: आप क्या करें,
1: तो अब चूंकि हमें भी थोड़ा सा मनोरंजन बीच में चाहिए तो एक गाना सुन लेते
0: सुनते
1: हैं।
0: हैं गीत।

0: कहाँ गुम है आप?
1: ठंडी हवा का इंतजार कर रही हूं।
0: और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुलवारी का भी।
1: बहुत इंतजार है क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी गर्मी बढ़
0: हाँ
1: गई है कि हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे पर काले बादल नजर ही नहीं आ रहे।
0: नहीं आ रहे, और जो थोड़े बहुत बादल दिख भी जाते हैं वो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते
1: और उनका
0: हैं।
1: रंग इतना सफेद सफेद है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा
0: बिल्कुल बिल्कुल। बारिश भी ना सोनाली जी,
1: है।
0: प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो धरती को नया जीवन देती है। कब

0: गर्मी के बाद जब बादल उमड़ते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है तो वातावरण में ताजगी और हरियाली फैल जाती है।
1: और वो जो खुशबू आती है
0: हाँ
1: नेहा,
0: हाँ हाँ सौंधी सौंधी खुशबू।
1: उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना, वो फीके लगते
0: वो तो है,
1: हैं।
0: लेकिन बारिश का आनंद तभी लिया जा सकता है सोनाली जी, जब हम इसके आने से पहले उचित तैयारी कर लें। थोड़ी सी सावधानी हमें जल भराव, बीमारियों और अन्य परेशानियों से बचा सकती है। बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए।
1: बहुत
0: कई
1: जरूरी
0: सारे
1: है।
0: बिंदु हैं जो हमें पहले जांच कर लेना चाहिए, बारिश आने से पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए। इन तैयारियों के बारे में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे।
1: अब जैसे तैयारियों की बात चलिए, तो यस, वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम है ना,
0: जी
1: क्योंकि क्या
0: बिल्कुल।
1: होता है ना, हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है, तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नाली नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो, तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपम्प वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं, तो
0: बिल्कुल
1: इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है। तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था ज़रूर करें, क्योंकि जो बूंद बूंद है ना, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल संग्रह स्थान तक पहुंचाना है। इससे पानी की बचत तो होती है, साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है। तो इस व्यवस्था करने का काम हमें ज़रूर से करना आना चाहिए।
0: इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए, छत, दीवारें और खिड़कियों में, कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। घर की नालियों, पाइप और पानी निकलने के रास्तों की भी सफाई कर लेनी चाहिए ताकि तेज बारिश में पानी जमा ना हो जाए। कई बार ना जो ऐसे घर के पुराने पाइप होते हैं या जो उपयोग में कम होते हैं, तो देखिएगा बाकी दिनों में ना चिड़िया वहां घोंसला बना लेती है या फिर अपने तिनके तिनके जमा कर। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां पानी जम सकता है और घोंसले को भी नुकसान हो सकता है।
1: और बहुत सारे लोगों को ना बहुत लालच भी होता है ना कि अरे ये टायर जो है मुझे बाद में काम आएंगे, भले ही वो बिना काम के हो, तो उसमें पानी जमा हो जाता है, फिर उसमें मच्छर पनपने लगते हैं, फिर डेंगू मलेरिया होने का
0: बीमारियों का
1: हाँ
0: खतरा बढ़
1: बढ़
0: जाता
1: जाता
0: है।
1: है। इसलिए फिर वो जो है ना, जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है जो बोतल्स वगैरह हैं
0: हाँ
1: और बहुत
0: हाँ
1: सारा ऐसा सामान है, वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इससे पेट के संक्रमण, पीलिया, टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले घर में वाटर फिल्टर का यानी RO सिस्टम की मरम्मत सर्विसिंग करवा लेना समझदारी का काम है। वाटर फिल्टर उपलब्ध ना हो तो पानी को अच्छी तरह उबाल कर छान कर पीने की आदत डालना जरूरी है, और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बोतल लेकर जाए।
0: बिल्कुल। एक साथी लिख रहे हैं, बारिश तो भाई होनी होनी होती है, तो आषाढ़, सावन, भादो और क्वार तक अपने आप प्राकृत स्वरूप में भली भांति चतुर्दिक हो जाया करती है। और उनके पूर्व की तैयारियों में कृषक अपने ईंधन की व्यवस्था के तहत गोहरे और लकड़ियों को संभाल कर रख लिया करते थे। नहीं तो भादो मास में तो चूल्हा ही नहीं जल पाता था, तो फिर चना, चबेना और गंग जल का ही भरोसा रहता था, न कि चटनी और गर्मा गर्म पकौड़ों का। ये प्राकृत मानसून के बारिश का हाल था। नदियां उफान पर रहा करती थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती ही पानी न बरसने के कारण गर्म हो रही है और नदियों में प्रवाह नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी किस बात की। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी ही होती हैं।
1: बिल्कुल करना जरूरी है। और आप क्या करना चाहिए, आप एक गाना
0: अभी
1: सुनना
0: गीत सुनना भी बहुत जरूरी
1: तो
0: है।
1: सुनते हैं गीत।

0: तो हम मेघा से कहेंगे कि भाई परदेश मत जाओ, हमारे देश में आ जाओ।
1: एक साथी ने लिखा है, बारिश की पूर्व तैयारी में हमें अपने अपने घरों, सरकारी भवनों आदि ऐसे स्थानों के चांदनी गैलरियों में जमा बारिश के पानी को पुनः जमीन में भेजने की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी जमीन में जाकर पुनः हम पानी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सकें। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। लेकिन सोनाली जी, जब बरसात का मौसम आता है तो खाने पीने की भी बड़ी इच्छा होती है, कुछ अलग अलग मस्त मस्त चीजें
0: यानी अभी
1: खाने का मन
0: गर्मी में ना
1: करता है।
0: तला भुना खाने का मन नहीं होता है ना, बस ठंडा ठंडा
1: हाँ
0: खाने का मन होता है। पर जब
1: हाँ
0: बारिश झमझमाती बारिश होती है ना, उस वक्त पूड़ी हो, आलू की
1: पकोड़े
0: सब्जी
1: हो,
0: हो।
1: अरे वाह सोनाली जी, अब तो आप और नाम मत
0: तो आज के
1: लीजिए।
0: हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम प्रादेशिक व्यंजन में मक्खन मलाइयो और साथ में बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी, उसकी जो हमने व्यंजन का बोला था और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे, तो मक्खन मलाइयो सर्दी सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में मिलने वाली बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है। ये इतनी हल्की और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। दूध का चयन इसे बनाने के लिए फुल क्रीम दूध या ताज़ी मलाई का इस्तेमाल किया जाता है। ओस की रात में पारंपरिक रूप से दूध को उबाल कर ठंडा किया जाता है और रात भर खुले आसमान के नीचे ओस में छोड़ दिया जाता है और इसे मथते हैं और सुबह तक इस दूध को बहुत देर तक मथा जाता है, जिसके ऊपर बादलों जैसा हल्का झाग या फोम बन जाता है। स्वाद और सजावट, इस झागदार मलाई को अलग करके इसमें चीनी, इलायची, केसर और कटे हुए बादाम, पिस्ता मिलाए जाते हैं और खाया जाता है। नेहा, आपने खाई है मिठाई?
1: नहीं, मैंने खाई भी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी, लेकिन आज रेसिपी सुनने के बाद, विधि सुनने के बाद बिल्कुल समझ आ गया है और मुझे बिल्कुल वो दृश्य भी सामने आ गया है कि कैसी दिखती होगी और कैसी लगती
0: और
1: होगी।
0: वो ना दोने में जो खाते होंगे ना, तो बहुत ही मज़ा उसमें दुगना हो जाता होगा। और सचमुच मैंने पढ़ा है
1: हाँ
0: इस बारे में, पर खाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम बनारस जाएंगे और ये मक्खन
1: तभी ये
0: मलाइयों खा
1: खाया
0: के
1: जा
0: आएंगे,
1: सकता है।
0: क्योंकि उसे ले नहीं जा सकते ना कहीं दूसरी जगह।
1: एक साथी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से मक्खन मलैया और बेडमी पूड़ी आलू की सब्जी विशेष रूप से पसंद की जाती है। मक्खन मलैया लखनऊ, ये लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का शीतकालीन स्पेशल स्ट्रीट फूड है, जिसे निमिष या दौलत की चाट, जैसा कि हमने पहले भी कहा, के रूप में जाना जाता है। ये दूध की मलाई से बनी बेहद हल्की और झागदार रुई जैसी नरम मीठी डिश है। इसके अलावा इन्होंने बेडमी पूड़ी के बारे में भी लिखा है और आलू की सब्जी। आगरा, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है, जो विशेष रूप से आगरा और मथुरा की गलियों में प्रसिद्ध है। बेडमी पूड़ी ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली खस्ता और कुरकुरी तली हुई है। आलू की सब्जी इसके साथ मसालेदार, रसेदार या डुबकी वाले आलू, यानी कि बिना प्याज लहसुन के, परोसे जाते हैं। मुख्य सामग्री गेहूं का आटा, सूजी, भीगी हुई उड़द दाल, सौंफ, हींग और गरम मसाले। इस वीडियो में इसमें हलवाई जैसी खस्ता बेडमी पूड़ी और मसालेदार आलू की सब्जी बनाने की विधि, एकदम हलवाई जैसी फूली फूली खस्ता बेदमी पूड़ी मसालेदार आलू की सब्जी बनाई जाती है।
0: यानी उड़द की दाल डाली जाती है, जिससे वो पूरी जो ना हम हमेशा जो हम पूरी बनाते हैं वो
1: हाँ,
0: थोड़ी नरम हो जाती है, पर ये जो बेडमी पूड़ी होती है ना वो कड़क
1: कुरकुरी
0: रहती है।
1: रहती है, जो खाने में भी मजा आता है।
0: और वो जो टमाटर डाल के वो आलू की सब्जी, तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है। पर अब समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए। तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और नेहा अगरकर देसाई का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: सखी
1: सहेली, सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से, और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ श्रोता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो, इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं। तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
0: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एक एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
0: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है, ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे। हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
1: तो देखिए, जैसा कि आज का माहौल है, उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, जैसे मधुबन।

गाना शारदा जी वाकई आपने बहुत अच्छा सुनवाया। जो मधुबन खुशबू देता है यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है दरअसल वही महान कहलाता है, और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार

0: अपनाना तो चाहते हैं लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है। तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए। अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं। और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है। अचानक बिस्तर से उठना झटके से वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से, शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए। किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
0: प्रतिकूल होता है।
1: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखना कि एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले, सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए। 2 ग्लास गर्म पानी आपने पिया। पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
0: कहते हैं लोग बेट टी चाहिए।
1: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं, 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है,
0: फास्टिंग हो गया।
1: फास्टिंग हो गया है, तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आए, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आए, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके दिन की शुरुआत होना चाहिए।
0: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए। तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है। तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
1: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की कोशिश, सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपको। शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
0: जी। तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे।
1: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए।
0: वाह,
1: आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्य उदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्योदय से ही शुरू हो जाती है। और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी
0: चहचहाट
1: चहचहाट आने लगती है, तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए। हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए, कुछ आसन वगैरह करके आइए। या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए, घर पर ही चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
0: अच्छा,
1: जी
0: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं, वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
1: जी हाँ,
0: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
1: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
0: जाग जाएं,
1: हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
0: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
1: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी, बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था, आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके।

0: दोस्तों, गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं, आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन, जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा। जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती, तो माइंड में लगा रहता है कि आप क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही ये हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर 4-4 घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने प्रातः काल का तो बताया था, 8 बजे नाश्ता,
1: 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए। फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए। शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30, 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना, रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारे
0: जनरेशन
1: है, जो हमारा काम करने का समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
0: अच्छा।
1: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं, या गर्मी का टाइम है तो आप कढ़ी चावल बना सकते हैं, या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए।
0: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
1: दिन में हम खा सकते हैं क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है। पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा, फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना, कोशिश तो जल्दी खाने की है पर नहीं खा पा रहे हैं, तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कढ़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप प्लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
0: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घूंट खाया फिर पानी पी लिया, तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
1: बहुत अच्छा सवाल किया राजेंद्र जी आपने, मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में, लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है, बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है, आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
0: बिल्कुल सही।
1: तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए, पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए। थोड़ा पानी आप पीजिए। फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो एक घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहां तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
0: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घूट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
1: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
0: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता ही
1: ना हो। इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता।
0: और कहा यह भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो, तो आपकी क्या राय है?
1: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है, तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना चाहिए। खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया। और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए, यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए। पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
0: बिल्कुल, वो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए भोजन के प्रति।
1: जी जी।
0: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
1: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी।

0: शारदा जी, वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं, आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए।
1: राजेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम के शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं
0: जी,
1: जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की। मतलब इन चारों चीजों पर हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उस पे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी, कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की।
0: जी
1: विहार मतलब कि रिक्रिएशन बोलते हैं या मनोरंजन।

0: कह सकते हैं, या और भी इसे शीतलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ
1: रिलैक्स,
0: रिलैक्सेशन,
1: एंटरटेन करना।
0: इंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि इंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से ये पूछा जाए कि आप क्या करते हैं तो वो बोलते हैं हम तो ने तो टीवी देखा। बिल्कुल टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ बिहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
1: अच्छा
0: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना,
1: जी
0: वो भी
1: जी
0: हमें बहुत रिलैक्स करता है। बिहार में मैं बात करूंगी रिकेशन की, शिथिलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी, केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ बिहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास ये रत्न, अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी पर समय के साथ वो छूट जाती हैं, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है, या आपको किसी भी प्रकार का
1: या
0: शौक है,
1: किताबें
0: म्यूजिक
1: पढ़ना
0: का,
1: पसंद
0: किताब
1: है।
0: पढ़ना, कोई भी एक शौक होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए आप एक टाइम निकालिए और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो

0: में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी, कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए, रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए वो अगर बंद पड़ गई हैं, तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी, हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे हमारे आचार में ही आती है कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
1: अनुशासित।
0: अनुशासित टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कोई हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते। तो ये बहुत जरूरी कि आप एक सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए। उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए।
1: जी
0: और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए, जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं, तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये भी ये मेरे लिए करे।
1: जी
0: तो
1: जी
0: हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी जी
0: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होके कार्य होगा।
1: आपका कहने का तात्पर्य यह है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति, तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और
0: जी
1: काम भी
0: हाँ,
1: पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा।
0: शुद्ध होगा।
1: जी जी
0: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
1: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहाँ गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
0: फिल्म का नाम अमृत है और गाना है जिन

0: अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा,
1: अरे दोस्तों रुक जाओ जरा, मुझे चोरों के आने की

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियाँ दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियाँ के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।
2: तो दोस्तों, गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है आज के सेहतनामा कार्यक्रम में, सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?
3: देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं,
2: प्रति पल
3: विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हर पल जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। हर एक विचार के बारे में सोचना जरूरी नहीं है कि आप हर एक विचार को सोच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विचार हमारे उसमें नकारात्मक ही होते हैं। तो अनावश्यक, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, अनावश्यक विचारों को त्यागना, इसकी आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो है वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम, दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं, घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है, जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
2: क्या क्या किया,
3: क्या क्या किया आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए, और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, क्योंकि हम उस पे गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है। पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक की अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए। अच्छा। कि रोज हमें कोशिश करनी, शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे कि हर रोज लिखिए क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
2: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फलां फलां ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा, तो ये विचार भी तो उसमें शामिल है।
3: नहीं नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है। यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है। तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है, नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है, वही आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
2: वो टेक्निक जो आप बता रही थी, उसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
3: जी हाँ। उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
2: विचलित नहीं करेंगी,
3: विचलित करेंगी नहीं आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए हमें वहां पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी किसी से मिलके, या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से,
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।
2: ये बात सही है, और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाती है।
3: जी हाँ बिल्कुल, वही मेरे भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
2: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो हैं योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए?
3: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देखकर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज, जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो, क्यों, आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
2: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो।
3: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देखकर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
2: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
3: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से, स्फूर्ति से भर दे। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
2: तो बातों बातों में फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
3: उठे सबके

0: शारदा जी, गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया, स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है, तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी ये लोग कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर, यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष हैं ऑफिस में हैं, तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात करें वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं
0: जी।
1: कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे
0: बिल्कुल।
1: हैं, हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको, मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर, तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखिए कि बहुत देर, यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं, तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और खाने के बाद जैसे अब हम वहां पे तो हम नहीं, आराम तो नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया शीतलीकरण होना चाहिए, तो शीतलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन, मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही है, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी वाहन की आवाज आ रही है या पंखे की आवाज आ रही है या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको। आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे, आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा,
0: और फिर से अपना काम करना,
1: फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है, आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहां पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
0: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है, और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा, काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान में
1: वहीं पर आप थोड़ा सा पांव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए।

0: बदन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए। आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए, खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपकी आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं, और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
1: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं ऑफिस में काम करते करते भी, कोई टिप्स मिल गया बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है।
0: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए, किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा। तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए, आप पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है। है तो आप एक हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
1: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
0: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी, मेरा मन पसंद गाना है जिसके बोल हैं जो तू

0: गीत वाकई आपने अपनी पसंद का बहुत अच्छा सुनवाया, लीक से हटकर था और थोड़ा मूड भी बदल गया। शारदा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों ही के लिए, कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जैसे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए।
0: तो सात्विक का मतलब शाकाहारी?
1: जी हाँ, बिल्कुल शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा
1: जी
0: मन,
1: जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर, जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं, तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को, स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है, और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया, और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है, हर रोज सुनिए।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा।
3: अब तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 को हैं, अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
5: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
4: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
6: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन, फ्रांस।
4: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक LNG ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो की मौसम स्थिति के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है। प्रधानमंत्री की स्टामर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित बरेली होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे पहाड़ी बोली में भजन, कार्यक्रम भजन संध्या के अंतर्गत। युव मंच कार्यक्रम 5:30 पर आप सुन सकते हैं। शाम 6:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 6:05 पर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा सफर सुहाने गाने नए पुराने। 6:30 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 7:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर देशगान सुनेगा और 7:10 पर आप सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर एक विशेष कार्यक्रम। विषय रहेगा विदेश नीति, इसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 7:45 का समय रहता है प्रादेशिक समाचारों का, जिन्हें हम आकाशवाणी शिमला से रिले करते हैं, और 8:00 भी आकाशवाणी शिमला से ही आप सुनेंगे विशेष भेंट वार्ता केंद्र की सरकार, इसके 12 वर्ष, जी हां, केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियां और विकास की यात्रा। इसमें प्रतिभागी होंगे अजय श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हिमाचल विश्वविद्यालय, और भेंट करता होंगे उज्जवल शर्मा, सीनियर पत्रकार। 8:45 पर समाचार संध्या का अंक, 9:00 News@9 का अंक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 9:15 से लेकर 10:00 तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकते हैं। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम रात्रि 10:00 प्रसारित किया जाएगा। 10:30 पर आनंद उठाइएगा कार्यक्रम चांदनी रातों का। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। तो ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:07 और 45 सेकंड हुए हैं, आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम भजन संध्या।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: सुनो सुनो बड़ी बहू,
6: ये तुम्हारी ना
5: इतनी भी क्या जल्दी थी।
6: अरे और छोटी, ये तुम्हारी ना,
5: और ये
7: मेरी गुड़िया की ना।
8: पर दादी
6: हाँ,
8: आपके नाम
9: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
6: शुभ शुभ बोलो।
8: क्या
9: RBI कहता है?
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय भजन संध्या कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अंतराल से पहले जो आपने भजन सुना वो सूरज मेहता की आवाज में था। और आइए अब सुनते हैं करनैल राणा और साथियों का गाया ये भजन।

सजरैया बन सरिया मेरा श्याम।

श्याम मित्र बनो।

अजहर सिंह परमार और ज्वाला प्रसाद की आवाज़ों में अभी आपने ये भजन सुना। और अब कार्यक्रम के अंत में ओम प्रकाश और साथियों का गाया ये माता की भेंट, आइए सुनते हैं।

बातों का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त प्रीति, लेकर आई हूं आपके लिए ढेरों सारी जानकारियां और मनोरंजन। तो युवा साथियों, आज के इस युवमंच कार्यक्रम में हम बात करेंगे योग एक्सपर्ट्स बनने के बारे में, कौन कौन से करियर ऑप्शंस इस क्षेत्र में आपके पास हैं। यदि आप योग एक्सपर्ट्स बन जाते हैं तो आपके लिए केवल योग शिक्षक बनना ही रास्ता नहीं, बल्कि आज योग स्वास्थ्य, फिटनेस, शिक्षा, कॉर्पोरेट वेलनेस, खेल, रिसर्च और डिजिटल मीडिया जैसे कई क्षेत्रों में करियर के अवसर आपको प्रदान करता है। युवा साथियों, इस क्षेत्र में सबसे पहले बात करते हैं योग शिक्षक के बारे में, जो कि सबसे सामान्य करियर विकल्प है। स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, जिम या योग केंद्रों में आप योग जो है वो सिखा सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी आप ले सकते हैं। इसमें आपकी योग्यता की बात करें तो योग में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। योग अलायंस या मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं और आप जो है अपने करियर की शुरुआत इस क्षेत्र में कर सकते हैं। योग थेरेपिस्ट आप बन सकते हैं। योग का उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के प्रबंधन के लिए किया जाता है। पीठ दर्द, तनाव, मोटापा आदि जो है योग का कार्यक्रम बनाना है। अस्पतालों और वेलनेस सेंटरों में कार्य आपको करना होता है। इसमें योग्यता की बात करें तो थेरेपी में विशेष प्रशिक्षण आपको लेना होता है। शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान आपको हासिल करना होता है। इसके अलावा युवा साथियों, बात करें सरकारी क्षेत्र में भी आपके लिए करियर अवसर है। सरकारी स्कूल में योग शिक्षक, खेल विभाग में, आयुष मंत्रालय से जुड़े संस्थानों में आप जो है अपना करियर बना सकते हैं। कॉर्पोरेट वेलनेस ट्रेनर, आज बड़ी कंपनियां कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही हैं और अपने ऑफिस में कर्मचारियों के लिए योग और मेडिटेशन सत्र आयोजन करती हैं। तनाव प्रबंधन कार्यक्रम, युवा साथियों, योग एक्सपर्ट्स के लिए फिटनेस और स्पोर्ट्स सेक्टर में भी करियर ऑप्शंस हैं। खिलाड़ियों के लिए योग प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स रिकवरी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम फिटनेस सेंटर में भी आपके लिए अवसर है। इसमें भी आपको स्पोर्ट्स टीमों के साथ कार्य करना होता है। खेल अकादमियां हो गई। योग रिसर्च और अकादमिक क्षेत्र में भी आप आगे अपनी शोध में अगर आप रुचि रखते हैं तो आगे अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। योग पर शोध करना हो गया, विश्वविद्यालयों में अध्यापन करना हो गया या फिर किसी रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ जो है जुड़ना आपका हो गया। और आजकल के डिजिटल युग की बात करें तो योग कंटेंट क्रिएट कर आप जो है ऑनलाइन भी बहुत सारे कोर्सेज शुरू करके या अलग अलग प्लेटफॉर्म पर योगा सिखा के जो है अपनी कमाई कर सकते हैं। इसमें योग वीडियो बनाना, ऑनलाइन कोर्स बेचना या फिर किसी ब्रांड का सहयोग करना शामिल है। आप अपना योग स्टूडियो या वेलनेस सेंटर शुरू कर सकते हैं, जहां से आप अपनी योग क्लासेस चला सकते हैं। मेडिटेशन, प्राणायाम, वेलनेस प्रोग्राम का आयोजन आप कर सकते हैं। युवा साथियों, योग इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग संस्थानों में नौकरी के प्रकार के अनुसार योग्यता थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन सामान्यता योग्यता जो है आपको कम से कम जो है 12वीं पास होना चाहिए और किसी अच्छे संस्थान से 12वीं के बाद योग में डिप्लोमा या कोर्स सर्टिफिकेट जो है आपने किया होना चाहिए। उस स्तर के पदों के लिए स्नातक जो है होना अनिवार्य है। कई सारे कोर्सेज जो हैं आप योग प्रशिक्षण जो हैं इसमें विभिन्न तरह के सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, जो कि 3 से 6 महीने का हो सकता है। योग डिप्लोमा 1 वर्ष का हो सकता है। योग में आप BSc योगा कर सकते हैं, BA योगा कर सकते हैं या फिर उच्च अध्ययन के लिए आप MA जो है योग में कर सकते हैं। विभिन्न योग आसनों का सही से ज्ञान जो है आपको होना चाहिए, जो आपके आवश्यक कौशल आपको चाहिए। प्राणायाम और ध्यान की समझ और लोगों को सुरक्षित तरीके से योग सिखाने की क्षमता, अच्छी संवाद क्षमता और शरीर रचना और स्वास्थ्य की बुनियादी जानकारी होना। इस तरह युवा साथियों, आप योग इंस्ट्रक्टर बनकर अपने करियर की शुरुआत जो है कर सकते हैं। तो युवा साथियों, ये तो जानकारी हमने आपके साथ साझा करी योग के क्षेत्र के बारे में कि किस तरह के विभिन्न भिन्न अवसर आपको योग इंस्ट्रक्टर बन के जो है वो मिलते हैं। और जानकारियां और भी हमारे पास हैं, लेकिन जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन भी जरूरी है। तो आपके रेडियो सेट्स पर भेज रहे हैं ये गीत और बाकी की जानकारी फिर इस गीत के बाद।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: एक बार फिर से अपने सभी युवा साथियों को स्वागत करते हैं कार्यक्रम युव मंच में। और आज के इस युव मंच कार्यक्रम में ढेरों सारी जानकारियां हम अपने युवा साथियों के साथ साझा कर रहे हैं। पहले तो हमने बात करी योग क्षेत्र में करियर ऑप्शंस के बारे में, और अब कार्यक्रम में आगे बात करते हैं आज के विशेष दिनों के बारे में। आज है 15 जून और आज हम मना रहे हैं दो विशेष दिन। एक तो हम मना रहे हैं विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों के साथ हो रहे समाज में जिस तरह के दुर्व्यवहार हैं, चाहे वो मानसिक प्रताड़ना है या आर्थिक शोषण उनका करना है, इन सब चीजों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है कि बुजुर्ग जो हैं हमारे समाज की, हमारे घर की पूंजी हैं। उनके अनुभवों से हमें सीखना है, उनके सम्मान की रक्षा करना है, उनका शोषण होने से बचाना है। इसके लिए विभिन्न तरह के कदम जो हैं उठाए जाते हैं, कई तरह के हेल्पलाइन नंबर भी चलाए गए हैं और इस बारे में हमने एक कार्यक्रम में चर्चा भी की है। तो युवा साथियों, हर दिन को मनाने का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति तभी होती है जब हम जागरूक होते हैं और उस विषय के ऊपर हम कुछ कदम उठाते हैं, कुछ काम करते हैं। तो जागरूकता फैलाना है और अपने आसपास अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों की सेवा करनी है, उनका सम्मान करना है, डिजिटल युग से उन्हें जोड़ना है, क्योंकि कई तरह की समस्याओं का सामना जो है बुजुर्गों को करना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के बारे में, और अब बात करते हैं वैश्विक पवन दिवस के बारे में, जिसे कि आज हम मना रहे हैं। ग्लोबल विंड डे, जो कि हर साल 15 जून को दुनिया भर में पवन ऊर्जा की शक्ति और पर्यावरण संरक्षण में इसके महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और इस बार के विषय की बात करें कि क्या थीम इस बार की है, तो इस बार की थीम है हमारी पवन ऊर्जा हमारा समुदाय। और युवा साथियों, आपको बता दें इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है भारत देश। ग्लोबल विंड डे का जो मुख्य कॉन्फ्रेंस है वो भारत गोवा में आयोजित किया जा रहा है। और बात करें भारत की स्थिति की, तो 56.09 गीगावाट की स्थापित क्षमता के साथ भारत आज विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश जो है वो बन चुका है। यह आयोजन विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। युवा साथियों, हर वर्ष 15 जून को पूरी दुनिया में विश्व पवन दिवस जो है मनाया जाता है, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को पवन ऊर्जा के महत्व और इसके लाभों और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच पवन ऊर्जा को भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों में से एक माना जाता है। पवन दिवस एक वैश्विक आयोजन है जिसे दुनिया भर में पवन ऊर्जा के फायदों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हवा सिर्फ मौसम बदलने का जरिया नहीं, बल्कि ये बिजली पैदा करने, प्रदूषण को कम करने का एक बेहद शक्तिशाली और कभी न खत्म होने वाला अक्षय स्रोत है। इस दिन को मनाने के जो उद्देश्य हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के बारे में। कोयला, डीजल, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों से बड़े पैमाने पर प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग होती है। पवन ऊर्जा इसका एक पूरी तरह से स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। अर्थव्यवस्था और रोजगार की संभावनाएं, पवन ऊर्जा क्षेत्र दुनिया भर में लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। पवन चक्कियों के निर्माण, रखरखाव और रिसर्च में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, जिससे प्रति सरकार और निवेशकों का ध्यान आकर्षित करना इसका उद्देश्य होता है। आम जनता और नीति निर्माताओं को इस समझाना कि पवन ऊर्जा की मदद से बिजली की बढ़ती मांग को कैसे पूरा किया जा सकता है और कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जा सकता है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए बड़े बड़े पैमानों पर मैदानों या समुद्री तटीय इलाकों में ऊंची पवन चक्कियां जब तेज हवा से चलती हैं, तो इन चक्कियों के ब्लेड घूमने लगते हैं। यह घुमावदार गति टरबाइन को अंदर लगे जनरेटर को चलाती है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा बिजली में बदल जाती है और इस बिजली को ग्रिड के जरिए हमारे घरों या फैक्ट्रियों में फिर भेजा जाता है। पवन ऊर्जा के मामले में भारत की स्थिति की बात करें, तो जैसे कि हमने बात करी, भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। भारत में तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में पवन ऊर्जा का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। भारत सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के लिए बड़े लक्ष्य रखे हैं, जिनमें पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो युवा साथियों, यदि जानकारी हमने आज के इस युवमंच कार्यक्रम में आपको दो विशेष दिनों के बारे में, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और वैश्विक पवन दिवस के बारे में। अब इन जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन भी जरूरी है, तो कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आपने ट्यून इन किया है आपकी अपनी फ्रीक्वेंसी 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और कार्यक्रम चल रहा है युव मंच। युवा साथियों, अब आपसे बात करेंगे नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ये एक राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य युवाओं, छात्रों और समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा नशे की लत से बचाना है और पुनर्वास को बढ़ावा देना है। ये अभियान मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा संचालित किया जाता है और इसमें युवाओं के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नशे के नुकसान पर सेमिनार, कार्यशालाएं और रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। युवा स्वयंसेवकों की भागीदारी, युवा क्लबों के माध्यम से युवाओं को नशा विरोधी अभियान से जोड़ा जाता है। युवाओं को अपने समुदाय में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया जाता है। नशे की समस्या से जूझ रहे युवाओं के लिए परामर्श की व्यवस्था की गई है। नशा मुक्ति केंद्रों और पुनर्वास सेवाओं तक उनकी पहुँच उपलब्ध करवाई गई है। युवाओं को खेल, फिटनेस और योग जैसी सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे तनाव कम होता है और नशे की ओर झुकाव भी घटता है। सोशल मीडिया के जरिए अभियान चलाए जा रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नशा विरोधी संदेश जो हैं वो प्रसारित किए जाते हैं। यदि आप योग, फिटनेस, सामाजिक कार्य या युवा नेतृत्व में रुचि रखते हैं तो आप इस अभियान से जुड़ सकते हैं, जागरूकता स्वयंसेवक आप बन सकते हैं, स्कूलों और कॉलेजों में नशा विरोधी कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान बस एक संदेश देता है, नशे से दूरी स्वस्थ जीवन की ओर। इसमें युवाओं को नशे से दूर रखकर उन्हें शिक्षा, कौशल, खेल, योग और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है। युवा साथियों, आपको बताएं तो नशा मुक्त भारत अभियान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त सन 2020 में शुरू किया गया था और ये एक राष्ट्रीय अभियान है। इसका उद्देश्य युवाओं को, समाज को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है और नशा करने वाले व्यक्तियों को उपचार और पुनर्वास की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराना है। परिवार, स्कूल, कॉलेज और समुदाय को नशा विरोधी प्रयासों के साथ जोड़ना है। तो युवा साथियों, इन्हीं जानकारियों के साथ आज का युवमंच कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे यही कहूंगी कि नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बने और अपने आसपास के युवाओं को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें और उसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाएं, क्योंकि आज का युवा ही देश का भावी भविष्य है, देश को चलाने वाला है। देश की बागडोर आप ही युवाओं के हाथों में है। तो सशक्त बनिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी हमीरपुर के साथ। तो अब ये युवाओं का कार्यक्रम युव मंच अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: नीलम छुटकी राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान

0: हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
1: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
6: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
5: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
6: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
5: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
6: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जी, युव मंच कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर?
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कांगड़ा जिला को छोड़कर प्रदेश के सभी 11 जिलों में आज ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाई गई। कांगड़ा जिले में ये समारोह 18 जून को प्रस्तावित है। शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर

0: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू विशेष रूप से मौजूद रहे। समारोह में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को एंटी चिट्टा की शपथ दिलाते हुए उनसे चिट्टा मुक्त पंचायत व समाज बनाने का आह्वान किया।
1: चिट्टा को हम जन सहयोग जन भागीदारी का एक स्वरूप दे चुके हैं। इसका पहला चरण खत्म हो चुका, दूसरा चरण में अभी डिप्टी कमिश्नर एसपी एडीएम सभी अधिकारी और कर्मचारी जाकर स्कूलों में बच्चों को युवाओं को चिट्टे के प्रति जागरूक करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नव निर्वाचित प्रधान व उप प्रधान विकास जनसेवा और सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। प्रदेश के अन्य जिलों में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाई। चंबा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शपथ समारोह में उम्मीद जताई कि पंचायत प्रतिनिधि अपने इलाके का विकास करवाने के लिए तत्परता से कार्य करेंगे। ऊना जिले के समूरकला में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रतिनिधियों से राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर एकजुटता से कार्य करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जनप्रतिनिधियों से ईमानदारी से सभी कार्य पूरा करने का आह्वान किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कुल्लू में हुए समारोह में पंचायती राज को लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी बताते हुए बिना भेदभाव के जनसेवा के कार्य करने पर बल दिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रिकांगपियो में किन्नौर जिले के जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। नाहन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा और विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। बिलासपुर में शपथ समारोह के दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने पंचायत प्रतिनिधियों से जरूरतमंद व पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की अपील की। मंडी में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि 16वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए 3,744 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने हमीरपुर में आयोजित समारोह में कहा कि सराहनीय कार्य करने वाले जनप्रतिनिधियों को राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग में उप मुख्य सचेतक व विधायक केवल सिंह पठानिया ने जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास करने पर बल दिया है। वे आज सोलन जिले में कंडाघाट उपमंडल के सायरी घाट में विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बोल रहे थे। शांडिल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं और उनके अनुभव, ज्ञान व जीवन मूल्यों से समाज को मार्गदर्शन मिलता है। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है और प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में जनता का अटूट विश्वास बना हुआ है।
2: 2014 से लेकर 2026 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने एक लंबी छलांग लगाई है। आज जिस प्रकार से हमारा देश दुनिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आया है, ये तभी संभव हो पाया कि हमारे पास एक बहुत ही मजबूत नेतृत्व है जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है और जिनके प्रभाव के कारण आज देश की दिशा और दशा बदलने का काम हुआ।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में विधायकों को मतदान करने से रोकने संबंधी प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब विधायक इन चुनावों में मतदान कर सकेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं और आपकी रेडियो दोस्त भावना कतना हाजिर है आपके मनोरंजन के लिए कुछ फिल्मी गीत लेकर। कार्यक्रम का नाम है सफर सुहाने, गाने नए पुराने।

0: जी हाँ, ये कुछ गीत ऐसे होते हैं ना, सुकून देने वाले गीत। और शाम का समय तो होता ही ऐसा है कि पूरा दिन चाहे हम जो भी करें, जहाँ भी हों, कोई ऑफिस, कोई स्कूल, कोई बाहर, कहीं भी हों, बस शाम के समय मन करता है कि कुछ अपने घर जाकर अपनों के साथ सुकून भरे पल बिताएं, है ना। और ऐसे में ये गीत हमें बहुत सुकून देते हैं। अपनों का साथ होता है और साथ में होते हैं ये गीत शाम के समय, तो शाम का समय और भी रंगीन सुहाना हो जाता है। और ये गीत आकाशवाणी हमीरपुर से आप हर रोज सुनते हैं। अगला गीत भी आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

सुकून भरे ये जो पल होते हैं ना, मन करता है बस मुट्ठी में इन्हें कैद करके रख लें। आप देखिए ना, आप पीछे जाकर शुरुआत को बदल तो नहीं सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू करके अंत को बदल सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं, जो है जहाँ है जिस पल में है उस पल को एंजॉय करें, उस पल का लुत्फ लें। क्या पता आगे ज़िंदगी क्या कौन से पल दिखाएगी, पीछे कौन से पल दिखाए हैं, खैर उनको तो नहीं बदला जा सकता, पर हाँ इन पलों को भरपूर हम जी सकते हैं अपनों के साथ, प्यार के साथ, सम्मान के साथ, विश्वास के साथ और इन गीतों के साथ।

0: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
1: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
0: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
1: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
0: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
1: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: आकाशवाणी हमीरपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने।

0: जिंदगी तुझसे रिश्ते निभाते रहे। जी हाँ, रिश्ते भी तो तभी निभते हैं ना जब उनमें प्यार हो, विश्वास हो। और मन में बुराई रखने से बेहतर है कि स्पष्ट रूप से मुंह पर कह देना। बेशक रिश्ते कम रहेंगे, मगर जो रहेंगे सच्चे तो रहेंगे। और हम अपने श्रोताओं के साथ सच्चा रिश्ता निभाते हैं, तभी तो चाहते हैं कि वो हमेशा खुश रहें। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। इसलिए हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहिए।
1: क्यों मिली दर्द की मुझको सौगात है।
0: और अब दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने यही समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त भावना कत्ना को अनुमति दीजिए।

0: जी, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।
1: भाई शेर सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी च अहां अपने श्रोताओं दा, अपने किसान बागवान भाई बहनों दा जी असा स्वागत करते हैं ना
2: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जियां जी असा जो बेसब्री करने इंतजार रहंदा ना जी इस कार्यक्रम दा, उइयां ही अहां दे किसान भाई जी असा इंतजार करदे अपने इस कार्यक्रम दा। और इस कार्यक्रम च अहां जानकारियां ते दिंदे दिंदे कन्ने रौनका दा भी आनंद लांदे महाराज।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखा ना सारे काम जे ना सा थोड़े थोड़े होना जरूरी
1: जरूरी
2: है ना जी।
1: ठीक
2: थोड़े थोड़े कहने बढ़िया तरीके
1: बढ़िया तरीके ने
2: है ना। कहने दिखा ती हुण जे अह गल बात कर जे अजकल दे मौसम दी, ता अजकल दा मौसम इया दिखना जो ता गर्मिया दा मौसम है ना जी। पर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने।

0: ही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट रिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
2: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले साल की तुलना में 46% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ और उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 पर दर्ज हुआ। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:05 हुए हैं।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। आइए देशगान सुनते हैं।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप देश गान सुन रहे थे। शाम के 7:10 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। विषय है विदेश नीति। इसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें, तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें, तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी, बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद।
1: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किसमें गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
2: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूं, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूँ कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
1: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें, तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
2: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। पीएमएवाई प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले पीएमएवाई 1 था, पीएमएवाई 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। अभी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो टीओडी बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रैवल करने का मूड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रैवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें टीओडी पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही हैं, और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे मोबाइल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। पीएमएवाई में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो, हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करेंगे।
1: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना है, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है?
2: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में, राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं, और सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए, ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये

0: तभी ठीक हो सकता है कि जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है। और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें, खास करके जमीन, बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना यह आबादी हो गई है, और हमें अनुमान यह है कि 2047 तक यह आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTS बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है। आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम है, थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं, वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती है मध्यम।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे भी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा 7 कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी, 1-1.5 लाख की आबादी थी, ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहाँ 40 लाख हो गई है, और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है, कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, ULVs को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 योजना चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है,

0: भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टीयर टू टीयर थ्री शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1,00,000 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1,00,000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4,00,000 करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और वो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं। प्रदेशों को हमने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं।
1: जी,
0: 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती हैं मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेडी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से, लोगों से, साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेडी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरी बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए ले ले, उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे, जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट, 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी, और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स, यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है, और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में, और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं, जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझें? समझें?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सॉल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन, 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी मोवा की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में। तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में, शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का, ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है। और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है, जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है। रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते, एनवायरनमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए, जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहाँ मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारी ने बनाया और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं। लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती है तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में दे करके उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिला के 78,000 भारत सरकार देती है, टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उससे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूँ, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है, कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाएगी,
1: इनकम होने लगेगी।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूँ, किसानों की बिजली भी प्राय प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो, वो भी

0: कोई समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया। मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो, शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूं कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: This is Akashvani. In this special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, now we bring you an interview with Manish Sabharwal, co-founder of Team Lease Services. Interviewer is Anil Padmanabhan, senior journalist.
4: Over the last 12 years, India has strived to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy through labor reforms, digitization, decriminalization of laws. Under the Jan Vishwas framework, India strived to reduce friction, formalize the economy, and rebuild trust between the state, enterprise, and citizens. Yeah. Manish, you make a great point about the legacy of what India had and what has been undertaken in the last decade, particularly this pivot from reforms of conviction from earlier, the reforms of, you know, where you're forced to carry them out.
5: Compulsion.
4: So I just had a quick follow-up. One fallout of that legacy has been that the informality which you flagged, it has created a kind of low trust economy in India. The biggest example or metaphor for this is KYC. So these last decade and more, have we worked to chip away at this low trust economy? And another question, that another fallout of a low trust economy is that they treat somebody who's honest and dishonest the same way. There's no premium on being honest.
6: Well, that is because governance didn't shift from being rulers to being governors. There was a British mentality of subjects, which was carried forward in my mind in the Awadhi resolution and much of governance after independence, where we were placing our bets on control. The metaphor between entrepreneurs and government was tug of war. For one side to win, the other has to lose, rather than the dance between entrepreneurs, non-profits, and government. See, the government has an execution deficit, the private sector has a trust deficit, nonprofits have a scale deficit. But this lack of teamwork, which really is the low trust that you are talking about, arose from a regulatory system which did not prize rules over deals. I think it's very dysfunctional for people to continuously think about corruption, which is the transmission losses between how the law is written, interpreted, practiced, and enforced. See, Stalin's head of secret police used to say, show me the person, I'll show you the crime. Bureaucrats in India say, show me the person, I'll show you the rule. Now, this will obviously create a low trust society. But more importantly, it will be economically inefficient and disastrous. While if we have clear rules, if we trust our people, you know, Jan Vishwas as a concept, which I think represents the next wave or the next building on what has happened in the last 10 years, the next 10 years or 12 years, is about recognizing that if you write the laws for the chore, drunk driving is not an argument against cars. If you have a drunk driver, you don't ban cars. You issue licenses, you put the drunk driver in jail. But in India, we always write the law for the

0: really Bollywood, the bad person was inevitably the businessman. Today, largely because the state cast them, the support was covert, never overt.
1: Yes.
0: Today, they are legitimate stakeholder in the Indian economy. They are as much a factor of production. That should definitely provide a perfect foundation to launch this next phase, right?
1: There is no other way for India to create mass prosperity other than mass entrepreneurship. I know people think China's success is because of communism. It is because of how they have treated their entrepreneurs. I mean, we have had this innovation in China, whether it's EVs, whether it is this, not coming from government. It's coming from government support, but it is done by entrepreneurs. And we have classic examples of where good policy can create good industries in software and pharma. India exported more software than Saudi Arabia did oil because of the STPI policy in India and the H-1B policy in America. India made 60% of the world's medicines because of the 1970 Patents Act and the 1984 Hatch-Waxman Act. So I think policy can be a very powerful force for good. But finally, policy has to collide with ambitious, enchanting, and smart entrepreneurs. Fiscal and monetary policy may be overrated as a way to transform India. Government spending in India has gone up 108 times since 1990. Per capita GDP has gone up 8 times. The government used to spend about 82,000 crores in 1990. Today it spends 1,20,000 crores. So I think government spending is very important because a modern state is a welfare state. But that's not what it reduces extreme poverty. It doesn't create prosperity. And monetary policy, after a few years on the RBI board, I haven't decided whether it's a placebo or a painkiller or a steroid. It's definitely not a medicine. So what if it's not monetary policy and fiscal? It is the trust of entrepreneurs. It is giving the space to entrepreneurs to grow and putting the bad entrepreneurs in jail.
0: As always, enlightening to speak to you, Manish. Thank you so much for speaking to us.
2: In the special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, you were listening to an interview with Manish Sabharwal, co-founder of Team Lee Services. Interviewer was Anil Padmanabhan, senior journalist. This program will also be available on our YouTube channel, News on EIR Official.
3: अभी आप भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:45 हुए हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे।
4: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 7:45 हुए हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी की डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं।
5: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
6: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
5: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
6: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
5: जानकारी लें, अधिकार जाने।
6: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
5: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है जिसमें निशुल्क काउंसलिंग उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
8: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
7: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
9: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रदेश के 11 जिलों में नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों ने ली शपथ। कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों से ग्राम पंचायतों व समाज को चिट्टा मुक्त बनाने का किया आह्वान। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने तकनीक और विधिक जागरूकता के माध्यम से न्याय को जन जन तक पहुंचाने पर दिया बल। आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए आज प्रदेश भर में किया गया मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन। और प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण कल से होगा शुरू। पहले चरण में मकानों की गणना का होगा कार्य। अब समाचार विस्तार से। कांगड़ा जिला को छोड़कर प्रदेश के सभी 11 जिलों में आज ग्राम पंचायतों के नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाई गई। कांगड़ा जिले में ये समारोह 18 जून को प्रस्तावित है। शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू विशेष रूप से मौजूद रहे। समारोह में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को एंटी चिट्टा की शपथ दिलाते हुए उनसे चिट्टा मुक्त पंचायत व समाज बनाने का आह्वान किया।
10: चिट्टा को हम जन से हो जन भागीदारी का एक स्वरूप दे चुके हैं। इसका पहला चरण खत्म हो चुका, दूसरा चरण में अभी डिप्टी कमिश्नर एसपी एडीएम सभी अधिकारी और कर्मचारी जाकर स्कूलों में बच्चों को युवाओं को चिट्टे के प्रति जागरूक करेंगे।
9: मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नव निर्वाचित प्रधान व उप प्रधान विकास, जनसेवा और सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे। प्रदेश के अन्य जिलों में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाई। चंबा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शपथ समारोह में उम्मीद जताई कि पंचायत प्रतिनिधि अपने इलाके का विकास करवाने के लिए तत्परता से कार्य करेंगे। ऊना जिले के समूरकला में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रतिनिधियों से राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर एकजुटता से कार्य करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने जनप्रतिनिधियों से ईमानदारी से सभी कार्य पूरा करने का आह्वान किया। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कुल्लू में हुए समारोह में पंचायती राज को लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी बताते हुए बिना भेदभाव के जनसेवा के कार्य करने पर बल दिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने रिकांगपियो में किन्नौर जिले के जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। नाहन में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों को सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा और विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। बिलासपुर में शपथ समारोह के दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने पंचायत प्रतिनिधियों से जरूरतमंद व पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की अपील की। मंडी में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि 16वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के लिए 3744 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने हमीरपुर में आयोजित समारोह में कहा कि सराहनीय कार्य करने वाले जन प्रतिनिधियों को राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग में उप मुख्य सचेतक व विधायक केवल सिंह पठानिया ने जन प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद चंबा जिले के दुर्गम क्षेत्र पांगी की फिंडरू पंचायत के उप प्रधान देवी चरण वर्मा ने कहा कि सरकार के सहयोग से पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दी जाएगी।
11: देवी चरण वर्मा आज उप प्रधान के रूप में शपथ लेने के बाद मैं सबसे पहले ग्राम पंचायत फिंडरू के सम्मानित मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। सरकार के सहयोग से हम अपनी पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेंगे।
9: इस बीच पांगी घाटी के नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों ने सरकार से पांगी घाटी को अलग विधानसभा क्षेत्र का दर्जा देने की मांग की है। चंबा में आज पत्रकारों से बातचीत में इन प्रतिनिधियों ने कहा कि अलग विधानसभा क्षेत्र बनने से इलाके का समग्र विकास सहित जन समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सकेगा। उन्होंने वर्ष भर निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने के लिए चेहणी पास सुरंग का जल्द निर्माण करने की मांग उठाई। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने तकनीक और विधिक जागरूकता के माध्यम से न्याय को जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया है। धर्मशाला में आज भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला न्याय, समानता और विधि के शासन पर आधारित है। हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य में न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के अनेक क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम हैं, जहां नागरिकों तक सेवाएं पहुंचाना चुनौतीपूर्ण है। कार्यशाला में केंद्रीय विधि व संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दुर्गम क्षेत्रों के लोगों तक न्याय सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रों तक न्याय पहुंचाने में कॉमन सर्विस सेंटर और टेली लॉ जैसी पहलें अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसी कार्यशालाओं का उद्देश्य पिछले 12 वर्षों में न्यायिक व विधिक क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों से लोगों को अवगत करवाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव में विधायकों को मतदान करने से रोकने संबंधी प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब विधायक इन चुनावों में मतदान कर सकेंगे। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि वर्तमान केंद्र सरकार के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है और प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में जनता का अटूट विश्वास बना हुआ है।
12: 2014 से लेकर 2026 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने एक लंबी छलांग लगाई है। आज जिस प्रकार से हमारा देश दुनिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आया है, ये तभी संभव हो पाया कि हमारे पास एक बहुत ही मजबूत नेतृत्व है जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है और जिनके प्रभाव के कारण आज देश की दिशा और दशा बदलने का काम हुआ।
9: प्रदेश में आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए आज राज्यव्यापी मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। ये मॉक ड्रिल भूकंप, बादल फटने और वनों में आग लगने जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारियों को और मजबूत बनाने के लिए करवाई गई। मॉक ड्रिल के दौरान पिछले मॉक अभ्यासों में दिखाई गई प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा भी की गई। इसके अलावा बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों जैसे संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा, निकासी और राहत व्यवस्था को और मजबूत बनाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन से जुड़े कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान भी की गई जिनमें भविष्य में और सुधार की आवश्यकता है। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण कल 16 जून से औपचारिक रूप से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। ये जनगणना आगामी 15 जुलाई तक संचालित की जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि इस बार की जनगणना डिजिटल माध्यम से की जा रही है, जिसमें प्रगणक HLO मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे हैं। निदेशालय ने सभी नागरिकों से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में अपना पूरा सहयोग देने का आग्रह किया है। ऊना जिले में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर के विकास और सौंदर्यकरण कार्य पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज मंदिर की विकास और विस्तारीकरण परियोजना की तैयारियों का जायजा लेने के बाद बताया कि ये निर्माण कार्य जल्द आरंभ किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य से जुड़ी सभी औपचारिकताएं जल्द पूरा कर तुरंत प्रभाव से कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 11 जिलों में नव निर्वाचित प्रधानों व उप प्रधानों ने ली शपथ। कांगड़ा जिले में 18 जून को होगा समारोह। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से ग्राम पंचायतों व समाज को चिट्टा मुक्त बनाने का किया आह्वान। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने तकनीक और विधिक जागरूकता के माध्यम से न्याय को जन जन

0: तक पहुंचाने पर दिया बल। आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए आज प्रदेश भर में किया गया मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन और प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण कल से होगा शुरू। पहले चरण में मकानों की गणना का होगा कार्य। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
6: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं, किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
7: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विशेष भेंट वार्ता, केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियां और विकास की यात्रा। प्रतिभागी होंगे हिमाचल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर श्री अजय श्रीवास्तव और भेंटकर्ता होंगे सीनियर पत्रकार श्री उज्ज्वल शर्मा। इसे आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा।
8: आकाशवाणी शिमला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ उज्ज्वल शर्मा। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की NDA सरकार ने 26 मई 2014 से देश की बागडोर संभाली और अब 12 वर्षों का लंबा सफर तय कर लिया है। इन 12 वर्षों में देश ने अनेक क्षेत्रों में बदलाव और विकास के नए आयाम देखे। इस कालखंड में भारत की सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक विकास यात्रा का महत्वपूर्ण दौर रहा। इन वर्षों में देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। गरीबी, बेरोजगारी, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास जैसे अभियान जमीन पर उतरे और कई योजनाएं आम लोगों तक पहुंची। इसी पर केंद्रित हमारी आज की परिचर्चा है जिसका विषय है केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष, उपलब्धियां और विकास की यात्रा। आकाशवाणी के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत इस परिचर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन 12 वर्षों में देश की तस्वीर कैसे बदली, गरीब, युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए क्या कुछ नया किया गया और आने वाले समय में देश को विकसित बनाने की दिशा में क्या संकल्प लिए गए। तो प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
9: धन्यवाद उज्ज्वल शर्मा जी, और आकाशवाणी शिमला का भी धन्यवाद जो इतने महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय पर आज का कार्यक्रम रखा है।
8: प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्षों की विकास यात्रा और उपलब्धियों को एक समग्र रूप में किस नजरिए से देखते हैं।
9: देखिए, एक पत्रकार की दृष्टि से मैं पिछले लगभग 4 दशक से भी अधिक समय से हिमाचल प्रदेश ही नहीं

0: पूरे देश की राजनीति विकास यात्रा को देख रहा हूं। मैंने राजीव गांधी जी का समय भी देखा, उसके बाद की सरकारें भी देखी, और पिछले 12 वर्षों से जो अभी एनडीए की सरकार है इसको भी देख रहा हूं।
1: जी
0: विकास की दृष्टि से अगर हम देखें, समग्र विकास की दृष्टि से, तो इस समय हमने देखा कि जो भी कुछ यहाँ परिवर्तन हुआ है वो अभूतपूर्व है। इससे पहले किसी भी सरकार में 12 वर्षों में या 10 वर्षों के दौरान इतना मेजरेबल, जो हम कह सकते हैं जिसको मापा जा सकता है, उतना परिवर्तन, और वो सकारात्मक परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन, वो पिछले 40-50 साल में मैंने स्वयं में नहीं देखा।
1: जी
0: तो इसलिए कोई देश में कोई भी विषय है या कोई भी वर्ग है, वो एक नारी, महिला, बेटियों से लेकर के हमारी सुरक्षा, रक्षा, प्रतिरक्षा तक, हमारी विदेश नीति तक, हमारी ऊर्जा क्षेत्र में इतना परिवर्तन सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा गया पहले कभी भी।
1: जी यानी कि पिछले 12 वर्षों में सरकार की काम करने की शैली और योजनाओं में कई बदलाव देखे गए हैं।
0: बिल्कुल बुनियादी बदलाव। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली और उसके कुछ ही समय बाद जो एक योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन,
1: जी
0: उसको रिप्लेस किया नीति आयोग से, तो नीति आयोग के काम करने का ढंग प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग से बिल्कुल फर्क है। ये भारत का सर्वोच्च थिंक टैंक है और ये ग्रास रूट लेवल से इनपुट लेकर के योजनाएं बनाता है। पहले होता था कि योजनाएं दिल्ली में केंद्र में बनाई जाती थी और नीचे तक उनको थोपा जाता था। अभी है कि योजनाओं का इनपुट नीचे से आता है, उनकी आवश्यकताएं नीचे से पंचायत स्तर से उसकी शुरुआत होती है और फिर वो योजना ऊपर जाकर के बनती है। तो ये एक बुनियादी अंतर है। इसलिए हमें विकास की गति और उसके माप में भी बिल्कुल बुनियादी अंतर दिखाई देता है।
1: बिल्कुल, विकास के कामों में इन 12 वर्षों में तेजी आई है और कई नई नीतियां बनी हैं जिससे देश के कामकाज के तरीकों में बदलाव महसूस किया गया है। प्रोफेसर साहब, नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। इस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं?
0: ये भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूं, कारनामा है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जिसमें इतने प्रकार के मत संप्रदाय, इतने प्रकार की भाषाएं, इतनी जनजातियां, जातियां, और राजनीतिक स्तर इतना गिरावट की ओर जा रहा है, ऐसे में विशाल जनमत के साथ देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व में जहां कहीं पर भी लंबे समय तक लोग प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यानी सत्ता पर काबिज रहे, उनके देशों के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो देश लोकतांत्रिक देश आमतौर पर नहीं होते हैं। या तो वहां एक पार्टी की सरकार होती है, जैसे चाइना है, कम्युनिस्ट पार्टी है, या फिर वहां तानाशाही होती है। इतने 140 करोड़ से ऊपर की आबादी वाले देश में लगातार इतने लंबे समय तक, नेहरू जी का हम नाम लेते हैं कि अभी तक वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन मोदी जी ने उनसे भी आगे निकल करके एक कीर्तिमान बनाया है। इसीलिए विश्व के जितने प्रमुख नेता हैं, सबकी ओर से भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को और जनता के लिए बधाई संदेश आए हैं। ये कोई मामूली घटना नहीं है।
1: जी अजय श्रीवास्तव जी, केंद्र सरकार का दावा है कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो गरीबी मिटाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन-कौन सी योजनाएं लागू की और इनका असर कितना हुआ?
0: देखिए, मैंने वो समय भी देखा है, हम सभी ने देखा है, जब गरीबी हटाओ का नारा हर चुनाव में दिया जाता था और गरीबी हटाने पर फोकस कभी भी नहीं किया जाता था, क्योंकि अगर लोगों की गरीबी हट गई, उस समय सोचा जाता था, तो फिर वो सरकार से ज्यादा अपेक्षाएं रखेंगे, डिमांड करेंगे, और वो नियत सरकार की नहीं होती थी, वो मंशा नहीं होती थी। मोदी सरकार ने जिस प्रकार से 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया है, ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि भारत में कुछ योजनाएं ऐसी थी जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया, जैसे महिलाओं को समाज में समान भागीदारी देना, उनके लिए किस प्रकार की योजनाएं, क्योंकि महिला परिवार की धुरी होती है और आमतौर पर चाहे वो समाज का अंतिम वर्ग है और चाहे वो उच्चतम वर्ग है।
1: जी
0: महिलाएं अगर कार्य नहीं करती हैं, कार्य करती हैं लेकिन आर्थिक रूप से वो परिवार को संबल नहीं देती हैं, तो परिवार ठीक ढंग से नहीं चल पाता है। और ये हो रहा है, चाहे वो कोई श्रमिक है और चाहे कॉरपोरेट सेक्टर है, सब जगह महिलाएं काम कर रही हैं। लेकिन जो श्रमिक है उस लेवल पर महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई, विभिन्न प्रकार के उनको काम सिखाए गए और उनकी स्किल में सुधार किया गया। अब जैसे हम देखते हैं, बिल्कुल नया आइडिया था ड्रोन दीदी का।
1: जी
0: महिलाएं गांव में ड्रोन चलाती हैं और वो खेती में सहयोग करती हैं। इसी प्रकार से मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, किसानों के लिए MSP बढ़ी, उनके खाते में हर साल 6,000 रुपए डाले गए ताकि वो अपनी खेती का काम सुचारू ढंग से जो है संचालित कर सके।
1: जी
0: और इसी प्रकार से कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, अछूता नहीं है, जो कि समाज का सबसे अंतिम वर्ग हो और उसके लिए सशक्तिकरण का काम ना हुआ हो। यही वजह है कि पिछले 10-12 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया और गरीबी रेखा से वो बाहर आने में सफल हुए।
1: अजय श्रीवास्तव जी, आपने महिला सशक्तिकरण की बात की, श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। इसी में हमने देखा है कि उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। इन योजनाओं से आप कितना बदलाव महिलाओं के सामाजिक स्तर में देखते हैं?
0: ये बदलाव मापा जा रहा है, इस पे बहुत से संस्थान और यूनिवर्सिटीज शोध कर रही हैं कि ये बदलाव आया तो कैसे आया।
1: जी
0: अब उज्ज्वला योजना की भी हम बात अगर करते हैं, तो गांव में मुझे अपना समय याद है, मेरी माताजी कैसे, और मेरी एज के नहीं और भी बहुत से हमसे छोटी एज के भी लोग, उम्र के लोग जानते हैं कि माताओं की आंखें धुंधली पड़ जाती थी और चूल्हे से ना सिर्फ उनको सांस की बीमारी होती थी, आंखों की रोशनी कम हो जाती थी, उनकी स्किन खराब होती थी, त्वचा रोग हो जाते थे और पूरे घर में धुएं का वातावरण रहता था। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को संबल दिया, उस संबल का ये नतीजा है कि आज महिलाओं की आंखों की रोशनी और सांस की बीमारियां, इसको मापा जा सकता है, सर्वे हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, किस प्रकार से उसमें लाभ हुआ है। अब महिलाओं को संघर्ष नहीं करना पड़ता है, जंगल से लकड़ियां काट के लाने में जो समय लगता था वो एक गैस चूल्हा जलाने में लाइटर की देरी है कि गैस उनके लिए तैयार हो जाती है,
1: जी
0: और उसमें भी हाईली सब्सिडाइज रेट्स पर उनको गैस चूल्हे या जो है निशुल्क भी मिले हैं, और जो गैस सिलेंडर है उसमें काफी सब्सिडी मिलती है। ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो गई, हमारी माताओं बहनों के लिए। और इसके अलावा आपने कहा
1: बेटी
0: बेटी बचाओ
1: बचाओ
0: बेटी
1: बेटी
0: पढ़ाओ,
1: पढ़ाओ। जी
0: बेटियों की स्थिति क्या थी कि भ्रूण हत्या में कई राज्य तो ऐसे थे जो विश्व रिकॉर्ड बना रहे थे। अब
1: जी
0: उसका लिंगानुपात जो है वो बहुत ही सुधरा है पिछले 12 वर्षों में, और इसके साथ साथ बेटियों की शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा फोकस किया गया है। हम सब जानते हैं कि अगर कोई बालक पढ़ता है तो वो सिर्फ सिर्फ पुरुष ही समाज में पढ़ते हैं, अगर घर की बेटी पढ़ती है तो कल को जब विवाह होता है, उसकी बेटियां होती हैं, बच्चे होते हैं, तो पूरा परिवार पढ़ जाता है।
1: जी
0: तो ये परिवर्तन भी हमें पिछले 12 वर्षों में देखने को मिला, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में बेटियों को न सिर्फ भ्रूण हत्या और अत्याचारों से उन्हें सुरक्षित किया गया, बल्कि उनकी शिक्षा पर, उनके सशक्तिकरण पर, उनकी स्किल इंप्रूव करने में तरह तरह की उनकी योजनाएं चला करके बेटी को आत्मनिर्भर बनाया गया। और मोदी जी का शुरू से मानना है, लाल किले से भी उन्होंने कहा था कि अगर बेटी समाज में पढ़ती है तो बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने आप हो सकता है।
1: बिल्कुल अजय श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री जनधन योजना को वित्तीय समावेशन की बड़ी पहल माना जाता है और केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2014 को PM जनधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की क्या अहमियत रही और क्या इस योजना के जरिए सरकार देश के वंचित गरीब तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने में कामयाब रही?
0: बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों नए लोग जो कि बैंक का दरवाजा खोल करके अंदर घुसने का साहस नहीं कर पाते थे, बैंक का चौकीदार उनकी स्थिति देखकर, उनके कपड़े देखकर उनको अंदर नहीं घुसने देता था, अब वो सम्मानित लोग हैं जो बैंक में जाते हैं, सम्मान के साथ उनका खाता खोला गया और वो अपना लेन देन और अपनी बचत बैंक के माध्यम से करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, विश्व में इतने बड़े पैमाने पर बैंक अकाउंट खोले जाएं ये कहीं नहीं हुआ था
1: जी
0: अगर हम देखें। और मैं आपको बताता हूं कि किन वर्गों को इससे लाभ हुआ। मैं चूंकि समाज में काम करता हूं, हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे, जैसे नारी सेवा सदन है शिमला का, या हमारा ओल्ड एज होम है,
1: जी
0: इनमें जो संवासी

0: रहते थे, इनमेट्स रहते थे, उनकी पेंशन मनी ऑर्डर के तौर पर आती थी और उनका कोई खाता नहीं था। मुझे इस बात की खुशी है कि जनधन योजना लाए जाने के बाद जितने भी इनमेट्स हैं, चाहे वो नारी सेवा सदन के हैं, चाहे वो हमारे वृद्धाश्रम के हमारे बुजुर्ग हैं, सबके खाते खोले गए। उससे पहले इनका बैंकिंग का रिकॉर्ड ही कोई नहीं था, जबकि आजाद हुए हमें कितने वर्ष बीत गए, इन सभी लोगों के बैंक खाते खुले जो कि कभी बैंकिंग सेक्टर से जिनका वास्ता ही नहीं पड़ता।
1: यानी कि गरीब और ग्रामीण लोगों के साथ साथ जो भी जरूरतमंद लोग थे वो बैंकिंग से जुड़े हैं
0: बिल्कुल
1: और सरकारी मदद सीधे लोगों के खातों में पहुंचने लगी है, जिससे पैसे देने की व्यवस्था आसान और तेज हुई है।
0: बहुत बहुत आसान। अब जैसे गांव-गांव में बैंकिंग सिस्टम इस प्रकार से फैल गया कि जो लोग जिनके खाते नहीं थे आज नजदीकी ब्रांच में जाते हैं, या अगर उनको कहीं राशि जमा करनी होती है तो वो भी उनके लिए संभव है कि अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उनके घर पे भी उनको ये सेवाएं मिल जाती हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के जरिए हो और चाहे वो बैंक के जरिए हो।
1: प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में गिना जाता है।
0: बिल्कुल
1: आपके अनुभव के आधार पर इस योजना ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता पर क्या प्रभाव डाला है?
0: देखिए, मैंने स्वयं देखा है, खास करके हिमाचल प्रदेश में, यदि घर का कोई सदस्य गंभीर बीमार हो गया, जैसे कैंसर है या कोई और है या कोई दुर्घटना है और उनको भर्ती होना पड़ता था, तो घर के माता बहनों के जेवर और फिर बाद में जमीन भी बेच करके वो इलाज कराते थे।
1: जी
0: उस स्थिति में और आज की स्थिति में बिल्कुल एक बुनियादी फर्क आ गया है। 5 लाख रुपए तक का एक परिवार का जो खर्चा इलाज का है वो इन योजनाओं के जरिए सरकार वहन करती है। तो ऐसे बहुत से केस ऐसे हैं जो मैंने स्वयं देखे, जिनमें कि वो लोग, जैसे एक बच्चा था हमारा, ब्लाइंड था, ब्रेन ट्यूमर था उसको, सिरमौर जिले का, वो पीजीआई में था और अगर आयुष्मान भारत योजना नहीं होती तो वो शायद इलाज नहीं करा पाता। तो इस प्रकार से एक आम व्यक्ति जिसके पास कोई स्वास्थ्य बीमा का कोई कवर नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसके पास जेवर और जमीन बेचने के अलावा कुछ नहीं था, उसको 5 लाख रुपए का उसका इलाज अगर वो भर्ती होता है, ये उसके सपनों से भी बाहर की बात थी।
1: यानी कि इस योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति की तरह काम किया है।
0: बहुत बड़ी क्रांति। एक तो ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में या जो लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल निम्न आय वर्ग के थे, इलाज नहीं करा सकते थे, जिनको कहीं से रिएम्बर्समेंट नहीं होता था, एक तो ये उनका संभव हुआ। दूसरे, जो भी स्वास्थ्य संस्थान है उनको सरकार की ओर से रिएम्बर्समेंट हो जाता है, तो टोटल मेडिकल फील्ड का बिजनेस भी बढ़ा।
1: प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, कृषि क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों को आप कैसे आंकते हैं, विशेषकर पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर?
0: बिल्कुल, ये भी बड़ा आपका सवाल बहुत ही माकूल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। किसानों को लेकर के इस देश में बहुत नारेबाजी होती रही, आंदोलन होते रहे और वो राजनीतिक दृष्टि से वोट पाने के लिए था। जो हमारी एनडीए सरकार आई उसमें वोट के लिए नहीं बल्कि किसानों की स्थिति में आमूलचूर परिवर्तन के लिए काम किया गया और उसका नतीजा है कि एक 6,000 रुपए साल की किसान सम्मान निधि तो एक है, उनको समय पर खाद मिलना और ये किसान क्रेडिट कार्ड से उनको समय पर सहायता मिल जाती है, और इसके अलावा उनके बच्चों के लिए कई प्रकार की योजनाएं हैं। महिलाओं को जो खेती किसानी का काम करती थी लेकिन कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था, कोई उनको सम्मान नहीं मिलता था, वो भी एक बहुत बड़ी बात हुई। और ड्रोन दीदी ड्रोन चलाती हैं, ये सारे काम खेती के बिल्कुल सुचारू ढंग से चलने लगे, क्योंकि नियत सरकार की ये थी कि किसानों की स्थिति, अन्नदाता की स्थिति अगर नहीं बदली तो ये देश कभी भी विकसित देश नहीं बन सकता है, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ है।
1: किसानों को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम हुआ
0: बहुत
1: है।
0: बड़ा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग हुई है ये, और उस छलांग का ये नतीजा है कि अभी आप गांव में किसी भी किसान से बात करेंगे तो वो कहेगा कि पिछले 12-13 वर्ष से पहले का जो समय था उसमें जो उनको कठिनाइयां थी आज उनमें बहुत आसानी हो गई है।
1: प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने का सरकार ने दावा किया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप इस पहल के सामाजिक प्रभाव को कैसे देखते हैं?
0: बहुत

0: प्रभाव है। मैं तो स्वयं इसमें भागीदार हूं। एक ब्लाइंड लड़की थी, माता पिता भी नहीं थे, बहुत जीवन उसका बिल्कुल कष्ट में था। उसका नाम था उषा और वो शिमला की थी।
1: जी
0: इस आवास योजना के लिए उसका नाम आया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और उसने कभी सपना भी नहीं देखा था कि उसका अपना मकान होगा। वो ढारे में या झुग्गी में जैसे भी रहती थी। उसके लिए कुछ पैसों की आवश्यकता थी। हमने समाज के सहयोग से पैसे जमा किए और उषा को बड़ी आसानी से नगर निगम शिमला से शहरी क्षेत्र में मकान मिल गया। इसी तरीके से धर्मशाला में भी मैंने देखा, बहुत बड़े पैमाने पर जिन बच्चों के साथ मैं काम करता हूं, या हमारे साथी एक लामा है जामयांग जी, उनका टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनके सहयोग से वहां पर इस आवास योजना के अंतर्गत उन झुग्गी झोपड़ी वालों को बड़े पैमाने पर मकान मिले जिन्होंने कभी सपना भी नहीं देखा था, कभी सोचते भी नहीं थे। झुग्गियों में उनके नाती पोते तक झुग्गियों में हो गए थे। अब वो शान से अपने मकान में रहते हैं और उनके बच्चे एक सुरक्षित जगह छत के नीचे बिजली की रोशनी में आज पढ़ाई कर रहे हैं। ये आम लोगों के सामने ये बातें हैं, इसमें कोई दावा नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है।
1: प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, आप स्वयं दिव्यांग जन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उमंग फाउंडेशन के माध्यम से सक्रिय रहे हैं, ऐसे में आप केंद्र सरकार की दिव्यांग जन कल्याण योजनाओं को किस तरह देखते हैं?
0: देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें मोदी सरकार 2016 में एक नया कानून लाई जिसका नाम था राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। उससे पहले दिव्यांग जन कानून था 1995 का। वो बहुत, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था एक मामले में कि बैडली ड्राफ्टेड एक लॉ है ये। उसके लिए हजारों लोग, सामाजिक कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि ये कानून बदला जाए, इसको रिप्लेस किया जाए, और मोदी सरकार 2016 में एक बिल्कुल नया कानून लाई। पहले कानून में सिर्फ 7 प्रकार की दिव्यांगताएं या विकलांगताएं आइडेंटिफाई की गई थी। नए कानून में उनकी संख्या बढ़ाकर 21 हो गई, यानी कि उसका दायरा भी व्यापक किया गया। और उसमें जैसे थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, और उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बहुत से ऐसे वर्गों को उसमें जोड़ा गया जिसमें कि स्पीच इंपेयरमेंट भी है। जैसे पहले था कि जो लोग बोल नहीं सकते थे और सुन नहीं सकते
1: जी
0: थे, वही लोग दिव्यांगता में आते थे। अब जो सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, वो भी इसमें शामिल हो गए। तो इनके लिए, चूंकि इसका दायरा बढ़ाया गया, तो बहुत ज्यादा बड़ी आबादी इसके दायरे में आ गई। और उनके लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं, जैसे उनके लिए लोन देना, उनके लिए मकान के लिए, चाहे चाहे शिक्षा का है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बहुत से बच्चे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी या केंद्रीय विश्वविद्यालय या दूसरे विश्वविद्यालयों के ऐसे हैं जिनको कि भारत सरकार से पीएचडी करने के लिए एक दिव्यांग होने के नाते स्कॉलरशिप मिलती है।
1: जी
0: अगर वो स्कॉलरशिप नहीं होती तो ये दिव्यांग बच्चे नहीं पीएचडी कर सकते थे। इस प्रकार के शिक्षा में भी है, इनको मकान में भी है, लोन लेने के लिए भी है। अगर इनको मकान लेना है तो लोन मिलेगा, रोजगार अगर इनको चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इसमें लोन है, और बहुत से अन्य लाभ इनके लिए सरकार के नए कानून के अंतर्गत सुनिश्चित किए गए।
1: यानी कि दिव्यांग जनों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में काम हुआ है।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सरकार का यह मानना है कि कोई भी वर्ग अगर विकास की दौड़ से अछूता रह गया तो देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो दिव्यांग जनों की इतनी बड़ी आबादी है जिसको कि विकास की दौड़ से बिल्कुल बाहर रखा गया था, तो मोदी जी ने उनको सहारा दिया, संबल दिया, और आगे लाने के लिए उनके योजनाओं के माध्यम से, कोई दया दृष्टि नहीं, चैरिटी नहीं, उनको अधिकार देने के नाते से। अब जैसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की मैं बताता हूं, वहां दिव्यांग बच्चों को बहुत मुश्किलें होती थी, कोई लिफ्ट नहीं थी, रैंप नहीं थे, और बहुत से ऐसी चीजें नहीं थी। अब भारत सरकार के सहयोग से वहां पर कई लिफ्ट लग गई, रैंप बन गए, और बहुत से, और वहां पर एक्सेसिबल लाइब्रेरी बनी, उसमें भारत सरकार का पैसा है। एक्सेसिबल लाइब्रेरी में कोई ब्लाइंड बच्चा कंप्यूटर पर बैठ करके आराम से काम कर सकता है। चूंकि मैं विश्वविद्यालय का नोडल ऑफिसर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज था, तो मैंने स्वयं अनुभव किया कि आज से 12-14 साल पहले और आज के हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दिव्यांग बच्चों की स्थिति में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और जब लोग कहते थे कि इनको भीख दे दो और आगे बढ़ जाओ, अब मैं कहता हूं इनको शिक्षा दे दी गई है, इनको आरक्षण दे दिया गया है, भीख की बजाय ये बच्चे खुद नौकरी कर रहे हैं, और अगर जो देख नहीं सकते हैं वो कार खरीदेंगे और ड्राइवर रखेंगे।

0: तो ये परिवर्तन हम सबके सामने है।
1: बिल्कुल प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या बन गई है। हर सरकार के समक्ष इससे निपटने की चुनौती रहती है। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने बेरोजगारी से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
0: देखिए, शुरू में ही जब प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कार्यभार संभाला, तो उन्होंने जो युवा पढ़े लिखे थे और नौकरी की दौड़ में थे, उनमें सबसे पहले उनको कहा कि आप नौकरी ढूंढने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं अपने परिवार में और बहुत से युवाओं को जो नौकरी कर रहे थे या नौकरी ढूंढ रहे थे, और उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। अब वो 10-10, 12-12, 15-15 लोगों को रोजगार दे रहे हैं।
1: जी
0: तो एक ये मानसिकता का बदलाव हुआ कि सरकार की नौकरी ढूंढने की बजाय आप स्वयं अपना स्टार्टअप शुरू करें, कोई सोशल इंटरप्राइज शुरू करें और दूसरे लोगों को जो उस लेवल पर, आपके लेवल पर नहीं आ पाए हैं, उनको रोजगार दें। इसके साथ ही जो स्किल इंडिया एक योजना है, उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी काम हुआ है, अभी आप देखें कि हमारी जितनी ITI थे या जितने हमारे पॉलिटेक्निक थे, उसमें कंप्यूटर साइंस का या तो कोई कार्यक्रम नहीं चलता था या बहुत सीमित मात्रा में था। AI तो बिल्कुल नहीं था।
1: जी
0: अब बहुत से ITI लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज से बाहर का दायरा है, जिसमें कि बच्चे आज AI की ट्रेनिंग लेकर के, स्किल डेवलप करके समाज में काम करेंगे। और AI का इतना बड़ा इस्तेमाल है, चाहे वो एनिमेशन है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्शन का काम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो AI के बिना आज नहीं हो सकता है। तो सरकार नौकरी देती है, लेकिन सरकार ने उसके साथ साथ बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर काम किया कि आज बहुत से लोग जो एक रोजगार ढूंढते थे, आज कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो इससे भी बेरोजगारी की दर में और बेरोजगारों की संख्या में पिछले 12 वर्षों में एक मेजरेबल, जिसको मापा जा सकता है, उतनी कमी आई है। ठीक है, दर तो कुछ ना कुछ लगातार बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए प्रयास भी निरंतर चल रहे हैं।
1: बिल्कुल अजय श्रीवास्तव जी, डिजिटल इंडिया की बात करें तो आज के दौर में जो डिजिटल पेमेंट हो रही है, कैशलेस पेमेंट हो रही है, तो इसे भी एक तरह से क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। मोबाइल से सारी पेमेंट्स हो रही हैं, कैश रखने की जरूरत नहीं है। आप इस डिजिटल पेमेंट के लाभ और चुनौतियों को कैसे देखते हैं? क्योंकि इसके साथ साथ डिजिटल ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध भी बढ़ रहा है।
0: देखिए, समाज में कोई भी अच्छा काम होता है तो उसका दुरुपयोग भी साथ साथ चलता रहता है। लेकिन हम देखें कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों जब दिल्ली आए और मजनू का टीला या किसी स्थान पर मोदी जी के साथ गए, और एक छोटी सी शॉप पर या ढाबे पर उन्होंने डिजिटल पेमेंट किया, तो वो हैरान रह गए।
1: जी
0: मतलब यूरोप के जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके लिए भी एक कल्पना करना मुश्किल है कि छोटा सा गोलगप्पे वाला भी QR कोड स्कैनर लेकर के बैठा होता है और सारा पेमेंट डिजिटल हो जाता है, 5 रुपए, 10 रुपए से लेकर के बड़े बड़े पेमेंट। तो ये लाभ ये है कि जेब में करेंसी नहीं रखनी पड़ती है।
1: जी
0: फिर कई मित्र देश ऐसे हैं भारत के, जहां जाने पर डिजिटल पेमेंट आसानी से आप कर सकते हैं। वरना क्या था कि आप कोई जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लेकर के जाएं, उसके ऊपर फीस ज्यादा लगती थी, ये सब था। अभी कई देशों में मैंने स्वयं इस्तेमाल किया विदेशों में, कि हमारा जो UPI है वो आसानी से, जैसे सिंगापुर है, UPI से वहां पेमेंट हो जाता है। अभी
1: जी
0: नेपाल में भी शुरू हुआ, भूटान,
1: जी
0: अभी हम पिछले दिनों गए थे तो भूटान में भी हमने कोई करेंसी जेब से निकाली ही नहीं, सब जगह पेमेंट हमारा UPI से हो गया। तो ये एक आसानी हो गई। और दूसरा, जहां तक साइबर क्राइम है और इसका दुरुपयोग है, तो इस फील्ड में सरकार की ओर से बहुत सुधार किए गए, बहुत काम किए गए, लेकिन अभी भी इससे निपटने के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है। क्योंकि हम देखते हैं बिल्कुल नए नए तरीके आ जाते हैं
1: जी
0: जो सरकार के नीति निर्माता सोचते भी नहीं है, क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं उनका भी IQ बहुत शार्प है, वो इस प्रकार के अपराधी हैं। तो इस फील्ड में अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है।
1: अंत में विकसित भारत 2047 के संकल्प को आप एक शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
0: देखिए, पिछले आजादी के बाद से हमने सिर्फ दूसरे देशों की निर्भरता पर फोकस किया कि हम रक्षा मामले हैं, खाद है, अनाज है, हमारा पेट्रोलियम उत्पाद है या अन्य चीजें हैं, हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, यही हमारी नियति थी। कभी ये सोचा ही नहीं गया कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा और विकसित भारत का सपना भी होगा, ये तो कभी किसी ने नहीं सोचा था। भारत को विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में काम होना चाहिए, और जब से मोदी जो है प्रधानमंत्री बने, इन्होंने एक संकल्प के तौर पर इसको लिया। और जो कुछ अब जैसे रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में हम देखें, हम कभी भी निर्यातक थे ही नहीं, आज बड़े पैमाने पर निर्यात हो रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल कई देशों में जा चुकी है, विमान बेचने की तैयारी है, गोला बारूद और दूसरी चीजें जा रही है। इसके साथ साथ जैसे प्राइवेट कंपनियां हैं, वो लोग सैटेलाइट यानी उपग्रह बना रही हैं और वो लॉन्च हो रहे हैं, तो ये विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ कदम है।
1: प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, आप आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में आए और आपने बेहद सरल व स्पष्ट शब्दों में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की विकास यात्रा, योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद और आकाशवाणी शिमला का भी।
1: श्रोताओं, आज की इस परिचर्चा में हमने जाना कि इन 12 वर्षों में भारत ने विकास, आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। चाहे बात गरीबों के कल्याण की, महिलाओं की सुरक्षा हो या किसानों की मदद, मोदी सरकार ने हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई और उन्हें लागू भी किया। देश के विकास की यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें सरकार, समाज और नागरिक सभी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी के साथ मुझे उज्जवल शर्मा को ये परिचर्चा समाप्त करने की अनुमति दें। इस कार्यक्रम की परिकल्पना आकाशवाणी समाचार एकांश के सहायक निदेशक रितेश कपूर जी ने की थी। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और एफएम शिमला।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष भेंट वार्ता, केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष की उपलब्धियां और विकास की यात्रा। इसे आकाशवाणी शिमला से रिले किया गया। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं न्याय विभाग भारत सरकार के विधिक एवं न्याय मंत्रालय द्वारा धर्मशाला में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला एवं सुधार उत्सव पर आधारित समारोह पर रेडियो रिपोर्ट।
4: न्याय विभाग भारत सरकार के विधिक एवं न्याय मंत्रालय द्वारा धर्मशाला में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला एवं सुधार उत्सव पर आधारित समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
5: न्याय विभाग भारत सरकार के विधिक एवं न्याय मंत्रालय द्वारा माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश श्री कविंद्र गुप्ता एवं माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विधिक एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार श्री अर्जुन राम मेघावल की गरिमामयी उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश जिला कांगड़ा की धर्मशाला में क्षेत्रीय कार्यशाला एवं सुधार उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों के साथ अधिवक्ताओं, विधिक अभ्यर्थियों और अन्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रस्तुत है समारोह के संपादित अंश। माननीयों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।

0: हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता ने औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की। न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से न्याय प्रबोध अवोकनिंग टू जस्टिस का आगाज किया गया और वित्त चित्रों के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को जागरूक किया गया।
1: न्याय तभी सार्थक होता है जब लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और उनका प्रयोग करने के लिए सशक्त हों। आज न्याय प्रबोध न्याय के प्रति जागरूकता नामक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हो रही है जो देश भर में विधिक जागरूकता विधिक साक्षरता और नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित वर्ष भर चलने वाला अभियान है। मैं माननीय राज्यपाल से सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया इस अभियान की औपचारिक शुरुआत करें।
2: आज धर्मशाला के इस पावन धरती से विधिक जागरूकता और साक्षरता को लेकर एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत हो रही है। सभी भारतीयों को उनके कानूनी अधिकारों

0: स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। धौलाधार पर्वतमाला की गोद में आयोजित यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि न्याय के प्रति जन जागरूकता, संवैधानिक मूल्यों के प्रसार एवं नागरिकों को सशक्त बनाने के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। मैं विशेष रूप से माननीय राज्यपाल महोदय तथा माननीय राज्य मंत्री विधि एवं न्याय मंत्रालय का इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ।
1: माननीय विधिक एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघावल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा,
2: आज विधि और न्याय मंत्रालय के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक बहुत ही पवित्र शहर में, धर्मशाला में, और एक रिफॉर्म उत्सव का कार्यक्रम भी हम यहाँ से आज शुरू करने जा रहे हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण। जो प्रतिभागी आए उन्होंने भी अपनी बात की, और अभी प्रधानमंत्री जी का एक संदेश आपने सुना कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का जन्म संविधान के कोख से हुआ और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये प्रधानमंत्री जी का अभी संदेश आपने सुना। संविधान में ही आर्टिकल 39A में ये लिखा कि एक्सेस टू जस्टिस, जिन नागरिकों के आने जाने के रास्ते आसान नहीं हैं, दूर दराज में रहते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां विषम है, ऐसे लोगों को भी न्याय कैसे मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि न्याय बंधु प्रणाली, कॉमन सर्विस सेंटर, इनके माध्यम से टेली लॉ, इनके माध्यम से वो लोग कहीं अपनी बात कहते हैं और सीएससी का आदमी कहता है, सुनिए ये वकील साहब का नंबर है, इनको आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। तो वो पूछते हैं, वकील साहब कोई फीस लेंगे? तो वो कहते हैं, वकील साहब कोई फीस नहीं लेंगे, वकील साहब को फीस भारत सरकार देगी, आप उनको अपनी बात कहिए, वो आपको कानूनी सलाह देंगे, उसके अनुसार आप काम करिए, और जो कानूनी सलाह का पैसा वकील साहब को देना है वो भारत सरकार देगी। ये ऐसे करके ये प्रोग्राम जो आपके क्षेत्रों में भी चलता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोगों को पता नहीं।
1: हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे।
3: मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप सबके बीच में मुझे आने का मौका मिला। धर्मशाला की इस पावन एवं सुरम्य धरती पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला एवं सुधार उत्सव में आप सभी के बीच में उपस्थित होकर के मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूं। मैं भारत सरकार के न्याय विभाग को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में पधारे सभी जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, शिक्षाविद हैं, विधि विशेषज्ञ हैं तथा प्रतिभागियों का हिमाचल प्रदेश की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हिमाचल हमारी देवभूमि है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत, आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक सद्भाव और मानवीय मूल्यों के लिए विख्यात है। हमारी परंपरा सदैव न्याय, करुणा, समानता और लोक कल्याण की रही है। इसीलिए न्याय और प्रत्येक नागरिक की सहज और समान पहुंच सुनिश्चित कर

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 8:45 होने को हैं। अब समाचार संध्या का अंक और 9 बजे News@9 का अंक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी

0: जवाबदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, एआई चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत एआई पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टर्बाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।

आपकी परछाइयां इस फिल्म में आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज, राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

राजा जानी फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

धरती कहे पुकार के आप सुन रहे थे इस फिल्म में मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें मजनू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।

0: दत्ता की तर्ज थी सह लुधियानवी का लिखाई गीत। आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म धर्मपुत्र से। और इस गीत के पहले श्रोताओं, हमने आपको सुनवाया था धरती कहे पुकार के। इस फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

बख्शी का लिखा ये गीत आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। चरस फिल्म का ये नगमा था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी।

0: रहते हैं।
1: वो पास रहें या दूर रहें, उनकी आवाज जब हो पास तो बस मन सुकून और चैन से भर जाता है।
0: दिल तुझे हुआ क्या है?
1: गम की दवा बन जाती है उनकी आवाज और उनकी अदायगी। आज के फनकार कार्यक्रम में चर्चा गायिका और अदाकारा सुरैया की।

सुरैया बचपन में बड़े नाज नखरे के साथ पली बढ़ी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मी थी। बचपन में उनका नाम था सुरैया जमाल शेख। बाद में अभिनय और गायन की दुनिया में वे सुरैया के नाम से मशहूर हुई।

सुरैया के फिल्मी करियर के शुरू होने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज़ सुनी तो उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया।

एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया थी हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। देवानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को देवानंद ने कॉपी की और देवानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने देवानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे देवानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक डोर बंध गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे, मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी जीती रहीं।

फिल्म जीत के सेट पर देवानंद ने सुरैया से अपनी मोहब्बत का इजहार हीरे की अंगूठी देकर किया था। सुरैया के लिए भी ये फिल्म यादगार।

0: सुरैया की आवाज में जहाँ एक तरफ दर्द है वहीं दूसरी तरफ खुशी की तरंग भी सुनाई पड़ती है। फिल्म अफसर के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये गीत उन्होंने किस अदा के साथ गाया है सुनिए।
1: बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बुन बु

जब देवानंद की फिल्म अफसर बन रही थी तो सचिन देव बर्मन ने सुरैया के लिए एक गीत तैयार किया, जबकि एस डी बर्मन साहब खुद बड़ा अच्छा गाना गाते थे। सुरैया ने देवानंद से कहा कि सिचुएशन बदल कर ये गीत बर्मन साहब से ही गवाया जाए, लेकिन बर्मन साहब राजी नहीं हुए। वे बोले, ये गीत खास तौर पर सुरैया के लिए ही बनाया गया है, सो ये गाना सुरैया ही गाएंगी। और फिर ये गीत सुरैया ने गाया और हम सब के लिए वो गाना मन का मोर बन गया।

0: सुरैया विदेशी एक्टर ग्रेगरी पैक की दीवानी थी, ये बात उनके चाहने वालों को बखूबी मालूम है, लेकिन इस बात को वे किस खास अंदाज में कहती थी सुनिए।
1: 1952 के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक कापरा आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, ग्रेगरी पैक की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, आप उनसे ये जरूर कह दीजिएगा। और फिर मिस्टर कापरा ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पैक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा

सुरैया गायिका और अभिनेत्रियों की आखिरी पीढ़ी थी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नूरजहां और खुर्शीद सरहद के उस पार चली गईं, पर सुरैया हिंदुस्तान में ही रहीं। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। अपने गाने उन्होंने खुद गाए। उन्होंने मोहम्मद रफी, दलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों के साथ गाने गाए।

50 के दशक में एक दौर ऐसा आया जब सुरैया की फिल्में चल नहीं रही थीं। इसी दौर में सोहराब मोदी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी। कमाल की बात ये है, मधुबाला और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। ये उनके गायन के सफर के लिए खूबसूरत तोहफा था। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल पाने वाली ये

0: दोस्तों, क्या आपको मोती महल फिल्म का ये गाना याद है, मोटर बिगड़ने का?
1: कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, खड़े रहो बस बेबस होकर।

सन 1958 फिल्म मालिक में आया सुरैया का एक नायाब गाना, साथ में तलत महमूद की आवाज, संगीतकार गुलाम

सुरैया ने उस समय फिल्मों को अलविदा कहा जब वे और फिल्में कर सकती थीं। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन के साए में गुजरी और फिर 31 जनवरी सन 2004 में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें और जिंदगी का उनका

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी गायिका और अदाकारा सुरैया पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं और आपकी रेडियो दोस्त भावना कतना हाजिर है आपके मनोरंजन के लिए कार्यक्रम लेकर एक फिल्म से। और हमारी आज की फिल्म, पहचानी कौन सी फिल्म है ये?
1: जी दिल पर हुआ ऐसा जादू, तबीयत तबीयत मचल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से के हालत

0: गल मचल गई, नजरें मिली क्या किसी से, हालत बदल बदल गई।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये है मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गीत आपने सुना, और यही फिल्म आज के इस एक फिल्म से कार्यक्रम में हमने ली है। और ये जो दिल पर हुआ ऐसा जादू, तो इसी फिल्म के गीतों का जादू आज आप पे चलने वाला है। जी हाँ, 1955 में आई ये फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 एक बेहतरीन भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण गुरुदत्त ने किया था और इसकी कहानी अबरार अलवी ने लिखी थी। और ये एक क्लासिक ब्लैक एंड वाइट फिल्म जिसे दर्शकों और आलोचकों दोनों ने भरपूर प्यार दिया था। इसके मुख्य कलाकारों की बात करें तो इसके मुख्य कलाकारों में गुरुदत्त, मधुबाला, ललिता पवार, जॉनी वॉकर, कुमकुम, टुनटुन, कुकू, राधिका, आगा और मोनू चटर्जी थे। जी हाँ, देखिए ना, पहले जो कॉमेडी फिल्में होती थी वो टुनटुन और जॉनी वॉकर के बिना कंप्लीट नहीं मानी जाती थी। जिस फिल्म में ये आर्टिस्ट होते थे ना, उसको तो फुल कॉमेडी फिल्म का जो अवार्ड है वो दिया जाता था, और इसमें तो जॉनी वॉकर भी थे और टुनटुन भी थी, और मुख्य रोल में मधुबाला और गुरुदत्त, और साथ में ललिता पवार। और इसके बारे में आपको बताएं, इसका संगीत, ये जो इतने मधुर मधुर गीत इस फिल्म के हैं, बहुत ही शानदार संगीत है इस फिल्म का, जो आज भी लोगों की ज़ुबान पर रहता है। इसके संगीतकार जो ओपी नैयर थे, और इन खूबसूरत से गीतों को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। और गीत जो आप सुनेंगे इस फिल्म के, और अभी सुना भी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, इस फिल्म के जो गीत गाए थे ना, वो गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी ने ही गाए थे। तो क्यों ना आगे बढ़ा जाए, एक और फिल्म का गीत ये सुना जाए।

मिस्टर एंड मिसेस 55 1955 में आई ये फिल्म, और मुख्य कलाकारों की बात हम करें तो इसमें देखिए गुरुदत्त जिन्होंने प्रीतम कुमार का रोल अभिनय किया था, एक बेरोजगार कार्टूनिस्ट का, मधुबाला जो कि अनीता वर्मा बनी थी, एक भोली भाली और अमीर उत्तराधिकारी, ललिता पवार सीता देवी के रूप में थी, अनीता की कट्टर नारीवादी चाची, और जॉनी वॉकर रूफी यानी कि प्रीतम के मजाकिया दोस्त। अब फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो फिल्म की कहानी मुंबई शहर पर आधारित है। अनीता जो कि मधुबाला हैं, उनको अपने पिता की करोड़ों की संपत्ति पाने के लिए शादी करनी ज़रूरी है, लेकिन उसकी चाची यानी कि ललिता पवार जो पुरुषों से नफरत करती हैं, उसने एक ऐसी शर्त रखी कि वो किसी भी बेरोजगार और बेवकूफ़ से शादी करे ताकि संपत्ति भी बची रहे और बाद में आसानी से तलाक भी लिया जा सके। अब चाची की इस चाल के तहत अनीता की शादी एक गरीब कार्टूनिस्ट प्रीतम यानी कि गुरुदत्त से करवा दी जाती है, जिसे अनीता जानती तक नहीं। तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है और फिर ये अपनी ज़िंदगी आराम से बसर करते हैं, और इस बीच कहानी में कई दिलचस्प मोड़ आते हैं। तो ये रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म है, बहुत ही बढ़िया। आपने देखी होगी तो आपको भी याद आ रहे होंगे इसके गीत। चलिए हम भी आपको सुना देते हैं।

जी हाँ, मिस्टर एंड मिसेस 55 एक परिष्कृत रोमांटिक कॉमेडी है जो आर पार, जो कि 1954 में आई थी, इसके साथ साथ गुरुदत्त की बाद की रचनाओं में दिखने वाली गीतात्मक और काव्यात्मक शैली की शुरुआत को दर्शाती है। हालांकि ये फिल्म मुख्य रूप से एक व्यंग्यात्मक कॉमेडी है, फिर भी ये शायद गुरुदत्त की पहली फिल्म है जो उनकी पिछली फिल्मों की तुलना में सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति गहरी चिंता दिखाती हैं। ये फिल्म पारंपरिक भारतीय मूल्यों को पुनः स्थापित करके भारत के शहरी धनी लोगों पर पश्चिमीकरण के भ्रष्ट प्रभाव का विरोध करती है। दरअसल फिल्म का पोस्टर, जी हाँ, उस टाइम जो फिल्म का पोस्टर आया था उसके बारे में आपको बताएं तो फिल्म का पोस्टर दो भागों में बटा हुआ था। पहले भाग में नायक पश्चिमी पोशाक में सजी नायिका के जूते का फीता बांधते हुए दिखाया गया था और दूसरे भाग में साड़ी पहने नायिका नायक के पैर छूते हुए दिखाई गई थी। जी हाँ, तो ये था उस टाइम पोस्टर इस फिल्म का, मिस्टर एंड मिसेस 55।

एक फिल्म से ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से, और आज की हमारी फिल्म है मिस्टर एंड मिसेस 55। 1955 में बनी ये फिल्म। इसके बारे में कुछ खास बात, कुछ मज़ेदार किस्से आपको बताएं तो अबरार अलवी द्वारा लिखित मॉडर्न मैरिज नामक नाटक पर आधारित ये फिल्म हास्य और कल्पनाशीलता से भरपूर है। इसकी सबसे बड़ी खूबी अन्य हिंदी कॉमेडी फिल्मों में प्रचलित हास्य और मस्खरेपन के बजाय बुद्धिमत्तापूर्ण संवादों का उपयोग है। और अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको पता होगा इसके संवादों के बारे में कि कितनी खूबसूरती से संवाद कहे गए थे। और अधिकांश हिंदी फिल्मों के विपरीत जहां संवाद बार बार एक ही भावना को दोहराते हैं, इस फिल्म में प्रत्येक संवाद कुशलतापूर्वक कथानक को आगे बढ़ाता है, जबकि संवाद समग्र रूप से कई भावनाओं को जगाता है। अबरार अलवी के संवाद गंभीर परिस्थितियों को सरल और तथ्यात्मक संवादों से संतुलित कर देते हैं। इसका एक शानदार उदाहरण वो दृश्य है जहां प्रीतम सीता देवी का कार्टून बनाता है, जिसमें सीता देवी रोमन चोगा पहने रोमन रथ पर खड़ी है और उनके हाथ में चाबुक है। अनीता और प्रीतम रथ खींचने वाले घोड़े हैं और संयोग से ये कार्टून भारत के शीर्ष कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने बनाया था। कार्टून देखकर सीता देवी क्रोधित हो जाती है और प्रीतम से भिड़ जाती है। वो हर सवाल का जवाब जी हाँ से देता है, लेकिन दृश्य को इतनी कुशलता से रचा गया है कि हर जवाब उसे एक नया रंग नया अर्थ देता है। और हाँ, सीता देवी और प्रीतम के बीच पहली मुलाकात के दौरान हुई अविस्मरणीय बातचीत को कैसे भूला जा सकता है भला, जब प्रीतम के विचार सुनने के बाद सीता देवी उससे पूछती है कि क्या वो कम्युनिस्ट है। प्रीतम जवाब देता है, नहीं, मैं कार्टूनिस्ट हूँ।

जी हाँ, ये जो खूबसूरत से गीत आप सुन रहे हैं, मधुर सा संगीत मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का, इसके लिए गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया था। जी हाँ, और व्यंग की बात करें तो ये फिल्म उस समय के पश्चिमीकरण और छद्म नारीवाद पर एक बेहतरीन व्यंग्य है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। उसने उस समय मधुबाला के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, क्योंकि इससे पहले उनकी कुछ फिल्में जो है वो फ्लॉप हो गई थी। दोनों कलाकारों गुरुदत्त और मधुबाला की केमिस्ट्री की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को इस फिल्म में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था।

बिल्कुल जी, गुरुदत्त की क्लासिक फिल्मों के दीवानों के लिए ना ये एक मस्ट वॉच फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55। 1955 में आई ये फिल्म, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म।

जी, एक फिल्म से। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हमारी आज की फिल्म थी मिस्टर एंड मिसेस 55। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 10:30 हुए हैं और आपकी रेडियो दोस्त भावना कतना हाजिर है कार्यक्रम लेकर चांदनी रातें। चांद की चांदनी, फूलों की फुहार, आसमां के तारे, मौसम की बहार, सब तुम्हारे लिए है बेकरार, पर मेरे लिए तो मेरा चैन मेरा करार, सब है सिर्फ और सिर्फ तेरा प्यार।

वाकई प्यार से ही तो ये दुनिया हंसी है, प्यार नहीं तो क्या। जैसे आज देखिए आसमान में चांद नहीं है क्योंकि अमावस की रात है, अंधेरी रात है। काली रात के अंधियारे में जब सिर्फ तारे चमकते हैं ना, प्यासे गीतों की गंगा से गीत तब भी यूं ही बरसते हैं, तन मन प्यार से सराबोर होते हैं और हम इन गुनगुनाती रातों का हिस्सा बनते हैं।

गुजरेगी ना अब तन्हा ये जिंदगी, क्योंकि तेरे नाम ही तो है मेरी हर खुशी। ढल जाऊं तेरे अरमानों के साथ, तू ही बस, तू ही तो है मेरे रूप की सादगी।

0: जी हाँ दोस्तों, हम तो यही दुआएं करते हैं कि इन प्यार भरे गीतों की तरह आपकी ज़िंदगी में भी हमेशा प्यार यूं ही बना रहे। तो इन्हीं गीतों के साथ, इन्हीं बातों के साथ अब आज का चांदनी रातें कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त भावना कतना को दीजिए अनुमति। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं, अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं समाप्त होते हैं। कल सुबह 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।